0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर सात मिनट हो चुके हैं दोस्तों. सुबह की हवा बस एक बात कहती है, चलो आज कुछ नया करते हैं. कल जो हुआ सो हुआ, आज एक नया पन्ना है, एक कलम है हमारे हाथ में जो लिखना चाहती है मेहनत, मस्ती या बस सुकून. और आज फ्राइडे का मतलब वीकेंड. बिल्कुल खुशबू हवा में तैर रही है उसकी, और एहसास हो रहा है कि कितनी जल्दी ये बस वीकेंड आ जाए और हम मस्ती अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ कर सकें. तो हम तो आपको सबको यही कहेंगे, हल्के फुल्के अंदाज से शुरू करते हैं आज का RM2 रेडियो मस्ती पर राइज एंड शाइन. मैं हूँ आपके साथ पूनम, आप सभी का स्वागत है. इंजॉय कीजिए पुराने वो गाने जो आपके दिलों को खुश कर देते हैं, जो आपको सुकून देते हैं और एहसास देते हैं कि आप और हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं.
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:14 हो चुके हैं दोस्तों, और आपको पता ही है कि ये नंबर आपके पास है और सभी के मैसेजेस आने भी शुरू हो गए, पर जिनके पास नहीं है, जिनको नहीं पता, तो हम बोल बता दें आपको 5499124 हमेशा आपके साथ है 24 आवर्स. MBC में हमारा RM2 रेडियो मस्ती आपके साथ चलता है. बहुत सारे लिसनर्स हैं जो आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था ये भी चैनल है. क्या बात है, बिल्कुल नहीं पता, तो हम आ गए आपके साथ. और हमारे वो दोस्त जो इस समय बिल्कुल बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी देर और सोने दो, पर नहीं सोना है, काम पे जाना है. आज तो फ्राइडे है तो आपको तो पता ही है कल छुट्टी हो जाएगी. भैया बहुत लोगों की नहीं भी होगी, पर कोई बात नहीं, अभी तो आज प्रेजेंट को तो देखो और बढ़ते चलो, क्योंकि ये जो टाइम है फिर बार बार नहीं आता. और सुबह की जो खुशबू होती है ना, थोड़ी सी बाहर जाओ, थोड़ी सी ये फ्रेश ब्रीद लो, थोड़ी सी ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, ये चीज़ें जब मॉर्निंग में खुद कर लेते हैं ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. एहसास होता है कि अरे भाई इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा वेदर है, कहाँ हम सोते सोते ख़राब करेंगे. और वैसे हम तो हैं ही आपको सारी अपडेट्स देने के लिए, तो इन्जॉय कीजिए अपनी मॉर्निंग को और बस उठ जाइए आराम से, बढ़िया आगे दिन की शुरुआत बहुत ही प्यारे मूड से और बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ इन्जॉय करते रहिए. इन्जॉय कीजिए इस गाने को.
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September। दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:25 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। आज है 25 सितंबर और आज बॉलीवुड के दो बड़े नामों का जन्मदिन है। पहली बात करते हैं फिरोज खान जी की, जिन्हें बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश और हैंडसम एक्टर कहा जाता है, जिन्होंने बनाई थी कुर्बानी, धर्मात्मा जैसी फिल्में, जिन्होंने उनका मुकाम इतना बड़ा रहा और सभी एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। हर एक्ट्रेसेस भी यही सोचती थी कि अगर इनके साथ काम किया तो हमारी पर्सनालिटी भी बनेगी और साथ में उनकी जो ऑरा है बहुत ही खूबसूरत रहा। और है दूसरी हमारी दिव्या दत्ता, जिन्होंने वीर ज़ारा और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में काम किया और उनकी जो एक्टिंग है बहुत ही दमदार है। और आज भी उनके कहते हैं ना कि जब भी वो स्क्रीन के सामने आती हैं तो एक बार दिल थम सा जाता है, एहसास होता है कि क्या बोल्ड एक्ट्रेस हैं। जब भी उन्होंने कोई सीन किया तो हमेशा मतलब अपना फुल 100% डालती हैं उस सीन में और उस मूवी की पूरी स्क्रिप्ट को अच्छे से समझती है, चाहे उनका छोटा सा ही क्यों ना रोल हो। वो कहती हैं कि मुझे पूरी स्क्रिप्ट दीजिए क्योंकि मुझे एहसास होना चाहिए कि मेरा रोल जितना भी है वो कितना दमदार होना चाहिए। तो भाई ऐसे एक्टर्स का आज बर्थडे है तो हम क्यों ना चलाएं उनके लिए एक प्यारा सा गाना। तो उन्हीं की पसंद का, उन्हीं की फिल्म का धर्मात्मा मूवी से फिरोज खान जी की, जो भी उनके फैन हैं इस समय और जो उनको बहुत पसंद करते हैं, इंजॉय कीजिए उनका ये गाना।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti. Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:35 हो चुके हैं और है आज 25 सितंबर और आज हमें याद आती है वो आवाज़ जिसने 40,000 से ज़्यादा गाने बनाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SP बालासुब्रमण्यम जी की, जिन्हें हम प्यार से SP भी सब कहते हैं। सलमान खान की शुरुआती फिल्मों से लेकर AR रहमान के सुरों तक हर जगह उनकी आवाज़ ने जादू बिखेरा। 16 भाषाओं में गाना गाया उन्होंने और इतनी आवाज़ उन्हें पसंद थी। हमेशा सभी को ये कहते थे, जिसने गाना नहीं सीखा उसने क्या सीखा, जिसने अच्छा बोला नहीं उसने क्या बोला, जिसने अपने आप का एहसास नहीं किया उसने क्या एहसास ज़िंदगी का किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं। उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहे और हम हमेशा चाहते हैं उनके गाने रेडियो पर हमेशा बजते हैं, पर आज कुछ स्पेशल करें और उनकी आवाज़ को लेके कुछ ऐसे गाने बनाएं या ऐसे गाने कुछ गाएं या आप अपने घर में गुनगुनाएं, क्योंकि एक ऐसी आवाज़ है जिसने हर कहते हैं ना, हर हीरो के लिए गाना चाहा, पर कई बार बहुत ज़्यादा गाने उनके लिए नहीं बन पाते थे कि उनकी आवाज़ बहुत भारी थी। और जब वो मिठास में गाते थे तो कहते हैं कि जिन जिन के लिए भी गाया वो सुपरस्टार बनते चले गए, चाहे सलमान खान हो साथ में, बहुत सारे अप्पू राजा मूवी में उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए, कमल हसन साहब के लिए बहुत अच्छे गाने गाए उन्होंने, और हमेशा उनके लिए कहते हैं कि आज भी उनकी आवाज़ इतनी फ्रेश है और इतनी स्वीट है कि जब भी हम उनकी गाने सुनते हैं तो एहसास होता है कि वो हमारे बीच में ही है। तो चलिए, उन्हीं की मूवी से हम एक दूजे मूवी के लिए गाने में से एक प्यारा सा गाना है, बहुत ही पसंद आएगा सभी को, तो मॉर्निंग अच्छी होगी और आवाज़ के साथ अगर आप सब भी गुनगुना सकते हैं अपने घर पर तो ज़रूर गुनगुनाइएगा।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Your number one Bollywood station.
1: Your daily horoscope.
2: RM2 Radio Musti.
3: 5:43 हो चुके हैं दोस्तों. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज की सुबह कुछ नए इरादों और अच्छी उम्मीदों के साथ शुरू कीजिए. चलिए जानते हैं आज का राशिफल. सबसे पहले
4: एरीज मेष राशि.
3: आज कोई जरूरी फोन कॉल आपके काम को आगे बढ़ा सकती है. अपनी बात समय पर रखें तो अच्छा रहेगा. किसी अपने को आपकी सलाह की ज़रूरत है और उसकी सलाह जो आप देंगे उससे उसको राहत मिलेगी. तो लकी कलर बनेगा आपका रेड. लकी नंबर है 6.
4: टॉरस वृषभ राशि.
3: आज घर की किसी ज़रूरी चीज़ को ठीक करवाने का मन करेगा. हो सकता है सोफ़ा, बेड या कोई और ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि ये चीज़ बहुत पुरानी हो रही है या ख़राब हो रही है, तो उसके लिए आपको कुछ बजट बनाना पड़ेगा और उसका सही से फैसला लेना होगा. दिन में थोड़ा समय अपने लिए रखिए, थोड़ी सी हॉबी के लिए रखिए, थोड़ा अच्छा खाइए. लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन. लकी नंबर है 4.
4: जेमिनी मिथुन राशि.
3: आज किसी पुराने नोट से या कोई किसी बुक से आपको कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी मिल सकती है. विद्यार्थियों को किसी विषय में नई रुचि हो सकती है. किसी दोस्त के साथ अच्छी चर्चा पे नए विचार आएंगे और अच्छा फैसले आप ले सकेंगे. लकी कलर बनेगा आपका येलो.

0: लकी नंबर है 8।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज घर में किसी सदस्य की मदद से काम जल्दी निपटेंगे, परिवार के साथ मिलकर कोई अच्छा फैसला ले सकते हैं, अपने मन की बात भी किसी करीबी से साझा कर सकते हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे कहते हैं डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। लकी कलर बनेगा आपका वाइट, लकी नंबर है 3।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज किसी खास काम के लिए आपका नाम सामने आ सकता है, हो सकता है ऑफिस में, हो सकता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आप बहुत काम करते हैं पर आप बहुत थोड़े से पीछे थे, आज सब लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपकी बोलने की कला जो है सभी को प्रभावित कर रही है। अपने किसी पुराने शिक्षक या मार्गदर्शक को याद कीजिए, उनका थोड़ा उनके साथ बैठिए। लकी कलर बनेगा आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज आपकी दिनचर्या में छोटा बदलाव अच्छा लगेगा। किसी ज़रूरी कागज़ या जानकारी को आप नोटिस करेंगे, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेने के लिए समय निकालिए, लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 5।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज किसी पुराने मतभेद को बातचीत से दूर कर सकते हैं, आपकी पसंद का कोई नया अवसर सामने आ सकता है, किसी अपने के साथ आप भविष्य की अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, आपको किसी ऐसे इंसान का साथ मिलने जा रहा है जिसकी तलाश आप बहुत समय से कर रहे थे, लकी कलर बनने वाला है आपका पिंक, लकी नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज कोई नई जानकारी आपके अनुभव को बढ़ाएगी, किसी ज़रूरी काम में आपका ध्यान अच्छा लगेगा, अपने किसी पुराने लक्ष्य को फिर से आप याद कर रहे हैं, हो सकता है आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, हो सकता है आप कोई राइटर हो, कोई स्क्रिप्ट राइटर हो, कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, उसके ऊपर आपका फोकस आज रहेगा, लकी कलर बनेगा आपका बैंगनी, लकी नंबर है 9।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज किसी नई जगह के बारे में जानने का मन करेगा, यात्रा या पढ़ाई से जुड़ी कोई योजना आप बना रहे हैं, हो सकता है सैटरडे संडे की प्लानिंग कुछ हो रही हो, किसी दोस्त को अपनी इस सोच से प्रेरित करें और उसको भी अपने इस प्लान में शामिल करें, लकी कलर बनेगा आपका येलो, लकी नंबर है 2।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज किसी ज़रूरी काम का हिसाब पूरा कर सकते हैं, आपकी समय पर की गई जो तैयारी है वो आगे चलकर आपके लिए काम आएगी। घर में किसी का पसंद का ध्यान आप रखेंगे, आप हो सकता है उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आएँ, आप हो सकता है किसी का घर में बर्थडे हो या किसी अपने का कोई एनिवर्सरी हो, उसके लिए कुछ पसंद का लेकर आने वाले हैं और शायद आप सरप्राइज भी दें, लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन, लकी नंबर है 8।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज किसी नई तकनीक को सीखने में रुचि बढ़ेगी, आपका एक सुझाव किसी का समय बचा सकता है, किसी पुराने दोस्त से नई जानकारी मिल सकती है, लकी कलर बनेगा ब्लू, लकी नंबर है 5।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज संगीत या कला से जुड़ा कोई विचार मन में आएगा, किसी की बात ध्यान से सुनकर आपको अच्छा महसूस होगा, अपने किसी छोटे सपने को एकदम आगे बढ़ाते चले जाइए, लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 4। तो दोस्तों आज अपने दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए, स्वागत कीजिए इस मॉर्निंग का और हम तो यही कहेंगे जुड़े रहिए राइज एंड शाइन के साथ, इंजॉय कीजिए आपका रेस्ट ऑफ द शो।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: Time check, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से. विधिमा आपको नमस्कार.
5: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. ब्रिटिश समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया है कि शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में ब्रिटिश NSA जोनाथन पावल से मुलाकात करेंगे. सरकारी कर्मचारियों को किसी भी बाहरी वैधानिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी. ये चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 की टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक पहले आई है. जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, दूरसंचार और स्वास्थ्य सेवा से कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई हैं. आज अनंत व्रत है. अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है. इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है. पूजा में अनंत सूत्र बांधा जाता है जिसमें सामान्यतः 14 गांठें होती हैं. इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक माना जाता है. और विदेश में कोंगो डियोसी में एक झील पर नाव पलटने से 41 लोगों की मौत हो गई और 49 को बचा लिया गया जबकि लापता यात्रियों की तलाश जारी है. और आखिर में चले जानते हैं मौसम का हाल. हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी. दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा लेकिन उत्तर पश्चिम में कभी कभार बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 15 से 17, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. सूर्योदय 5:57 पर और आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा. तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपसे मुलाकात होगी 6:30. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
6: Your news on MBC Play and MBC.MU.
7: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. An evergreen afternoon. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. 2 घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September. दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ.
8: महफिल महफिल ऐ शमा फिरते हो कहां.
9: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:09 हो चुके हैं दोस्तों, आप दे रहे हैं साथ राइज एंड शाइन में पूनम का, और मैं तो कहूँगी आपके बिना मैसेजेस के कैसे बात बनेगी, और सारे लोग, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम

सबके दिल की बात कहें। तो चलिए वही शुरू करते हैं। जयशन जी साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। बेस्ट विशेज राम जी के लिए है राधा जी की तरफ से, और आज उनका बर्थडे है, और उनको बस यही कहना चाहती हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, मैं तो हमेशा यही चाहूँगी, और खुश रहो ज़िंदगी में। टोनी जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और सभी को बस इतना ही कह रहे हैं ज़िंदगी को

पढ़ाई करो भाई, पर एग्जाम्स डेज बिल्कुल सर पर आ गए हैं। तो बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं। यूएसए से साथ दे रहे हैं ललित जी और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। चोगा लाल फैमिली साथ दे रहे हैं गुडलैंड से और इन्जॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। दीपक जी साथ दे रहे हैं और सभी लिसनर्स के लिए बस बेस्ट विशेज मांग रहे हैं। सूर्या बिहारी जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। जीना जयश्री जी पेरिस से साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं। रघुनाथ फैमिली साथ दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि भाई मॉर्निंग जब साथ में ऐसे गाने चलते हैं राइज एंड शाइन में, तो मॉर्निंग तो सबसे अच्छी होती है, उठने का मन भी करता है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। उर्मिला जी साथ दे रही हैं और अमोल पालेकर का ये गाना जो अभी चला था उनका शायद अमोल पालेकर जी फेवरेट है और कह रही हैं मेरे को तो मज़ा आ गया, मेरे अमोल पालेकर का गाना मिल गया। भाई मुझे तो पता है कि सभी गाने आपकी पसंद को देख के ही रखे जाते हैं, हम लोग लिस्ट में रखते हैं कि आपको पसंद आए, आप अपने फैंस के साथ में जुड़े रहिए। तो चलिए जी इन्जॉय करते हैं और एक दो गाने और उसके बाद हम न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। पर उसके साथ में जो बर्थडे विशेज बहुत सारी आ रही हैं उसके लिए भी हम ज़रूर मैसेज लेंगे। अगर आपको भी किसी को बर्थडे विश करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं 5499124 पर, और जिनका आज बर्थडे है हमारी तरफ से उन सभी के लिए

RM2 listeners, इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए फॉर एन एक्साइटिंग रेडियो शॉपिंग सेशन ऑन RM2। ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस रेडियो शॉपिंग। एक घंटे में ढेरों शॉपिंग आइडियाज। Friday, 25th of September, from 5 p.m. to 6 p.m. Discover Elegancia Tribeca, your destination for beautiful furniture to bring style to your home. Make sure you tune in. 1, 2, 3.

0: नमस्कार, 25 सितंबर 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ब्रिटिश समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया है कि शागस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में ब्रिटिश एनएसए जोनाथन पावेल से मुलाकात करेंगी। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 की टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक पहले आई है। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई हैं। आज अनंत व्रत है। अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। पूजा में अनंत सूत्र बांधा जाता है जिसमें सामान्यतः 14 गांठें होती हैं। इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। और विदेश में कोंगो में एक झील पर नाव पलटने से 41 लोगों की मौत और 49 को बचाया गया, जबकि लापता यात्रियों की तलाश जारी। मॉरिशस की शागस पर संप्रभुता गैर समझौता योग्य है। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने ये प्रतिक्रिया दी है। सरकारी नेता ने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में बैठकें करेंगे, विशेष रूप से ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से मुलाकात करेंगे। बालाक्लावा में यूरोलॉजी पर एक सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री ने ये आंदिए उनको सुनते हैं।
1: Nous souveraineté non négociable, pas qu'à négocier nos souverainetés. Moi, mon corps de quoi être diplomatie. Vous savez, causez, là, mon père d'Angleterre, vous rejoignez Jonathan Powell, qui est National Security Advisor, il fait quoi en contact quand on vous demande exact. Vous rejoignez aussi les autres Djiboun, l'Oshakos.
0: सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के अलावा कोई अन्य पेशेवर गतिविधि नहीं कर सकते हैं। मंत्रालयों, विभागों और सरकारी निकायों को हाल ही में भेजे गए एक सर्कुलर में ये याद दिलाया गया है कि किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि, विशेष रूप से दूसरी नौकरी, कंसल्टेंसी सेवाओं या किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब करदाताओं को जल्द ही अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए एक सवाल उठता है, जब किसी दूसरी गतिविधि से आय होती है तो एमओआरए ये कैसे सुनिश्चित करती है कि उसका सही डिक्लेरेशन किया गया है? चलिए जानते हैं प्रणव बिहारी की रिपोर्ट में, विवरण रजनी बिकर का है।
2: कंसल्टेंसी कार्रवाई की एक दूसरी नौकरी, फ्रीलांस काम करना या फिर किसी अध्यापक की ओर से ट्यूशन देना, इन गतिविधियों से जो आय प्राप्त होती है इसके बारे में बताना ही चाहिए, डिक्लेरेशन करना चाहिए। एमओआरए में मीडियम एंड स्मॉल टैक्स पेयर्स डिपार्टमेंट के टीम लीडर बंदीश बंटो ने कहा कि इसके लिए पैसे नकद तरीके से चुकाए जा सकते हैं या फिर ज्यूस एप्लीकेशन के जरिए। उन्होंने कहा,
3: ici à la MRE, nous tiennent communiqué en mois dernier pour informer le public qui paiement par cash n'est pas un problème, mais la.
2: यहाँ MRE में एक विज्ञप्ति निकाली गई पिछले महीने ही, जिसमें जनता को सूचित किया गया कि नकद पैसे चुकाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये पैसे मिल रहे हैं उन्हें प्राप्त सभी आय के बारे में बताना ही होगा, जूस हो, कैश हो या फिर बैंक ट्रांसफर्स हो, उसे अपने रिकॉर्ड्स रखने ही चाहिए और जब एमओआरए इसकी मांग करेगा तो ये दिखाना होगा।
3: Bien détaillé et quand MRE peut demander les vins produits à certains records.
2: अगर कोई बाहरी गतिविधि के बारे में नहीं बताया गया हो तो एमओआरए टैक्स पेयर की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए कई नियंत्रण माध्यम है। एक अन्य इकाई है इंटेलिजेंस यूनिट, और इसके अवसर दौरा करती है और शिकायतों तथा देश भर में अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जानकारियां एकत्र करती है, जैसे FCC है, थर्ड पार्टी

0: इंफॉर्मेशन अपने खुद का एनालिसिस करते हैं अंदरूनी जानकारियों के आधार पर। उन्हें सरप्राइज विजिट्स भी कहा जाता है, जो अफसरों द्वारा किए गए दौरों में शामिल हैं। व्यवसाय स्थल पर सीधा जाते हैं जहां जांच की जाती है, रिकॉर्ड्स देखते हैं, साथ में ये भी कि बिजनेस कैसे चल रहा है। नॉन डिक्लेयर्ड आय के मामले में टैक्स पेयर को टैक्स चुकाना होगा। ऑपरेशनल सर्विसेज डिपार्टमेंट के ऑफिसर अजहर जुम्मन ने समझाया कि इसके अलावा सूद और पेनाल्टी भी चुकानी होगी। रेवेन्यू लॉज के अंतर्गत जैसे कि इनकम टैक्स, VAT आदि, अगर किसी व्यक्ति ने गलत जानकारियां दी या फिर अंडर डिक्लेरेशन हो तो अपराध है। कोई आम नागरिक हो तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चलाई जा सकती है। कानून में ये सब स्पष्ट है। इस सिलसिले में एक विज्ञप्ति जारी की गई है। संबंधित टैक्स पेयरों के लिए अब से कुछ सप्ताह में उन्हें टैक्स भर देना होगा। 30 जून 2026 तक की आय को लेकर टैक्स फॉर्म भरने और टैक्स चुकाने के लिए अगले 15 अक्टूबर 2026 तक का समय है।
1: भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की है। ये बात आयोग ने राष्ट्रसभा में भाषाओं के इस्तेमाल पर जारी अपने पोजीशन पेपर में कही है। ये दस्तावेज उस शिकायत के बाद तैयार की गई है जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्रेओल मोरिसियन पर विचार कर रही सिलेक्ट कमेटी के सामने क्या पुश्तैनी भाषाओं की बात भी रखी जा सकेगी। आयोग के अनुसार इन भाषाओं के पक्ष में बोलने वालों समेत सभी नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। मेगान पुनापनायकन, गीता सुनारायण।
2: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की राष्ट्रीय सभा में भाषाओं के इस्तेमाल से जुड़ी रिपोर्ट पिछले अगस्त के अंत में मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट की सरिता बुधु द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद तैयार की गई। उनका कहना था कि मॉरिशस की पूर्वजों से चली आ रही भाषाओं को राष्ट्रीय सभा में क्रेओल मोरिसियन को शामिल करने के लिए बनाए गए सिलेक्ट कमेटी के दायरे से बाहर रखा गया है। उनके अनुसार ये संविधान की धारा 16 का उल्लंघन हो सकता है। अपने पोजीशन पेपर में आयोग ने सबसे पहले कहा कि धारा 16 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि आयोग ने सिफारिश की है कि सिलेक्ट कमेटी के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही क्रेओल मोरिसियन से जुड़े काम में देरी नहीं होनी चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सजीत बुलेल कहते हैं, औपचारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए आयोग ने बताया कि 89% आबादी क्रेओल मोरिसियन बोलती है, 8.6% लोग भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं, 5.6% फ्रेंच बोलते हैं, जबकि केवल 1.3% लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं जो संसद की आधिकारिक भाषा है। इसी आधार पर आयोग ने संविधान की धारा 16 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि भाषा के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोका जा सके।
3: Nous mêmes décideurs politiques, l'État, viennent avec un amendement du section 16, que ce soit maintenant ou que ce soit après un exercice de la Constitution Review Commission, mais la section 16 vient révisiter pour qui le terme langage fait partie d'une des bandes prohibition contre toute forme de discrimination.
2: इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सरकार से ये भी जांच करने को कहा है कि संसद में अंग्रेजी के इस्तेमाल और फ्रेंच के इस्तेमाल की अनुमति संविधान की धारा 1 के अनुरूप है या नहीं।
1: राष्ट्रीय सभा में भोजपुरी को भी जगह मिले, ये मांग कल दोपहर बाद हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस सम्मेलन में उठाई। संगठन ने

0: सरकार से भोजपुरी को सदन की भाषाओं में शामिल करने को कहा है। ये मांग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की ओर से भाषाई अधिकारों पर पोजीशन पेपर जारी होने के बाद सामने आई है। याचना मिश्रा।
1: हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म ने राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही में भोजपुरी भाषा को शामिल करने की मांग की। संगठन के सदस्यों का कहना है कि भोजपुरी मॉरिशस की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2: Multiracial, mauricien, la langue principale c'est créole qui nous compte, mais après créole c'est bhojpuri. Dans la campagne surtout, beaucoup de monde cause bhojpuri. Beaucoup de communautés cause bhojpuri. Si nous acceptons bhojpuri là, alors nous avons une vieille monde capable de comprendre qui peut passer dans le Parlement. Nous pouvons laisser l'autorité travailler de toute l'indépendance qui nous a fait pression et nous nous faisons une demande.
1: संगठन ने सरकार से अपील की कि इस मांग पर विचार किया जाए और राष्ट्रीय सभा में भोजपुरी भाषा के इस्तेमाल के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं।
0: आप जो खा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे उत्पादों में अवैध पदार्थ पाए जा सकते हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, विशेष रूप से गमीज, बिस्कुट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। देश के मध्य भाग में चलाए गए एक अभियान के दौरान आजसू ने कुछ कुकीज जब्त की और वैज्ञानिक विश्लेषण से ये पता चला कि इन उत्पादों में प्रतिबंधित पदार्थ शामिल थे। पिछले साल के एक अन्य मामले में एक व्यक्ति को हवाई अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दौरान कई संदेहास्पद वस्तुएं जब्त की गई थी जिनमें विशेष रूप से गमीज और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स शामिल थे। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी द्वारा की गई जांच से हाल ही में इस बात की पुष्टि हो गई है कि इन उत्पादों में सिंथेटिक ड्रग और कैनाबिस मौजूद थे। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई और उनकी पहचान की गई। ये जानकारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उसकी निगरानी गतिविधियों से संबंधित उसकी नवीनतम रिपोर्ट से सामने आई है। इन शिकायतों के मुख्य खुदरा व्यापार यानी रिटेल, बैंकिंग, वित्तीय और बीमा सेवाएं, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हैं। लुविना सूफी, रजनी बिकर।
3: अलग अलग क्षेत्रों में कुल मिलाकर 22 प्रारंभिक जांच और 6 जांच की गई। इसके अलावा पर्यटन, शिक्षा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि उद्योग, ऊर्जा, मैन्युफैक्चर उद्योग और प्रॉपर्टी संबंधित। साथ ही इलाकाई स्तर पर कंपटीशन कमीशन को कई विलय दस्तावेजों में कमिसा का भी सहयोग प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ बुलेटिन में स्वान सिक्योरिटीज लिमिटेड और कैपिटल मार्केट्स ब्रोकर्स लिमिटेड के बीच मर्जर पर भी स्वीकृति पर चर्चा की गई। कई सौदों का भी जिक्र। वर्तमान ग्राहक अगर चाहे तो एक दूसरे ब्रोकर की ओर पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। कोई भी टैरिफ लागू नहीं होगा बशर्ते कि कानून द्वारा लागू हो या फिर खर्च की बढ़ोतरी द्वारा जस्टिफाइड हो। अंत में समझौते में इस बात का भी प्रावधान कि मर्जर के चलते कोई भी अपनी नौकरी नहीं खोएगा।
0: 2026-2027 की वर्षा ऋतु के नज़दीक आने से लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने पोटवी नगर पालिका में स्थानीय निकायों की एक बैठक बुलाई। चर्चा का मुख्य विषय नालियों और जल मार्गों की स्थिति के साथ साथ विशेषकर जोखिम वाले इलाकों में किए जाने वाले रखरखाव के कार्य थे। नालियों की सफाई के लिए प्रदान फंड्स के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। मंत्री अजय गणेश के अनुसार पानी की निकासी को सुगम बनाने और बाढ़ के जोखिम को सीमित करने के लिए नालियों का नियमित रखरखाव और नदियों की सफाई आवश्यक है। आज अनंत व्रत है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और पूजा के बाद हाथ में 14 गांठ वाला अनंत सूत्र धारण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत सूत्र भगवान अनंत से जुड़ा प्रतीक है। अधिक जानकारी रजनी बिकर के साथ।

अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन अनंत सूत्र भी बांधने का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं और सुख

इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और विधिवत व्रत रखने का विधान होता है। महिला और पुरुष दोनों ही ये व्रत कर सकते हैं। ये पर्व जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अनंत असीम अंतहीन रूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजन करने तथा बाह पर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धागा बांधने का विशेष महत्व है। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। ये व्रत भगवान विष्णु की अनंत शक्ति कृपा और सुरक्षा का प्रतीक है। इस दिन बाह पर बांधा जाने वाला 14 गांठों वाला अनंत सूत्र 14 लोकों स्वर्ग पाताल आदि का प्रतिनिधित्व करता है, जो साधक को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखता है।

और विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी में एक झील पर एक नाव के पलटे जाने से कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई है और 49 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। शेष यात्रियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी था। अंत में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम में कभी कभार बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, तटवर्तीय इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 5:57 पर और आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:48 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play.

शोक समाचार सुनिए। धनबदलीन बुआशेरी में 60 साल की 60 years old की श्रीमती सुदेवी लकिया पैदाइशी नाम बिकारी और जो सुदेवी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे कुणाल लकिया के घर धनबदलीन बुआशेरी से उठाकर बुआशेरी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टूडे एट 2 PM। Avenue des Colombes, Medine Camp de Masque में 62 साल की 62 years old की श्रीमती गायत्री जून की पैदाइशी नाम द्वारका और जो गायत्री नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री दनंद जून की के घर Avenue des Colombes, Medine Camp de Masque से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टूडे एट 1 PM। बासन रोड कैट्रोबोन में 44 साल के 44 years old के श्री अश्विन नक्चेदी जो अश्विन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर बासन रोड कैट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रमिशन टूडे एट 1 PM। अपादुलीन बासन कैट्रोबोन में 87 साल की 87 years old की श्रीमती तुलसामा बापामा पैदाइशी नाम बसवाना और जो उमा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4:30 बजे उनके घर अपादुलेन बासन कैट्रोबोन से उठाकर त्वामामेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टूडे एट 4:30।

0: लुखों ब्रांच रोड खोंबुआ में 63 साल के 63 years old के श्री अनंत कुमार गजाधर जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ललिता गजाधर के घर लुखों ब्रांच रोड खोंबुआ से उठाकर माखीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। डेनक्लास रोड गुडलैंड्स में 87 साल की 87 years old की श्रीमती दिनमत्या सितोहल पैदाइशी नाम बिहारी और जो चंदो नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर डेनक्लास रोड गुडलैंड्स से उठाकर बुआगोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। महात्मा गांधी गली पुत्र दो हामलेट में विलेज हॉल के पास 71 साल की 71 years old की श्रीमती प्रतिमा रामासामी पैदाइशी नाम गुंदोगी और जो आपा प्रात नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे शायलेन रामासामी के घर महात्मा गांधी गली पुत्र दो हामलेट से उठाकर बेलमोंग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मुसलमो पिगन तेरूज में 41 साल के 41 years old के श्री विशेष जतन जो गौसों लोगवा नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी मां श्रीमती माला जतन के घर मुसलमो पिगन तेरूज से उठाकर बुआ मौशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। डिस्पेंसरी रोड पिचिराफ्रे में 76 साल की 76 years old की श्रीमती सुकवारिया कांता कुमारी खुबिया जो रंभा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे साइलेश खुबिया के घर डिस्पेंसरी रोड पिचिराफ्रे से उठाकर मोमास्काल पिचिराफ्रे की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। वाल्टो रोड अलोंग माउंटेन में 72 साल के 72 years old के श्री विद्यानंद रामरतन जो क्रेशन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। कूटो लेन प्लेनमानियो में 92 साल की 92 years old की श्रीमती पर्वती लीलमन जो देवंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे महेंद्र कपूर लीलमंद के घर कूटो लेन प्लेनमानियों से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: MBC.mu. Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 7 बज रहे हैं.
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
0: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musti.
3: गुड मॉर्निंग, 7:04 हो चुके हैं। क्या हाल है दोस्तों? अरे वाह, सुबह के 7:04 तो हो गए और आप सब भी तैयार हो चुके हैं। कई लोग ऑफिस के लिए निकल गए, बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए निकल गए, पेरेंट्स जो हैं कई उठ के अभी चाय बनाने

0: की तैयारी में होंगे, अभी अभी उठे होंगे और कई कह रहे होंगे अरे अभी बस थोड़ी देर में काम पे क्यों जाना है। मैं तो ये कहती हूँ कि भाई काम पे जाना बहुत ज़रूरी है, कॉलेज जाना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, मस्ती करना ज़रूरी है और अपने सपनों को पूरा करना ज़रूरी है। कैसे पूरे होंगे, घर में बैठ के तो होने वाले नहीं है, इसलिए हमारे साथ गानों के साथ जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती, जो कि आपके लिए शानदार गाने लेकर आता है, सुपर हिट गाने लेकर आता है और आपको कहता है आपकी मॉर्निंग सुपर हिट हो। इसीलिए तो कहते हैं हमारे साथ रहा करो, कहाँ जाते हो, किधर जाते हो, कि कहीं मत जाओ, यहीं पर हूँ मैं आपके साथ पूनम। और मैं ये जो अगले हमारे 2 घंटे होने वाले हैं फुल मस्ती वाले होने वाले हैं, पर अगर आपको किसी को बर्थडे किसी का है तो आपको उसको सरप्राइज़ करना है तो आपको मुझे मैसेज भेजना है 5491294 पर और सरप्राइज़ के लिए रेडी रहिएगा। इंजॉय कीजिए ये 2 घंटे आप सबके लिए।
1: मॉर्निंग बीट, a good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

एलएम टू लिसनर्स, इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए फॉर एन एक्साइटिंग रेडियो शॉपिंग सेशन ऑन आरएम टू। ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस रेडियो शॉपिंग। एक घंटे में ढेरों शॉपिंग आइडियाज। Friday 25th of September from 5 p.m. to 6 p.m. Discover Elegancia Tribeca, your destination for beautiful furniture.

0: good beat for your morning show.
1: Radio Musty.
2: 7:18 हो चुके हैं दोस्तों, और आज याद करते हैं एक ऐसी आवाज़ को जिसने बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडियन फिल्मों का रुख किया और कहते हैं कि करोड़ों दिलों को जीता। और आज हम बात कर रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की, जिनकी आज छठी पुण्यतिथि है, जहां पर उन्होंने बहुत से एक्टर्स के लिए गाया, चाहे आप सलमान खान के लिए कहिए, चाहे आप ऐसे ऐसे एक्टर्स साउथ इंडिया के गाए जिनके लिए उन्होंने गाने, जहाँ पर आज भी लोग कहते हैं कि अगर वो ना होते तो कहते हैं कि वो मूवी हिट ना होती, उनकी बात ही कुछ अलग थी। उनकी जो स्वीटनेस थी, उनकी जो हार्श वॉइस नहीं कह सकते, जैसे एक सॉलिड वॉइस होती है जिसे नॉर्मली किसी को ऐसी मिलती नहीं है वॉइस, वो इतनी खूबसूरती से गाते थे। और कहते हैं कि जब भी उन्होंने गाया किसी भी एक्टर के लिए, वो मूवी सुपर हिट होती चली गई, सुपर डुपर हिट हुई। और ऐसी ही मूवीज़ में से एक नाम रहा है हम दूजे के लिए, और साथ में मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन। तो चलिए एक प्यारा सा गाना उनकी आवाज़ में ही सुनते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, अगर आपका मूड बन जाएगा ना इससे, तो आपको भी एहसास होगा क्या आवाज़ थी। चलिए इंजॉय करते हैं इस गाने को।

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा एसएसआर रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25 सितंबर दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा एसएसआर रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 7:27 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम मॉर्निंग बीट के साथ और इस समय साथ दे रही है पूनम आपके साथ। पर आपको पता है बाहर थोड़ा सा गर्मी हो गई है, सुबह से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कहीं पर गर्मी है कहीं पर ठंडक है, तो क्या करें भाई। हम तो आपको ये कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गर्मी का असर अभी कुछ भी नहीं है, कहीं ये ना हो कि स्वेटर डालना भूल जाएँ, जैकेट डालना भूल जाएँ। साथ में आप ये चीज़ कैरी करके रखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो ही आप इसे स्वेटर को या जैकेट को रिमूव कीजिएगा, वरना अपने आप को कवर करके ही चलो। फिर उसके बाद धीरे धीरे छींके जुकाम सबको लग जाता है और फिर बोलते हैं अरे मौसम बदल रहा है। मौसम ने तो बदलना ही है, पर हमें अपना ध्यान रखना है। साथ साथ जो अभी तक कंबल में है, निकलो भाई बाहर निकल जाओ। और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं इसका बर्थडे उसका बर्थडे। हमें पता है आप सबके बर्थडेज हैं, पर हम आपको चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको हम सरप्राइज कर सकें, जिसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर सकें, मॉर्निंग बना सके। तो आपको मैसेज करना है 5491294 पर। इंजॉय करिए अपने गानों को और साथ में बताते रहिए क्या चल रहा है बाहर का माहौल, कैसी मस्ती चल रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ कुछ बातें जब होती है ना तो अच्छा लगता है। चलिए जी शुरू करते हैं इस वाले गाने को।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 Radio Musti in the mix.
3: Cheese of it.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: A good beat for your morning show. Come on. RM2
2: Radio Musti.
3: 7:36 हो चुके हैं दोस्तों, और आज है विश्व ड्रीम डे। एक्चुअली कहते हैं ना कि वर्ल्ड ड्रीम डे जब जुड़ता है, ये 1912 में शुरू हुआ था और सभी ने कहा कि भाई ये जो टाइम है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोगों को बहुत सारे सपने देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो इन्होंने एक अच्छा डे बनाया और ये कहा कि आज अगर आप कुछ इस पे करते हैं काम, तो आपको अगर घूमना है, कहीं बिजनेस करना है, कुछ किसी के साथ ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, दोबारा शुरुआत करनी है, तो ये दिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्यों बोलें कि आप ये डे को बिल्कुल सेलिब्रेट मत कीजिए, आज ही कुछ डिसाइड कीजिए कि आज आपने क्या कर सकते हैं जिंदगी में, किस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डे बन सकता है आपके लिए। और आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी है भाई, जो लोग हमें दवाइयाँ देते हैं। हमारे डॉक्टर्स की कई बार ऐसी हैंडराइटिंग होती है जो खुद ही हमें समझ नहीं आती है, बट वो पता नहीं ये फार्मासिस्ट कैसे पढ़ लेते हैं, उनको बड़े आराम से वो बोलते हैं हाँ ये दवाई चाहिए तो वो दे देते हैं। तो हम तो उनको कहते हैं भाई आप हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, हमें डॉक्टर के पास वापस भागना नहीं पड़ता और पूछना नहीं पड़ता भाई ये क्या लिखा है। तो हम आपको बोलेंगे जो भी फार्मासिस्ट इस समय हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको थैंक यू, आप हमारे साथ हमेशा सब लोगों के साथ रहते हैं, हमारा जीवन बचाते हैं, हमें खुशियां देते हैं, तो आप सबका थैंक यू, बहुत आभार आप सबका। और हम कहेंगे ड्रीम देखो क्यों ना देखें, ये जिंदगी आपकी है, बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए जी, ओजस्वी, आशी, बॉबी, पापा, दीवान, मामा, रेशमा, रूमा, वाशी, विद्या एंड सचिन जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और मामू कुमार शानू का आज बर्थडे है, और दीदी सीता दीवान और नीस रूमा मधु फैमिली उनको विश कर रहे हैं और सभी एक दूसरे को विश कर रहे हैं। मैं तो ये बोल रही हूँ भाई बहुत सारे बर्थडेज की विशेज आ गए हैं, लेंगे हम थोड़ी देर में, पर आपको इतना बताते हैं कोई एक ऐसा नंबर भेज दो जिसके साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जा सके। इंजॉय कीजिए गानों को।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 Radio Musti in the mix.
1: RM2
2: Radio Musti.
4: Nous tenions à rappeler Touban Company et particulier qui apporte Frisidaire qui paye un moratoire pour nouveau règlement Energy Efficiency Management Office IEMO puis fini le 30 septembre 2026. À partir le 1er octobre 2026, Touban Frisidaire qui pour présenter à la douane pour dédouanement pour bizarre répondre à ma norme performance énergétique. La douane pas pour autorise dédouanement aucune cargaison si ce pena un certificat qui émet par IEMO pour sa modèle Frisidaire qui peut apporter là. Pour éviter tout désagrément, nous conseillons d'enregistrer ban modèle Frisidaire qui peut apporter avec IEMO au plus vite possible. Pour plus d'informations, contactez IEMO au 206 80 70.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: 7:42 हो चुके हैं और सीधा चलते हैं स्पोर्ट्स गुरु अरविंद के पास और जानते हैं वो क्या लेकर आए हैं और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कल और आज क्या चल रहा था। तो चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। जर्मनी के नए बॉस यर्गन क्लॉप की एंट्री पार्टी को फीका कर दिया कोडी गाक्पो ने। मैच ड्रॉ गया 1-1। वहीं पर नए बॉस ज़ावी हर्नांडेज़ के लिए पहला मैच पहला अंक। फर्स्ट हाफ में एनमेचा का गोल। इससे पहले काई हावर्ट्स को इंजुरी के कारण निकालना पड़ा। वही समस्या संडरलैंड के डच स्ट्राइकर ब्रायन ब्रॉबरी को लेकर। उसके लिए हैमस्ट्रिंग इंजुरी। इंजुरी टाइम में कोडी गाक्पो के वोले पर नेदरलैंड्स ने इक्वलाइज किया। ग्रुप ए फोर में नॉर्वे ने डेनमार्क को 3-2 से हराया। अर्लिंग अलोन का डबल, उसको बॉब का एक गोल। डेनमार्क के लिए मिकेल डाम्सगार्ड और रास्मुस होयलैंड गोल स्कोर रहे। ग्रुप ए टू में सर्बिया 1-2। ग्रुप ए फोर में पोर्टुगल ने 1-0 से वेल्स को हराया। योआओ फेलिक्स का गोल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कई अच्छे अच्छे मौके मिले पर नेट नहीं हिला पाया। ग्रुप बी थ्री में ऑस्ट्रिया 3-1, कोसोवो 1, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 0। ग्रुप डी टू में लिएस्टेनस्टाइन 0, लिथुआनिया 2। ग्रुप डी वन में अंडोरा 1, माल्टा 2। आज ग्रुप ए वन में इटली का मुकाबला बेल्जियम से, टर्की खेलेगा फ्रांस के खिलाफ। ग्रुप बी टू में जॉर्जिया, नॉर्दर्न आयरलैंड, हंगेरी, यूक्रेन। ग्रुप बी फोर में पोलैंड, बोस्निया हर्जेगोविना, स्वीडन, रोमानिया। और ग्रुप सी टू में मोंटेनेग्रो, साइप्रस। सब कुछ ये कल कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच भी खेले गए। जापान 3-1, दक्षिण कोरिया 3-0, चीन 3-0, उज्बेकिस्तान 3-1। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के क्वालिफायर्स भी कल खेले गए। ग्रुप सी में आइवरी कोस्ट ने 2-0 से गाना को हराया। कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 2, इक्वाटोरियल गिनिया 0, सियरा लियोन 2, जिम्बाब्वे 3। ग्रुप एफ में मोरिटानिया 3, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 1। ग्रुप जी में नमीबिया 1, कोंगो 0, कमरून 3, कोमोरो 1। ग्रुप एच में लीबिया 2, बोत्सवाना 2, चुनिसिया 1, युगांडा 1। आज के इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ब्राजील से होगा और इंडिया वर्सेस पनामा। क्रिकेट, इंडिया की 2 टीमें, 1 टी20 टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच, क्वार्टर फाइनल मैच सोमवार को खेलेगी। तो वन डे टीम खेलेगी परसों संडे को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की टीम अभी भारतीय दौरे पर है। ब्राजील की बात हुई तो फुटबॉल में ब्राजील लेजेंड्स और इंडिया ऑल स्टार्स के बीच कल एक फ्रेंडली मैच खेला गया। 4-3 से ब्राजील लेजेंड्स की जीत हुई। रोनाल्डिनो का एक गोल, फर्नांडिनो का हैट्रिक रहा। मॉरिशस की अंडर 23 फुटबॉल टीम आज हरारे जा रही है। कान अंडर 23 का मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ। बीच सोकर आखिरकार फाइनली मैच खेला जाएगा। मॉरिशस अंगोला वाला मैच आज 3 बजे ब्लू बे अरेना में खेला जाएगा। रिटर्न लेग वाला मैच भी मॉरिशस

0: नहीं खेला जाएगा इस संडे 27 सितंबर को। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वैसे इस वीकेंड प्रीमियर लीग नहीं है और घुड़दौर भी नहीं है, तो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच और यूरो नेशंस कप के मैच होंगे, खासतौर पर इंग्लैंड और स्पेन वाला मैच जो कल खेला जाएगा और मॉरिशस में बीच सॉकर। रीजनल लेवल पर भी काफी कुछ होगा, इस पर आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। हैव अ वंडरफुल फ्राइडे अहेड, ए हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू, बाय बाय।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: क्या बात है, इस टाइम का इंतजार जिसका होता है उसकी वही टाइम आ चुका है भाई। अभी देखते हैं कौन है जिनका आज बर्थडे है और लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से उनको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। पर हम तो यही कहेंगे, थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं, उनको जानते हैं उनका क्या चल रहा है। हम पूछते हैं उनसे, हेलो हेलो हेलो हेलो, हमारी मैम कहाँ गई? हेलो जी, नहीं मिल रही है भाई। हमने तो उनको कनेक्ट किया था, अभी कहाँ चले गए? फिर से एक बार ट्राई कर लें, क्या कहते हो? फिर से मिलाते हैं उनको। हेलो, नहीं नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। सलमा जी हमारे साथ थे और उनकी बिटिया रानी यानी कि नफीस ने उनको बर्थडे विश किया है। रुकैया यानी कि उनकी बहू जी ने उनको विश किया है और कहा था थोड़ी सी मस्ती करना, पर हम क्या करें, हमने तो कॉल मिलाया और उन्होंने रख दिया। बट कोई बात नहीं, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, इन्जॉय कीजिएगा अपने बर्थडे को और खुश रहिएगा। सलमा जी, मुझे पता है कि पूरा परिवार आपके आसपास बैठा हुआ है, पर क्या करें, अब तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा करेंगे आपके अगले साल। पर अपने दिन को अच्छा बनाइए, खुश रहिएगा। ये गाना आप सबके लिए।
1: Tech Mag, powered by 365. Bien plus encore.
3: We normally compare televisions by screen size, picture quality and price, but how much attention do we give to the electricity they consume? Major TV manufacturers are expanding a voluntary energy efficiency program that adjusts how new TV models use power. According to the Consumer Technology Association, the program is expected to reduce North American electricity bills by approximately $1.8 billion. A television may not appear to consume much power at one moment, but millions of screens operating for several hours every day create a very different calculation. As our homes fill with connected devices, energy efficiency may become as important as resolution. The smartest screen could eventually be the one that knows when to use less power.
1: Tech Mag was powered by 365. Bien plus encore.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिनका भी बर्थडे है उन सभी को हम विश करते हैं आर एम टू रेडियो मस्ती की पूरी टीम की तरफ से। और आज है दिव्या दत्ता यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस का भी बर्थडे, तो उन्हीं की मूवी से लिया हुआ ये गाना है। और हम तो चाहेंगे सब इंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, अपने दिन को खूबसूरत बनाइए।

0: North, South, East, or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजंस एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमाव SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ.
2: महफिल महफिल
3: RM2 रेडियो मस्ती.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
6: Radio Musti.
7: North, South,
6: 103.5.
7: East, West,
6: 96.4.
7: Center,
6: 99.4.
8: RM2 Radio Musti.
6: Radio Musti.
8: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
9: नमस्ते. आवाज भोजपुरी में समाचार सुने जा. ब्रिटिश समझौता पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम स्पष्ट कर लन कि शागस परी मॉरिशस के संप्रभुता से कोनो समझौता नहीं करल जा सकी. उ घोषणा कर लन कि वो जल्द ही लंदन में ब्रिटिश NSA जोनाथन पावल से मुलाकात करियन. जून 2026 ले कंपटीशन कमीशन के वित्तीय वर्ष 2025-2026 खातिर अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र से कुल 133 शिकायत और समस्या प्राप्त होल बा. सरकारी काम करवा लोग के कोनो भी

बाहरी वैतनिक गतिविधि खातिर पूर्व अनुमति ले के पड़ी। ई चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 के टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक आगे आलबा। आज अनंत व्रत बाटे। अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख समृद्धि खातिर कल जाय होला व्रत है। इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखल जाला। पूजा में अनंत सूत्र बांधल जाला जिमें सामान्यतः 14 गांठ होवेला। इसे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प के प्रतीक मानल जाला। आर दूसर देश की खबर में कोंगो में गुझिल पड़ी नाव पलटी से दो कोरी एक जना के मौत हो गलबा और दो कोरी नौ के बचा लेवल गलबा जबकि लापता यात्री की तलाश जारी बाटी। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:05 हो चुके हैं. क्या गाना था, मतलब बहुत ही प्यारा गाना है. और आपको मैं बता दूं, ये हमारी प्यारी सी रत्ना पदारत जी ने भी गाया है और बंधु मोहम्मद खालिद जी ने भी गाया है. तो मैं तो कहूँगी हमारे आरजेज इतने अच्छे हैं, जिनको इतनी सारी नॉलेज है, चाहे लैंग्वेज की कह लो, चाहे बात करने का स्टाइल

0: कह लो, चाहे आर्चर्स की कुछ अलग ही बात होती है। तो मैं तो कहूंगी बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड, पूरी आरएम टू रेडियो मस्ती की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और अब चलिए सीधा जाते हैं, मौसम कैसा रहेगा विधिमा से जानते हैं। विधिमा के लिए
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम में कभी कभार बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 15 से 17, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 5:57 पर और आज शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Alimentation, boissons, produits pour la maison et bien plus encore. De nombreuses offres vous attendent dans le rayon. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.mu.
5: On est tous Winners.

0: Thank you.
1: RM2 Radio Musti.
2: Pajia Panjia.
3: Paneer Paneer.
2: No. Pajia Panjia.
3: Paneer Paneer.
2: No. Panjia.
3: Paneer.
2: Oui, Saim Paneer. Pajia Panjia.
3: Paneer Paneer.
1: Découvrez la nouvelle gamme 100% veg de KFC avec le succulent paneer patty dans votre Boxmaster ou burger. Savourez toute la richesse du paneer, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur.
3: Paneer Paneer.
4: KFC.
5: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम ख्वासिसा की ही बात करते हैं। जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम ख्वासिसा की बात करते हैं। और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो ख्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड ख्वासिसा यार्ड

0: सेल होने जा रहा है लुशी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहां पहुंचना भी बहुत आसान है, गोजिरो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
1: RMT

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:14 हो चुके हैं. थैंक यू सो मच आप सबका साथ रहने के लिए. सुबह 5 बजे से हम लोग साथ हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं. पर क्या करें, हमारे को ये भी देखना पड़ता है कि किसका बर्थडे है, किसके एनिवर्सरीज हैं, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. तो बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया है, स्पेशली एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है निशी जी का. और वो कहती हैं अपने हस्बैंड को कि क्या बताऊँ तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बस आपका RM2 रेडियो मस्ती पे ही मुझे आज ट्रस्ट हो रहा है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है. और बस उनको इतना ही चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहे, प्यार रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहो. आपका बेटा, दोनों बच्चे तवलीन एंड तविश आपको बहुत प्यार करते हैं. क्या बात है, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर. आपका नाम तो नहीं बताया, आपकी वाइफ ने अपना नाम जरूर बताया, पर हम कहेंगे आप जैसे भी हैं खुश रहें, इन साथ में इंजॉय करें. यलेश जी साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम को. साथ में ललित जी और आज उनकी वाइफ का, जो कि यूएसए से हमें रेगुलरली सुनते हैं, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और इंजॉय कर रहे हैं गानों को और कह रहे हैं थैंक यू सो मच हमारी मॉर्निंग बनाने के लिए. साथ में ही प्रतिमा एंड प्रभा साथ दे रही हैं. आज उन दोनों, वो दोनों ट्विंस हैं और उनका बर्थडे है और उनके पूरा फैमिली उनको विश कर रहा है कथबोन से. और बस इतना ही कह रहे हैं कि कहाँ से तुम ये परियां आ जाती हो जिंदगी में, हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती हो. क्या बात है भैया, ऐसी बात तो सच बात है. बेटियाँ जब होती हैं घर में तो घर के अंदर ऐसा ही माहौल हो जाता है, जहाँ पर परियाँ जैसे अपने घर में एक अपनी एक प्यारी सी डेकोरेशन के साथ आती हैं, वैसे ही गर्ल्स जो होती हैं बहुत ही प्यार लेकर आती है. तो हम तो यही कहेंगे आप सबकी जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल रहे. जिनका बर्थडे है उनके लिए ऐसे ना चलाएं, हम कैसे हो सकता है. डांस कीजिए, मस्ती कीजिए और बताइए भैया आज पार्टी कहाँ मिल रही है.

0: Hollywood station.
1: Sports news.
2: Radio Musty in the mix.
3: आठ बजकर 30 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो स्पोर्ट्स मिस नहीं करना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में पिच ट्रैक और स्पोर्ट्स के ग्लव्स होते हैं, और उनके लिए हम फिर दोबारा से लेकर आते हैं जिनका भी मिस हो गया स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। अरविंद जो हमारे स्पोर्ट्स गुरु हैं, उनसे मिलना, तो हम उन्हें फिर से मिलाते हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। PFA नेशंस लीग में आज सभी खिलाड़ी अपने वतन, अपने अपनी राष्ट्रीय टीम की सेवा में। इस टूर्नामेंट में अलग अलग लीग होते हैं। यूरोप की बेहतरीन टीम में लीग ए में, इसमें 4 ग्रुप हैं। लीग ए ग्रुप 1 में है फ्रांस, इटली, बेल्जियम और तुर्की। लीग ए ग्रुप 2 में जर्मनी, नेदरलैंड्स, सर्बिया।

0: सर्बिया और ग्रीस। लीग ए ग्रुप थ्री में वर्ल्ड चैंपियन स्पेन, क्रोएशिया, इंग्लैंड और चेक रिपब्लिक। लीग ए ग्रुप फोर में पोर्टुगल, डेनमार्क, नॉर्वे और वेल्स। फिर लीग बी, सी और डी भी हैं। आज लीग ए मतलब एलीट ग्रुप के में नेदरलैंड्स का मुकाबला जर्मनी से, सर्बिया वर्सेस ग्रीस। लीग ए के ग्रुप फोर में नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्टुगल वर्सेस वेल्स, नेदरलैंड्स वर्सेस जर्मनी। द नेशनल मैनशाफ्ट के लिए बॉस यर्गन क्लॉप के लिए बैटेम दे फ्यू। लिवरपूल से जाने के बाद ये क्लॉप के लिए वापसी कॉम्बैक है, पहली बार वो मैदान में उतरेगा। उसके लिए नया चैलेंज, नई चुनौती है द नेशनल मैनशाफ्ट में अपना खोया हुआ गौरव वापस दिलाना, ब्रिंग बैक लॉस्ट ग्लोरी। नए खिलाड़ी लाए जा रहे हैं, दो अलग अलग स्क्वाड हैं, जवान टीम है, एवरेज एज 24 से 25 के बीच। नेदरलैंड्स के खिलाफ यर्गन क्लॉप के सामने कुछ पुराने खिलाड़ी होंगे जिनको वो अच्छी तरह से जानता है। लिवरपूल का उसका कप्तान वर्जिल वान डाइक, कोडी गाकपो, ग्रेवेनबर्च आदि। नेदरलैंड्स का नया बॉस ज़ावी हर्नांडेज है, जर्मनी की तरह यहां पर भी नया बॉस। ग्रुप फोर में पोर्टुगल वर्सेस वेल्स, चर्चा का विषय है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 41 साल का, 41 ईयर ओल्ड, पर अभी तक दम है, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। पोर्टुगल दो नेशंस लीग जीत चुका है, नेशनल टीम के साथ 1000 गोल का टारगेट है, अभी 21 गोल और चाहिए CR7 को। आज के अन्य लीग में अंडोरा, माल्टा, लिएश्टेनस्टाइन, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, इजराइल, कोसोवो, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। कुछ फ्रेंडली मैच भी आज खेले जाएंगे, इनमें जापान का मुकाबला यूरुग्वे से, साउथ कोरिया, इक्वाडोर, चीन, मालदीव्स, उज्बेकिस्तान, इराक। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस क्वालिफायर्स के तहत आज ग्रुप सी में आइवरी कोस्ट, गाना के बीच गर्म मुकाबला। ग्रुप ई में कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वाटोरियल गिनिया, सियेरा लियोन का मुकाबला जिम्बाब्वे से है। ग्रुप एफ में मोरिटानिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ग्रुप जी में नामीबिया, कोंगो, कमरून का मुकाबला कोमोरो आइलैंड से। फिर ग्रुप एच में लीबिया, बोत्सवाना, चुनिजिया वर्सेस युगांडा। कल UEFA Women's Champions League के लीग स्टेज के मैच खेले गए, बार्सिलोना ने 5-2 से पारी FC को हराया, चेल्सी की जीत 1-0 से।
1: स्पोर्ट्स न्यूज़, रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
2: ये वाले जो स्पोर्ट्स था कल का था, और अब ये है अपडेट आज का। फिर से दोबारा से अरविंद के पास चलते हैं और जानते हैं आज क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग आपको।
0: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RN2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। जर्मनी के नए बॉस यर्गन क्लॉप की एंट्री पार्टी को फीका कर दिया कोडी गाकपो ने। मैच ड्रॉ गया 1-1, वहीं पर बॉस, नए बॉस ज़ावी हर्नांडेज के लिए पहला मैच, पहला अंक फर्स्ट हाफ में एंड मेचा का गोल। इससे पहले काई हावर्ट्स को इंजुरी के कारण निकालना पड़ा, वही समस्या संडरलैंड के डच स्ट्राइकर ब्रायन ब्रॉबरी को लेकर, उसके लिए हैमस्ट्रिंग इंजुरी। इंजुरी टाइम में कोडी गाकपो के वोले पर नेदरलैंड्स ने इक्वलाइज किया। ग्रुप ए फोर में नॉर्वे ने डेनमार्क को 3-2 से हराया, अर्लिंग अलोन का डबल, उसको बॉब का एक गोल। डेनमार्क के लिए मिकेल डाम्सगार्ड और रास्मुस होइलैंड गोल स्कोर रहे। ग्रुप ए टू में सर्बिया 1, ग्रीस 2। ग्रुप ए फोर में पोर्टुगल ने 1-0 से वेल्स को हराया, योआओ फेलिक्स का गोल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कई अच्छे अच्छे मौके मिले पर नेट नहीं हिला पाया। ग्रुप बी थ्री में ऑस्ट्रिया 3, इसराइल 1, कोसोवो 1, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 0। ग्रुप डी 2 में लिएश्टेनस्टाइन 0, लिथुआनिया 2। ग्रुप डी 1 में अंडोरा 1, माल्टा 2। आज ग्रुप ए 1 में इटली का मुकाबला बेल्जियम से, टर्की खेलेगा फ्रांस के खिलाफ। ग्रुप बी 2 में जॉर्जिया, नॉर्दर्न आयरलैंड, हंगेरी, यूक्रेन। ग्रुप बी 4 में पोलैंड, बोस्निया हर्जेगोविना, स्वीडन, रोमानिया। और ग्रुप सी 2 में मोंटेनेग्रो, साइप्रस। सब कुछ ये कल कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच भी खेले गए, जापान 3, यूरुग्वे 1, दक्षिण कोरिया 3, इक्वाडोर 0, चीन 3, मालदीव्स 0, उज्बेकिस्तान 3, ईरान 1। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के क्वालिफायर्स भी

0: खेलेंगे। ग्रुप सी में आइवरी कोस्ट ने 2-0 से गाना को हराया, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 2 इक्वाटोरियल गिनिया 0, सियरा लियोन 2 जिम्बाब्वे 3। ग्रुप एफ में मोरिटानिया 3 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 1, ग्रुप जी में नामीबिया 1 कोंगो 0 कैमरून 3 कोमोरो 1। ग्रुप एच में लीबिया 2 बोत्सवाना 2 ट्यूनिजिया 1 युगांडा 1। आज के इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ब्राजील से होगा और इंडिया वर्सेस पनामा। क्रिकेट, इंडिया की दो टीमें एक टी20 टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच क्वार्टर फाइनल मैच सोमवार को खेलेगी, तो वन डे टीम खेलेगी परसों संडे को वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की टीम अभी भारतीय दौरे पर है। ब्राजील में ब्राजील की बात हुई तो फुटबॉल में ब्राजील लेजेंड्स और इंडिया ऑल स्टार्स के बीच कल एक फ्रेंडली मैच खेला गया, 4-3 से ब्राजील लेजेंड्स की जीत हुई। रोनाल्डिनो का एक गोल, फर्नांडिनो का हैट्रिक रहा। मॉरिशस की अंडर 23 फुटबॉल टीम आज हरारे जा रही है, कान अंडर 23 का मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ। बीच सॉकर आखिरकार फाइनली मैच खेला जाएगा, अंगोला वाला मैच, मॉरिशस अंगोला वाला मैच आज 3 बजे ब्लू बे अरेना में खेला जाएगा। रिटर्न लेग वाला मैच भी मॉरिशस में ही खेला जाएगा इस संडे 27 सितंबर को। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वैसे इस वीकेंड प्रीमियर लीग नहीं है और घुड़दौर भी नहीं है, तो इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच और यूरो नेशंस कप के मैच होंगे, खासतौर पर इंग्लैंड और स्पेन वाला मैच जो कल खेला जाएगा और मॉरिशस में। बीच सॉकर रीजनल लेवल पर भी काफी कुछ होगा, इस पर आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। हैव अ वंडरफुल फ्राइडे अहेड, ए हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।
1: बाय बाय अरविंद, पर थैंक यू सो मच आपका अपडेट्स देने के लिए।

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
6: दोस्तों, काम भी रहेगा, जिम्मेदारियां भी रहेंगी और थोड़ी भाग दौड़ भी रहेगी, लेकिन इनके बीच अपने हंसने के लिए एक वजह जरूर बचा कर रखिए, क्योंकि हल्का सा हंस देना दिन को अच्छा बनाता है, दूसरों को अच्छा लगता है। चार्ली चैपलिन ने एक बात कही थी, जिस दिन आप हंसे नहीं वह दिन व्यर्थ है, वो दिन अच्छा नहीं। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, अपने आप को मिरर में देखिए। जो वहाँ पर बैठा हुआ है, जो खड़ा हुआ है, जो आपको दिख रहा है, वही आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा साथी है। इंजॉय कीजिए उस इंसान के साथ जो बिल्कुल आपके सामने, मिरर के सामने खड़ा है। शीशे के सामने जो खड़ा हुआ इंसान है, वो आपका अपना दोस्त है।
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
7: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
3: Milo, libère ta force.
7: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
3: Milo, libère ta force.
7: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
4: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
5: Nestlé, good food, good life.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: 8:53 हो चुके हैं और दोस्तों जिन्होंने अपना बिजनेस करते हैं, जिन्होंने अपना सेटअप लगा लिया है, चाहे आपका स्टॉल है, चाहे आपकी शॉप है, चाहे बिजनेस में आपके अपने फ्रेंड सर्कल हो या आपके आपके कस्टमर्स आ रहे हो या आपके सारे दोस्त आ रहे हो, कोई भी जो इस समय कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं कुछ प्लानिंग कर रही हो, बच्चों के लिए ध्यान रखना हो, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, आप अगर बिजनेस में हैं तो कस्टमर्स आपको बहुत सारे मिले, अगर आप घर पे हैं तो आपको सुकून घर पे मिले, बच्चे अगर कॉलेज या स्कूल चले जा चुके हैं तो हम उनको यही कहेंगे या जा रहे हैं या उनके लिए बहुत सारी दिल में फीलिंग्स होती है पेरेंट्स की, तो हम तो यही कहेंगे वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और इन्जॉय करें अपनी ज़िंदगी को आगे चल के। तो बस अपना साथ रखिएगा हमारे साथ आरएम टू के साथ और हम बहुत सारा प्यार आपके लिए लेकर आते हैं सुबह से लेकर रात तक। और मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है विकास का, तो और उससे पहले आपको फिर से मिलेगी सुनने को न्यूज़। तो हम तो यही कहेंगे बस अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय मेरी तरफ से, पर आप जल्दी जुड़ पाएंगे एक अनदर बहुत ही ब्रिलियंट हमारे जो विकास हैं जो कि बहुत ही प्यारे गाने लेकर आते हैं मस्त मस्त, तो उनके साथ रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा एसएसआर रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे, सो भूलिएगा मत। इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा एसएसआर रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे

0: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 9 बजे हैं। देश विदेश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा। चलिए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार विधिमा।
1: नमस्कार विदिता, सभी को नमस्कार। ब्रिटिश समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया है कि शागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन के को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई हैं। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये चेतावनी 15 अक्टूबर 2026 की टैक्स रिटर्न समय सीमा से ठीक पहले आई है। आज अनंत व्रत है। अनंत व्रत भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। इसे मुख्य रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। पूजा में अनंत सूत्र बांधा जाता है जिसमें सामान्यतः 14 गांठें होती हैं। इससे भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। और विदेश में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानी हवाई हमलों की एक लहर में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी

0: बलों ने अफगानिस्तान में 10 ठिकानों पर हमला किया और ये भी जोड़ा कि ये हमले पूरी तरह से चिन्हित सैन्य लक्ष्यों तक ही सीमित थे। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got.
3: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Hey, good morning. Now it's got 6 minutes, and yes, it's a Friday. Thank God it's a Friday. Shukr hai ki shukrwar hai, aur hamesha har din ke liye hum bilkul tayar hain. चाहे बॉलीवुड की बात हो या फिर बात करें आपकी जिंदगी की, वीकेंड में बहुत सारी प्लानिंग, और इस प्लानिंग में हम आपको हवा देते हुए

म्यूजिक की पहुंचाते हुए 24/7 द रिदम जहां पर होते हैं आप और हम द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक. हेलो वेलकम. यस इट्स 9 to 12 यानी कि मस्ती मॉर्निंग्स. ऐसा जिंदगी के अंदर एक रिदम होना फिर लगता है कि सब कुछ ठीक है. मॉर्निंग में बस अपने फोन के साथ चिपको मत, ये सोच लो कि आज का दिन कैसे होने वाला है, कैसे आप कंडीशन करने वाले हैं, क्या सोचने वाले, क्या करने वाले, सब कुछ. वी गोना टॉक अबाउट पार्टी स्नैक्स, साथ में बात करेंगे आपके प्लान्स की, बात करेंगे मूवी रिलीजेस की. एंड नॉट टू फॉरगेट आज जब है 25 सितंबर, नहीं ठीक है कि सितंबर का महीना खत्म हो रहा है लेकिन एक की समाप्ति यानी कि शुरुआत दूसरे की. तो बस शुरुआत करने वाले हैं अपने प्लान्स की और प्लान ये कि 9 से 12 ना हम साथ में रहने वाले हैं. लाइफस्टाइल टिप्स एंड साथ साथ मोटिवेशन, गाने को जैसे पसंद करेगा पूरा नेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड.

0: और जस्ट लविंग द वे इट्स गोइंग एट द मोमेंट, यानी कि वो एनर्जी, वो वाइब, वो रिदम जिंदगी में आ ही जाती है, वो अच्छा लगता है ना गाने के अंदर। मैं तो चेक कर लेता हूँ, जय ये जो मौसी है, हाँ ये धर्म चेक हो गया, ए क्या बोला रे, मिथुन चेक, यानी कि सब कुछ ठीक है। शुरू करें अजी सितारों की चाल।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: जैसे आप जानते सितारों की चाल शुरुआत करते हुए।
2: एरीज
0: मेष राशि। आज आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ने वाला है, फुल वॉल्यूम पे रहने वाला है, ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ, इनिशिएटिव लेने का मन करेगा, बढ़िया है, बी अ लीडर। बस एक छोटी सी वार्निंग, हर बात को इंस्टेंटली समझकर बस रिएक्ट ना कर देना। सो आज का मंत्र ये रहेगा कि मैं वाइजली सोचूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा। फ्राइडे आपको बोल रहा है कि स्लो डाउन, लेकिन रुको मत, आज कोई पेंडिंग काम फाइनली मूव हो सकता है, किसी क्लोज पर्सन की एडवाइस सरप्राइजिंगली यूजफुल हो सकती है, बस सुनने की देर है, सुनिए, सोचिए, समझिए, स्टेडी स्टेप्स, मिलेंगे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स।
2: जेमिनी मिथुन राशि।

0: मिथुन की बात कर रहा था। मिथुन की बात करती है रे। कम्युनिकेशन आपकी सुपर पावर बनने वाली है। एक कॉन्वर्सेशन जो बोरिंग लग रही थी वही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैसेज भेजने से पहले एक बार फिर से पढ़ लो, ये जरूरी है। बस ये सोच लो कि मेरी बात क्लियर है, मेरा माइंड भी।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: इमोशंस का ओवरफ्लो और चेहरे पर इतनी ग्लो, अच्छी बात है। यानी कि बैठे बैठे बस सिचुएशन का आनंद लो। वर्क में मल्टीटास्किंग के चक्कर में अपनी एनर्जी खत्म मत कर लेना। नहीं ठीक है, फोन तो फिर भी रिचार्ज होता है, लेकिन खुद को कैसे करोगे या फिर अब वीकेंड पे डिपेंड करोगे। फील डीपली लेकिन चूज पीसफुली।
1: लियो सिंह राशि।
0: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। प्रेजेंटेशन हो, मीटिंग हो या फिर सोशल सेटिंग, आपकी जो प्रेजेंस है ना भाई, इसको नोटिस तो किया जाएगा। बस क्रेडिट शेयर करना ना भूले। टीम ने काम किया है तो फिर साथ में इनाम भी बांटना चाहिए। इवनिंग में कुछ फन प्लान कर सकते हैं। शाइन कीजिए लेकिन दूसरों को भी तो मौका दीजिए।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: भाई आज आपने जो काफी सोच समझ के विचार करके जो प्रायोरिटी लिस्ट बना ली है, अच्छा है। एक एक करके खत्म करते जाइए। एक इम्पोर्टेंट टास्क पिक करो, कंप्लीट करो, फिर राहत की सांस। लेकिन राहत की सांस लोगे तो वो क्या लेगा? पर्सनल लाइफ में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अननेसेसरी ओवरथिंकिंग को काफी हद तक क्लियर कर सकती है। आज का मंत्र, प्रोग्रेस इज बेटर देन परफेक्शन।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: भाई फ्राइडे और आप, क्या कॉम्बिनेशन है। नहीं, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कोई डिसीजन पेंडिंग हो तो दोनों साइड्स को कामनी वे कीजिए। ये सोचिए कि किसको कितना तवज्जो देना है, कितना वेट देना है। बैलेंस बिगिंस विद चूजिंग मायसेल्फ टू।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: भाई आपकी जो डिटर्मिनेशन है ना, यानी कि बस करना ही करना है, वो काफी स्ट्रांग है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो आपने पेंडिंग छोड़ी हैं, उनको पकड़ लो। कंपटीशन फील हो सकता है लेकिन अपनी लेन में फोकस रखो ना। ये लेन चेंजिंग जिगजैग दिखा दो अपना स्वैग। लव लाइफ में मिस्ट्री अच्छी है, अननेसेसरी माइंड गेम्स नहीं। बस ये सोच लीजिए कि बाहर के शोर से मेरा फोकस ज्यादा जरूरी।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: क्या वादा आप तो निकल पड़े। नहीं, एडवेंचर का मूड अच्छी बात है लेकिन वॉलेट को भी तो वीकेंड चाहिए। आज स्पॉन्टेनियस प्लान एक्साइटिंग हो सकते हैं लेकिन बिग कमिटमेंट्स, इसमें थोड़ा सा पॉज बटन दबाइए। किसी न्यू आइडिया पर काम शुरू करने से पहले अरे डिटेल्स तो चेक कीजिए, होमवर्क तो कीजिए। आज का मंत्र, एडवेंचर लेकिन साथ में अवेयरनेस।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: भाई कुछ पुरानी बातें हैं जो हो सकता है कि आज के कनेक्शन के साथ जुड़ जाए। हाँ, उससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा लेकिन साथ में आगे बढ़ने का भी। और वर्क में डिसिप्लिन आपको एडवांटेज देगा। फोकस, डिटर्मिनेशन, मेहनत और साथ साथ में कुछ नया करने का जज्बा। गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट। अरे ये सब आप ही तो कर रहे हैं, बस कल से सीखा आज शुरू।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: एक्वेरियस, माइंड में फ्रेश आइडियाज की बारिश हो सकती है, इसलिए छतरी मत लगाओ, ब्लॉक मत करो, लेकिन सब आइडियाज को एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी मत करो। एक आइडिया चूज करो और उसको शेप देने की कोशिश करो। पर्सनल रिलेशनशिप में लेटिंग गो या फॉरगिवनेस, इसका थॉट भी आ सकता है। आज का मंत्र, आई मेक स्पेस फॉर व्हाट मेक्स मी मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ना जिंदगी का नाम।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: पाइसेस, आज इंट्यूशन की वॉल्यूम काफी हाई रहने वाली है। अगर कोई सिचुएशन लगता ना कि जैसे नहीं, मेरी गट फीलिंग साथ नहीं दे रही, तो उसको कम्प्लीटली इग्नोर मत करो। माइंड और साथ में हार्ट दोनों जब मान जाते हैं ना, तो सिचुएशन ठीक होती है। तो आज का मंत्र, चीज को ट्रस्ट करो लेकिन स्टे ग्राउंडेड।
2: योर डेली हॉरोस्कोप, RM2 रेडियो मस्ती।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

Hey, RM2 listeners. इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए फॉर एन एक्साइटिंग रेडियो शॉपिंग सेशन ऑन RM2. ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस रेडियो शॉपिंग. एक घंटे में ढेरों शॉपिंग आइडियाज. Friday, 25th of September, from 5 p.m. to 6 p.m. Discover Elegancia Tribeca, your destination for beautiful furniture to bring style to your home. Make sure you tune in.

0: ये जाने ऑटोमेटिक ही है, इतना ला ला ला सुनने के बाद लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: भाई क्या करें, थोड़ा फिल्मी होना हो ही जाता है when it comes to Bollywood number one music station RM2. Ladies and gentlemen, आज की तारीख का 25, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इट्स अ फ्राइडे, और साहब अब फ्राइडे की बात करें तो मूवी रिलीजेस होती हैं। चलिए बात करते हैं अबाउट विवान। फॉरेस्ट की कहानी है, फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, एक अलग ही कहानी, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल भी इसके अंदर होने वाले हैं, देखते हैं क्या कमाल होता है। और साथ ही में डोंट बी शाय ये भी आ रही है इसके अंदर, आरुषि बालूजा, अंश दुग्गल, ऐसे कुछ नाम है जो कि इतने पॉपुलर नहीं है प्रॉब्ली, लेकिन देखते हैं, हो सकता है कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो कि मूवीज के जरिए कमाल कर देते हैं। नहीं सो 25 यानी कि सितंबर का महीना ख़त्म होते हुए ये दो मूवीज़ हमें ज़रूर देखने आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें इस साल की, तो अभी तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले के अंदर धुरंधर सिटिंग ऑन टॉप, 1,800 करोड़ से ऊपर बॉर्डर 2 और उसके बाद हनुमान अंश, तो बीबी स्क्रीन चल रही है मॉरिशस में हनुमान अंश की, और अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर पहुँच सकते हैं। इन द टॉप 5 ऑल्सो नंबर 4 पर है मिर्ज़ापुर भूत बंगला, उसके बाद धमाल 4, आवारापन 2। लेकिन बात करें अगर विवान की, तो ये देखते हैं क्या कमाल होता है, तमन्ना भाटिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, गुड कॉम्बिनेशन। और वहीं पर रे बावरी गेटिंग पॉपुलर, डोंट बी शाय।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: सीटीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: सिमरन ने तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि जहां मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। जिस तरह राज के लिए फील करती हो, वैसे मैंने कभी भी समीर के लिए फील नहीं किया।
2: तुम्हें आशा से शादी करनी होगी और हर हालत में करनी होगी।
1: जिसे मैं प्यार करती हूँ आज वो किसी और का होने जा रहा है।
3: कोई मेरे दिल में है।
0: 26 सितंबर शनिवार को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कोई मेरे दिल में है, 2005 की मूवी प्रियांशु चैटर्जी और दिया मिर्जा पर फिल्माई गई कोई मेरे दिल में है।

0: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
2: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता तो ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती।
1: मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: 1 2 3 क्योंकि
0: सत्ताईस सितंबर रविवार को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि
3: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
1: 25th of September, ye hai Friday ka din. Time check exactly 10 a.m. जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
4: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मॉरिशस की शागस पर संप्रभुता गए समझौता योग्य है। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये प्रतिक्रिया दी है। सरकारी नेता ने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में बैठकें करेंगे, विशेष रूप से ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावेल से मुलाकात करेंगे। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के अलावा कोई अन्य पेशेवर गतिविधि नहीं कर सकते हैं। मंत्रालयों, विभागों और सरकारी निकायों को हाल ही में भेजे गए एक सर्कुलर में याद दिलाया गया है कि किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि, विशेष रूप से दूसरी नौकरी, कंसल्टेंसी सेवाओं या किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। आप जो खा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे उत्पादों में अवैध पदार्थ पाए जा सकते हैं जो पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य लगते हैं, विशेष रूप से गमीज, बिस्कुट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। देश के मध्य भाग में चलाए गए एक अभियान के दौरान आजसू ने कुछ कुकीज जब्त की और वैज्ञानिक विश्लेषण से ये पता चला कि इन उत्पादों में प्रतिबंधित पदार्थ शामिल थे। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई और उनकी पहचान की गई। ये जानकारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उसकी निगरानी गतिविधियों से संबंधित उसकी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई है। 2026-2027 की वर्षा ऋतु के नज़दीक आने से लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने पोटली नगर पालिका में स्थानीय निकायों की एक बैठक बुलाई। चर्चा का मुख्य विषय नालियों और जल मार्गों की स्थिति के साथ साथ विशेषकर जोखिम वाले इलाकों में किए जाने वाले रखरखाव के कार्य थे। नालियों की सफाई के लिए प्रदान फंड्स के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। मंत्री अजय गणेश के अनुसार पानी की निकासी को सुगम बनाने और बाढ़ के जोखिम को सीमित करने के लिए नालियों का नियमित रखरखाव और नदियों की सफाई आवश्यक है। और विदेश में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात अर्नब ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है। इसके प्रभाव से दोनों राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते दक्षिण ओडिशा के 10 जिलों

0: स्कूल बंद कर दिए गए हैं और करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा मलकानगिरी में पुल डूबने से यातायात ठप है, नेशनल हाईवे बंद है और भद्रक में कई नावें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रायरोड ब्रह्मस्थान में 80 साल के 80 years old के श्री देवदत्त बैजनाथ, जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले पुलिस कॉर्पोरल थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके घर रायरोड ब्रह्मस्थान से उठाकर लावांचुआ के शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। धनपत लेन वाशेरी में 60 साल की 60 years old की श्रीमती सुदेवी लखिया, पैदाइशी नाम भिकारी और जो सुदेवी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कुणाल लखिया के घर धनपत लेन वाशेरी से उठाकर वाशेरी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On him.

0: Lisa Walton in the second hour, 25 September, यानी आज का दिन है World Pharmacist Day. To all the pharmacists, thank you so much. हमेशा काम करने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए. And also World Dreams Day, यानी कि सपने देखो, लेकिन उनको chase करो, पूरा करो. और वहीं पर अगर आपका सपना है, पहुंचना है, जाकर कुछ गुनगुनाना है पुराने गानों के साथ, so here's your chance.
1: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा एसएसआर रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25 सितंबर, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमा एसएसआर रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हम

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मूसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए कुछ मैसेजेस और जहाँ पर कहते हैं कि प्लीज़ एक गाना हमारे लिए हो जाए टू राजा फ्रॉम हिज रानी. चलिए लगता है कि प्यार मोहब्बत की शुरू हो गई कहानी. वहीं पर कहते हैं गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी 25th ऑफ सितंबर फ्राइडे का दिन, इट्स लवली टू बी बैक विद द म्यूजिक. और वहीं पर दाखन श्वेता रविश प्रशा लविशा पांडू फैमिली जमा साथ दे रही है. नमस्ते जी. अगला गाना स्पेशल टू मामू सानू. अरे क्या बात है, कहीं वो कुमार सानू तो नहीं. हे सुनते रहे, ये भी अलग स्टाइल था. नहीं एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम दीदी सीता जीजी हैं और साथ में नीसेस हैं रूमा दीपा और उनकी पूरी पूरी फैमिली, विराट सचिन किशन लवेश ओजस्वी और पूरी फैमिली की तरफ से भी. और वहीं पर कहते हैं प्लीज़ अगला गाना स्पेशली टू ऑल माय फ्रेंड्स. अरे साहब मूड है, मौसम है, गाने कितने मौसम है.

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: अच्छा हुआ मिली, वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
2: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
1: आपका नाम मुझे क्या मालूम, आपका नाम क्या?
2: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
1: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
2: जाइए यहाँ से, एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
1: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
3: कहता है बाबुल
0: रविवार 27 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।

अच्छा जब वीकेंड की बात आती है तो फिर बहुत सारे प्लान्स होते हैं और कभी कभी घर पर कुछ प्लान कर लिया, अब सोचे कि खाने पीने की क्या करने चाहिए। चलिए पार्टी पीपल कुछ बात करते हैं इसी बारे में। और आज अगर घर में मिनी पार्टी या गेट टुगेदर या फिर इम्प्रॉम्प्टू कोई सेलिब्रेशन है तो टेंशन बिल्कुल नहीं। बात करेंगे जो आपको समझ में आए, एक बात करेंगे वही बनाएंगे कुछ ऐसे स्नैक्स जो सिंपल भी हैं, टेस्टी भी, और प्रेजेंटेशन में फुल मार्क्स लेकर आएंगे। कमाल हो सकता है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: देखिए साहब, एक बहुत कमाल की चीज होती है जो भूख पैदा कर देती है. वी टॉक अबाउट मेनी पिज्जा टोस्ट. ब्रेड स्लाइसेस लीजिए, ऊपर पिज्जा सॉस, चॉप्ड कैप्सिकम, अनियन, स्वीट कॉर्न या फिर चीज डालिए, और आनो और साथ में चिली फ्लेक्स के साथ टोस्ट लेकर ये बन सकते हैं. क्रिस्पी होंगे और चीजी सेंटर में, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, अब आप मसाला पोटैटो बाइट्स बना सकते हैं, यानी कि बॉयल्ड पोटैटो. उसको मैश करके थोड़ा सॉल्ट, चिली, चाट मसाला, कोरिएंडर मिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे बॉल्स या पैटीज बनाकर शालो फ्राई कर सकते हैं. टूथपिक के साथ सर्व करें और साथ में मिंट चटनी. ओए होए होए, मैं कहता हूँ कमाल. और मेरे पर बहुत आसान होता है अगर आप नो कुक मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि चीज़ और वेजी स्क्यूअर्स, इनको बनाना चाहते हैं. क्यूकम्बर, चेरी टोमेटो, चीज़ के क्यूब्स और ऑलिव्स को कलरफुल टूथपिक्स पर लगाकर रेडी कर सकते हैं 5 मिनट में. बिल्कुल कलरफुल, बिल्कुल तैयार. और वहीं पर चॉकलेट डिप्ड स्ट्रॉबेरीज या बिस्किट या फिर चॉकलेट बाइट्स ट्राई कीजिए. फैंसी लगते हैं और प्रिपरेशन भी सिंपल है. ये उस टाइम के लिए जब आपको समझना है कि लास्ट मिनट करें तो क्या करें. वहीं पर कुछ डेकोर कर सकते हैं, फेरी लाइट्स हो, टेबल का मैजिक, यानी कि एक प्लेन टेबल क्लॉथ और उस पर स्मॉल फ्लावर्स, कैंडल या कलरफुल पेपर डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं. स्नैक्स को डिफरेंट हाइट्स पर सर्व कर सकते हैं, बॉक्सेस को क्लॉथ के नीचे हाइड करके. ऐसा कुछ इट्स गोना कम आउट वेरी वेरी नाइस. छोटे से सिंपल से ट्रिक काम करते हैं, तो मुझे जरूर बताइए. बात की पार्टी, यहाँ तो पार्टी भी शुरू हो गई. लेकिन दरवाजे पे कुंडी मारनी है.

0: Time to
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: चलिए फैशन पर थोड़ी सी नजर एंड लेट्स टॉक अबाउट लाइट वेट फैब्रिक्स क्योंकि अब समर सेटिंग इन। वैसे कॉटन लिनन को बहुत पसंद किया जाता है, ब्रीदेबल मटेरियल होते हैं, उनको चूज करना आसानी से कि कोई भी आपको वाली फीलिंग ना आए, चिपचिपी वाली, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जब गर्मी होती है फ्रेश कलर्स ये कुछ अलग ही रंगत लेकर आते हैं समर के लिए, रेडी लुक, वाइट, बेज या फिर पास्टल कलर्स। और सबसे बड़ी बात है कि रिलैक्स फिट्स, फ्लोई शर्ट्स, वाइड लेग पैंट्स, आजकल बैगी स्टाइल भी काफ़ी चल गया, नहीं ब्रीजी ड्रेसेस एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए, और कॉम्फी फुटवेयर ये बहुत ज़रूरी है, सैंडल्स, स्नीकर्स। वैसे कई लोग चाहते हैं कि उनके जो चप्पल हैं वो खुली हो आगे से, फिर भी स्टाइलिश, सो यू कैन ऑलवेज गेट समथिंग लाइक दिस। स्मार्ट एक्सेसरीज जैसे कि सनग्लासेस, हैट्स या फिर प्रैक्टिकल बैग्स ऐड करें, सन प्रोटेक्शन अगर ऐड करना चाहते हैं तो, एंड बी प्रिपेयर्ड, वाटर बॉटल, टिश्यूज, कॉम या फिर जो बाकी एसेंशियल्स होते हैं ना वो मिनी किट जरूर कैरी करें। जरूरी है कि आप समय में कूल रहें लेकिन उससे ज्यादा आपकी लुक भी कूल लगे।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
1: रेडियो मस्ती।

RM2 listeners, इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए फॉर एन एक्साइटिंग रेडियो शॉपिंग सेशन ऑन RM2। ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस रेडियो शॉपिंग। एक घंटे में ढेरों शॉपिंग आइडियाज। Friday 25th of September from 5 PM to 6 PM. Discover Elegancia Tribeca, your destination for beautiful furniture to bring style to your home. Make sure you tune in.

0: Okay, good morning. Time check, exactly 11 a.m. संक्षिप्त समाचारों से मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। मॉरिशस की शागोस पर संप्रभुता गैर समझौता योग्य है। मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये प्रतिक्रिया दी। सरकारी नेता ने घोषणा की है कि वे जल्द ही लंदन में बैठकें करेंगी। सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के अलावा कोई अन्य पेशेवर गतिविधि नहीं कर सकते हैं। मंत्रालयों, विभागों और सरकारी निकायों को हाल ही में भेजे गए एक सर्कुलर में ये याद दिलाया गया है कि किसी भी बाहरी वैतनिक गतिविधि, विशेष रूप से दूसरी नौकरी, कंसल्टेंसी सेवाओं या किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। जून 2026 तक कंपटीशन कमीशन को अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में कुल 133 शिकायतें और समस्याएं प्राप्त हुई और उनकी पहचान की गई। ये जानकारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उसकी निगरानी गतिविधियों से संबंधित उसकी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई है। 2026-2027 की वर्षा ऋतु के नजदीक आने से लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने पोटली नगर पालिका में स्थानीय निकायों की एक बैठक बुलाई। चर्चा का मुख्य विषय नालियों और जल मार्गों की स्थिति के साथ साथ विशेष जोखिम वाले इलाकों में किए जाने वाले रखरखाव के कार्य थे। और विदेश में दक्षिण पूर्व पोलैंड के यारोस्लाव शहर में एक कैथोलिक एबे के परिसर में चाकू से हुए हमले में एक पादरी की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। एक 31 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पोलैंड के राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति दोनों ने इस घटना पर गहरी निंदा और दुख व्यक्त किया है। इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में 80 साल के 80 years old के श्री देवदत्त बोजनुत, जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे और पहले पुलिस कॉर्पोरल थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। दनपत लेन बुआशेरी में 60 साल की 60 years old की श्रीमती सुदेवी लकिया, पैदाइशी नाम भिकारी और जो सुदेवी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कुणाल लकिया के घर दनपत लेन बुआशेरी से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कारो आकाशिया थ्रा बुटीक में 74 साल की 74 years old की श्रीमती पद्मावती गंगू, जो इंदिरा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके पति श्री राज जोवाहियर के घर कारो आकाशिया थ्रा बुटीक से उठाकर पैनमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। मधुलेन पिचिवेजे में 89 साल की 89 years old की श्रीमती जामुंती फाउदो, पैदाइशी नाम पेतुब और जो सुनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके बेटे प्रदीप फाउदो के घर मधुलेन पिचिवेजे से उठाकर से कॉन्स्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: On NBC Play and NBC.MU.
3: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, 2 घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September।

0: के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमाव SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।
1: महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।
2: रेडियो मस्ती।

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फ्राइडे का मूड 11:26 मिनट 25th of September। हेलो जी, मैं आपको बताया कि बॉलीवुड की कुछ नई मूवीज भी रिलीज होने वाली है। फ्राइडे का दिन है, सो यू कैन टेक अ ब्रेक एंड जाकर मूवी शूवी देखकर फिट एंड फाइन। वहीं पर अगर कोई सोप या सीरीज देखने का प्लान है तो वो भी सही। बहुत सारे प्लान यही करते हैं कि कुछ अलग किया जाए। अलग की बात ये कि समथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। ऐसे नहीं कि आप दूसरों की रील को देखकर या फिर स्टोरी को चेकआउट करके वो ही करना चाहते हैं। अरे आप क्या चाहते हैं? एक प्यारा सा रिलैक्सिंग टाइम, गो टू द बीच एंड प्रॉब्ली टेक अ नेचर वॉक अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों को बाहर लेकर सबको ही। सुपर गुड मॉर्निंग,
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

प्रीति जी नमस्कार और कहते हैं कि प्लीज आप मोहित से सभी फैमिली के लिए रिकाय फैमिली एंड आल्सो टू इमरान हाशमी के लिए भी। अरे क्या बात है, हमारा पन देकर इतना अपना पन

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: सीधा बात करते हैं गोविंदा, क्योंकि आजकल बहुत सुर्खियों में है जहां पर बात हुई पर्सनल लाइफ के बारे में, वहीं पर अनुपम खेर जिन्होंने उनके साथ काफी काम किया, कहा कि भाई जिस तरह वो इम्प्रोवाइज कर देना ऑन द स्पॉट, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, कमाल के एक्टर। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें जो भी हो रहा है वो ज़्यादा बन गया लोगों के लिए कि उस पर कमेंट किया जाए, बात किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल हैबिट्स को ओवरशैडो ना करने दो अपनी इंटायर लाइफ पर। वैसे अनुपम खेर ने भी कहा कि देखिए वो अपने सिचुएशन में बेस्ट जज हैं, क्या करना चाहिए वो सही बात है, लेकिन फिर भी ही नहीं सुकम बाय। और ये कहा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं और हम जानते हैं कि उनकी पत्नी के साथ जो अभी चल रहा है, जहाँ पर एलिगेशंस हो रही थी कि एक दूसरे से बन नहीं रही या फिर डिवोर्स की तरफ चल रहे हैं या दोनों में से कौन बुरा, सुनीता आहूजा, बस स्पेकुलेशन बहुत सारी हो रही हैं। बट इट्स टाइम टू गेट एवरीथिंग डाउन एंड अप इन द फ्यूम्स और बैक टू द एक्टिंग करियर, बिकॉज लोग उनको इतना पसंद करते हैं। ऐसे करता

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Hello, welcome, Namaste, Abhinandan. Let's talk about Raveena Tandon. नहीं, खाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ खबर है. ऐसा जब 90s दौर की बात करते हैं तो बहुत कुछ होता था उस टाइम पर. ये जहाँ पर कॉम्पोजिशंस की बात होती है, लेकिन रवीना टंडन एक रियलिटी शो में पहुंची और कहा कि दो एक्ट्रेसेस ऐसी थी जो अलग अलग शिफ्ट में जाती थी, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, और कभी कभी तो खुद भूल जाती थी कि ये कैरेक्टर कौन सा है, करना क्या है. तो मज़ा आता था उस टाइम के दौर के बारे में जानने में, जब मिलता था कि कैसे होता था, जहाँ पर रोड पर जाकर दे हैड टू चेंज एंड कहीं गलियों में, बगीचों में, पहाड़ों के, झरनों के पीछे. ओह माय गॉड, उन्होंने कहा कि अगर किसी फिल्म में मेरा किरदार अमीर और बिगड़ी हुई लड़की का था तो कभी कभी छह अलग सेट पर कुछ अलग चल रहा होता, तो सब कुछ याद करना वॉज नॉट ईजी एट ऑल. सुबह 7 बजे से काम शुरू, उसके बाद अलग अलग सेट पर, फिर दूसरे सेट पर जाते आते. हाँ, लेकिन एक बहुत कमाल की बात है, उन्होंने कहा कि अंदाज अपना अपना के सेट पर शूटिंग कर रहे थे और याद है उन्होंने बताया कि करिश्मा और मैं साथ में आमिर सलमान और ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक रात की शूटिंग का किस्सा शेयर करते हुए बताया कि मजाक में उन्हें और करिश्मा को एक खंभे से बांध दिया गया था और बाकी सब लोग खाना खाने चले गए. इंतजार करते हुए रवीना ने आखिरकार पूछा, जूस पिएगी? कहते हैं हाँ, लेकिन भूख बहुत लगी है. इस तरह दोनों की बातचीत बस शुरू हुई और बन गए दोस्त. भाई गॉड, कोई बांध के चला जाए और भूख लगी हो तो फिर मन करे ना कि अब तो गोली, समझ रहे हो ना,

अच्छा जाने का वक्त हो गया एंड आई होप यू हैविंग अ वंडरफुल टाइम फ्राइडे का दिन सो मेक योर प्लान्स फॉर द वीकेंड फैमिली के साथ लेकिन जो भी करें म्यूजिक साथ साथ थोड़ी देर में निर्मनी आपका साथ देने के लिए बाहर से

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे है। तेरी सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमान नमस्कार।
6: नमस्कार निर्मनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चलते विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों से संबंधित एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य नवाचार, निवेश और तकनीकी विकास के क्षेत्रों में नए सहयोग को बढ़ावा देना है। सरस्वती मुखिया की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। एमसीआईटी ने मृतका के दो करीबियों, उनके 54 वर्षीय भाई प्रीतम और 29 वर्षीय बहू खुशबू को गिरफ्तार कर लिया है। याद दिला दें कि पिछले शुक्रवार को सरस्वती मुखिया थियोले में अपने बागान में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ था कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई थी। इस संदर्भ में जाँच जारी है। पोटली जिला अदालत ने व्यवसायी आली साहिब जगाई को अपने अकाउंटेंट, अपने ब्रोकर और अपने व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े दो अन्य लोगों सहित चार गवाहों से संपर्क करने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अस्थायी रूप से आरोपी पूर्व पुलिस सुपरिटेंडेंट आशिक जगाई के बेटे ने अपनी जमानत की शर्तों में संशोधन का अनुरोध किया था, जिसके तहत उन्हें इस मामले में गवाहों से संपर्क करने से प्रतिबंधित किया गया था। वो संविधान की धारा 10 के अनुसार अपनी रक्षा की तैयारी करने और FCC के सवालों का सटीक उत्तर देने के लिए उनसे परामर्श करना चाहते थे। हालांकि FCC ने इसका विरोध किया था। कल दिए गए एक रूलिंग में अदालत का मानना है कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ का जोखिम कम है, साथ ही उसने जांच की अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता को भी याद दिलाया है। हालांकि संपर्क केवल लिखित आदान प्रदान तक सीमित रहेगा। अली साहिब जगाई ने आगे बढ़ने से पहले कुछ गवाहों से परामर्श करने की बात कहने से पहले FCC को 7 बयान दिए थे। उनका बचाव वकील यश बादें कर रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि गमीज, बिस्कुट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जैसे सामान्य दिखने वाले उत्पादों में अवैध पदार्थ हो सकते हैं। हाल ही में एक अभियान में जब्त की गई कुकीज और पिछले साल हवाई अड्डे पर पकड़े गए सामानों की FSL जांच में सिंथेटिक ड्रग्स और गांजे की पुष्टि हुई है। और विदेश में कजाकिस्तान में नौसेना अभ्यास के दौरान अचानक खराब मौसम के कारण समुद्र में बह जाने से 12 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। 17 सैनिकों में से 3 को बचा लिया गया, बाकी 2 जवानों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति कासिम जोमर्त टोकायेव ने शुक्रवार को राष्ट्र शोक दिवस घोषित किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। मधुलेन पृथ्वीवेजे में 89 साल की 89 years old की श्रीमती जामुंती फाउडो पैदाइशी नाम पेतुब और जुसुनी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे प्रदीप फाउडो के घर मधुलेन पृथ्वीवेजे से उठाकर सियाकोंस्टांस सेंट पियर की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। काहुआ कासिया तो बुटीक में 74 साल की 74 years old की श्रीमती पद्मावती गोंगू जो इंदिरा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके पति श्री राज जवाहर के घर काहुआ कासिया तो बुटीक से उठाकर पैनमानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। धनपत लेन वाशेरी में 60 साल की 60 years old की श्रीमती सुदेवी लकिया पैदाइशी नाम बिकारी और जो सुदेवी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कुणाल लकिया के घर धनपत लेन वाशेरी से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:00 PM। रारोड ब्रह्मस्थान में 80 साल के 80 years old की श्री

0: देवदत्त बैजनत जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले पुलिस कॉर्पोरल थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर रारुद ब्रह्म स्थान से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। वाल्टोन रोड लॉन्ग माउंटेन में 72 साल के 72 years old के श्री विद्यानंद रामरतन जो कृष्ण नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके घर वाल्टोन रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर त्यामिनिस्ट्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: Retro Rhythm.
3: RM2. Radio Musti.

0: Retro Rhythm. And yes, good afternoon, मेरे रेट्रो लवर्स. पर्दा तो वैसे उठ गया है आज के रेट्रो रिदम में, क्योंकि सिर्फ गाने नहीं चलेंगे बल्कि यादें भी रिवाइंड होने वाली है. एंड वैसे आपने कभी नोटिस किया है, रेट्रो गाने सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है ना, कि आप एग्जैक्टली वही जगह पर नहीं होते हैं लेकिन दिल सीधा उस जमाने में पहुंच जाता है. तो वॉल्यूम को अपने हिसाब से ठीक कीजिए और आगे बढ़ते हैं रेट्रो वाइब्स के साथ विद नलिनी आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर.
1: Retro Rhythm. Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

listeners, इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए फॉर एन एक्साइटिंग रेडियो शॉपिंग सेशन ऑन RM2। ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस रेडियो शॉपिंग। एक घंटे में ढेरों शॉपिंग आइडियाज। Friday, 25th of September, from 5 p.m. to 6 p.m. Discover Elegancia Tribeca, your destination for beautiful furniture to bring style to your home. Make sure you tune in.

0: True Rhythm.
1: एंड ये सब कनेक्टेड है रेट्रो रिदम में, जहाँ पर 70s, 80s एंड 90s के गाने चल रहे हैं आपके नाम. एंड एज यूजुअल 5499-1294 पर आपके मैसेजेस और डेडिकेशंस के इंतजार है. आप बस ना बिना हेजिटेशन के सेंड कीजिए. एंड वाइब करते हैं साथ में रेट्रो मूड के साथ. एंड हमारे साथ अभी कनेक्टेड है फिया जी, जो कि थ्रियोले के रहने वाले हैं. एंड ऑल्सो वी हैव दुर्गाना जी एंड जीना जॉयसरी जी भी साथ दे रही है, आपको बेस्ट विशेस दे रही हैं फ्राइडे के लिए. तो आप बस साथ में जुड़े रहिए आरएम टू रेडियो मस्ती पर ही. लेट्स वाइब टुगेदर.
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम टू रेडियो मस्ती.

0: एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: अच्छा हुआ मिली वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
2: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
1: आपका नाम? मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या है?
2: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
1: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
2: जाइए यहाँ से। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
1: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
3: कहता है बाबू
0: रविवार 27 सितंबर को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।

0: रेट्रो रिदम।
1: यस, ये प्यारा सा गाना नीले नीले अंबर हमने हमारे दोस्त काविश के लिए चलाया था, जो भी रास्ते पर है, ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन कनेक्टेड है अपने यारम टू रेडियो मस्ती के साथ। वो जो हाफ क्रिश जो साथ दे रहे हैं एंड प्यारा सा गाना मांग रहे हैं अपने सभी दोस्तों के लिए, तो हो जाए हमारे लिसनर्स के लिए और एक जबरदस्त गाना आपके ही रेट्रो रिदम में, क्योंकि मस्त वाइब्स ऑन गोइंग है नेक्स्ट गाने के साथ। महबूबा महबूबा गाना फॉर यू आरम टू रेडियो मस्ती पर ही।
0: Retro Rhythm
2: RM2

0: जिंदगी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
2: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती। 1 2 3

21 सितंबर रविवार को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे रेट्रो गानों को हम टाइम मशीन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये गाना चलता है और सडनली याद आ जाता है कॉलेज डेज, वो पहला क्रश, फैमिली फंक्शंस और कभी कभी वो हेयर स्टाइल्स भी, जिसको देख के आज हम खुद से पूछते हैं ये मैंने क्या कर दिया था यार। वैसे ये तो जिंदगी के वो खूबसूरत पल है। तो चलिए एक और ब्यूटीफुल फ्लैश बैक हो जाए आपके नाम इस नेक्स्ट गाने के साथ किशोर कुमार जी की आवाज में।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti।

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th

0: सितंबर दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमाव SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।
1: महफिल ऐ शमा फिरते हो कहां।
2: RM2
3: Radio Masti
2: Field

0: 4 Center 99.4
1: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार
4: नमस्कार आदाब प्रधानमंत्री ने बालाकलावे में अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सेहत के क्षेत्र के कर्मचारियों को ट्रेन करने की अहमियत पर जोर दिया खासतौर पर आधुनिकीकरण की दिशा में सरकारी नेता ने कहा कि अस्पतालों में दर्ज संक्रमण दर बढ़ती जा रही है इसलिए अब महारत बांटना और जरूरी हो गया है इस मौके पर दुनियावी सतह पर मशहूर यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर महेंद्र भंडारी को सम्मानित किया गया उन्होंने कहा कि मुर्शस को मृतक ओगान डोना के बारे में भी अब विचार करना चाहिए इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सरकार रफ्तार को और तेज करना चाहती है कृषि उद्योग मंत्री की सरपरस्ती में कल एक गोलमेज बैठक लगाई गई ताकि बायोमास की क्षमताओं को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके मुर्शस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी की पहल पर यह राउंड टेबल लगाया गया जिसमें सभी पक्षों ने एक ही मकसद से शिरकत की 2035 तक 60% रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन करना छोटे टापू देशों की मजबूती को और बढ़ाने के लिए मौसमी खतरों का संचालन करना इसी उद्देश्य से आज रेस आइलैंड्स परियोजना को शुरू किया गया ये अफ्रीका के छोटे टापू देशों के आयोग की पहल है इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला चौथा देश मॉरिशस है जिसके लिए ग्रीन फंड से वित्तीय मदद मिल रही है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में आम सभा के संदर्भ में विदेश मंत्री रितेश रामफल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए इस पहल से नवीनीकरण निवेश और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के मैदानों में नए सहयोग होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान में अपनी सेना के सैन्य अभियानों की प्रतिरक्षा की है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से मुखातिब होने से पहले ही अनेक डेलीगेटों ने वॉकआउट किया नेतन्याहू ने दावा किया कि जीत उनके ही देश की होगी और वो जंग को नहीं रोकेंगे गजा में जेनोसाइड के इल्ज़ाम को उन्होंने झुठलाया है दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वीडियो के जरिए सभा को संबोधित किया क्योंकि अमेरिका ने उन्हें एंट्री वीज़ा नहीं दिया उन्होंने बताया कि फिलिस्तीनी अवाम खून खराबी बर्बादी और भुखमरी का शिकार बना हुआ है इसलिए उनका पैगाम अमन शांति के पक्ष का मरकज रहा है तो अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए नमस्कार रादाब
5: Your news on MBC Play and MBC.mu
6: Retro Rhythm
1: RM2

0: रेट्रो रिदम। 1:60 हुए हैं, मस्ट वाइब्स के साथ सेकंड आवर भी शुरू हो गया है। एंड वैसे अभी रेट्रो रिदम में एक सवाल है आपके लिए, अगर आपको सिर्फ एक रेट्रो सॉन्ग अपनी लाइफ के साउंडट्रैक के लिए चूज करना होता तो वो कौन सा होता? 70s का सोलफुल क्लासिक, 80s का एक रोमांटिक नंबर, या फिर 90s का फुल बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर? सोचिए और तब तक सुनते हैं मोहब्बती मूवी का एक गाना फिर से मस्ट वाइब से सेट करने के लिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, मजा वाइब से तो बनती है।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून, सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेल होस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक।

0: रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।
1: महफिल महफिल ऐ शमा फिरते हो कहां?
2: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन।

0: Retro Rhythm.
1: एक बजकर 26 मिनट हुए हैं। वैसे आपको बता देते हैं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ड्रीम डे। और सपने तो हर किसी के होते हैं ना। किसी का सपना होता है दुनिया घूमना, किसी का अपना घर बनाना, किसी का अपनी पहचान बनाना, और कुछ सपने बस दिल में चुपचाप रहते हैं। एंड वैसे भी सपने देखने के लिए एज नहीं, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए होता है। तो आज एक सवाल है आपके लिए, अगर आपको अपनी आंखें बंद करके एक सपना चूज करना होता तो आप क्या मांगते? और सपनों की बात हो रही है तो ये नेक्स्ट गाना तो बनता है देखा एक ख्वाब, लता जी की आवाज में खास आपके नाम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून। सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, दो घंटों का सुरीला सफर बेलमा SSR रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां बेलहोस सीनियर सिटीजन एसोसिएशन इस खूबसूरत लाजवाब सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 25th September, दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो भी कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 25 सितंबर को फ्रॉम नून टू 2 PM बेलमाव SSR रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।
1: महफिल महफिल ऐ शमा, फिरते हो कहां?
2: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, your number one Bollywood station.

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: अच्छा हुआ मिली वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
2: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
1: आपका नाम मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या?
2: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
1: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था। अच्छा हुआ मिली, आप भी मिली है क्या?
2: जाइए यहाँ से। एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
1: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
0: रविवार 27 सितंबर को NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की मूवी सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर फिल्माई गई बाबुल।

0: भी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
2: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल देके आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती। वन टू थ्री।
3: क्योंकि सत्ताईस सितंबर रविवार को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि
4: You're listening to RM2, a Radio Masti.
5: 1:45 मिनट हुए हैं और रेट्रो वाइब्स फुल

0: रेट्रो रिदम।
1: एंड यस, हसीने लोग तो बहुत सारे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है आरएम टू वीडियो मस्ती के साथ। एंड डेडिकेशन मिला है अभी पन्ना की तमन्ना गाना का, फ्रेंड पिंकी और उनके चार दोस्तों के नाम, जो भी काम पर हैं लेकिन फुल मस्ती वाइब्स के साथ वाइब कर रहे हैं आरएम टू वीडियो मस्ती पर ही। एंड डेडिकेशन राजामणि जी की तरफ से है और वो विश कर रहे हैं बूंकुहार अपने सभी दोस्तों के लिए। एंड ये गाना स्पेशली अपने दोस्तों के नाम कर रहे हैं।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। प्रधानमंत्री ने बालाक्लावा में अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सेहत के क्षेत्र के कर्मचारियों को ट्रेन करने की

0: अहमियत पर जोर दिया, खासतौर पर आधुनिकीकरण की दिशा में। सरकारी नेता ने कहा कि अस्पतालों में दर्ज संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, इसलिए अब महारत बांटना और जरूरी हो गया है। इस मौके पर दुनियावी सतह पर मशहूर यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर महेंद्र भंडारी को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मुर्शस को मृतक ऑर्गन डोनर के बारे में भी विचार करना चाहिए। छोटे टापू देशों की मजबूती को और बढ़ाने के लिए मौसमी खतरों का संचालन करना, इसी मकसद से आज रेसाइलेंस परियोजना को शुरू किया गया। ये अफ्रीका के छोटे टापू देशों के आयोग की पहल है। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला चौथा देश मॉरिशस है, जिसके लिए ग्रीन फंड से वित्तीय मदद मिल रही है। सरस्वती मुचिया के कत्ल के मामले में नई बात सामने आई है। मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनकी बहू और उनके भाई को गिरफ्तार किया। ये शक किया जा रहा है कि मृतक के भाई 54 साल के प्रीतम और 29 साल की उनकी बहू खुशबू उनकी हत्या की साजिश में शामिल हुए होंगे। याद रहे पिछले जुम्मे को त्रियोले में अपने ही खेत में सरस्वती मुचिया को बेजान पाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गला घोंट कर उनका कत्ल किया गया होगा। फिलहाल जाँच जारी है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आमसभा के संदर्भ में विदेश मंत्री रितेश रामफल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इस पहल से नवीनीकरण, निवेश और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के मैदानों में नए सहयोग होंगे। और आज से पोप लियो 14 फ्रांस के दौरे पर होंगे। पेरिस में एक बड़ी मास सभा लगाई जाएगी, जहां आधे मिलियन से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले हैं। प्लास डे ला कोंकोर्द, आर्क दे ट्रायंफ और शांज-एलिजे में के इलाकों में हिफाजती वजहों से पुलिस की घेराबंदी है। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ओरली हवाई अड्डे पर पोप लियो का स्वागत किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: एंड यस फ्रेंड्स, प्रीत तो लागी है किसके साथ? बिल्कुल हमारे लिसनर्स के साथ। अभी तो हर दिन आपका ख्याल आता है, और जैसे ही आपका ख्याल आता है हम लेकर आ जाते हैं हमारा ये शो जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज। अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक मैं हूँ परी आपके साथ, और उम्मीद करते हैं दैट आज का फ्राइडे, यस आज का फ्राइडे आपका एकदम मस्त बीत रहा है। दोस्तों इट्स फ्राइडे, अगर मूड ठीक नहीं भी है तो प्लीज ठीक कर दीजिए, बिकॉज अब तो आपको मौका मिलने वाला है 2 दिन फुल ऑन एंजॉय करने का। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम तो वीकेंड में काम कर रहे हैं, लेकिन नॉट टू वरी ना, हम तो है आपके साथ मॉर्निंग हो या नाइट, एंटरटेन करते रहेंगे आपको विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। सो अभी के लिए बी टाउन की खबरें और बी टाउन के लेटेस्ट ट्रैक्स अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक होगा आपका और मेरा साथ। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस हम तक पहुंचाना चाहते हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जो है 5499129294, 5499129294। इसी नंबर पर आप अपने स्वीट मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं। हेलो हाय कहना है अपने किसी स्वीट दोस्त को, या फिर ऐसे ही एक स्वीट सा डेडिकेशन, तो ऑल यू हैव टू डू इज प्यारा सा मैसेज हमारे नाम भेजिए और उसे हम डेडिकेट करेंगे फॉर यू एंड फॉर योर लव्ड वंस। सो चलिए दोस्तों, अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ, लेकर आई हूं बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स। साथ दीजिए एंड स्टे वेल कनेक्टेड।
2: RM2
1: Radio Musti.
2: Feel the

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरी, साड़ीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: जब बात यार्ड सेल की होती है तो हम थ्वासिसा की ही बात करते हैं। जब बात जबरदस्त ऑफर्स की होती है तो हम थ्वासिसा की बात करते हैं। और जब बात बहुत कम कीमतों की होती है तो थ्वासिसा की ही बात होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 1, 2 और 3 अक्टूबर को ग्रैंड थ्वासिसा यार्ड सेल होने जा रहा है लुजी पार्क जिनफई रिश्ते में। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप और छोटे छोटे अप्लायंसेस पर 80% के डिस्काउंट, यानी शॉपिंग का एक जबरदस्त मौका। और वहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है, गौजिनो से फ्री शटल सर्विस अवेलेबल होगी। तो डेट अच्छी तरह याद रखना, 1, 2 और 3 अक्टूबर।
0: RM2 Radio

Hey, RM2 listeners. इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए फॉर एन एक्साइटिंग रेडियो शॉपिंग सेशन ऑन RM2. ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस रेडियो शॉपिंग. एक घंटे में ढेरों शॉपिंग आइडियाज. Friday

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, मेरे महबूब ये गाना तो आपको पता ही है पिक्चराइज हुआ था on the very gorgeous तृप्ति डिमरी और उन्हीं की एक खबर आपके लिए लेकर आए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और वो अपनी जिंदगी से जुड़े अच्छे पल हमेशा शेयर करती रहती है। हाल ही में उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को का दौरा किया और वहाँ उन्होंने कई शानदार तस्वीरें शेयर की है। तृप्ति डिमरी ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की है उसमें देखा जा सकता है कि वो नेचर को काफी एंजॉय कर रही हैं और उन्होंने जंगल में पेड़ के पास समुद्र किनारे शानदार पोज दिए हैं और उनकी पोस्ट में जो प्राकृतिक वातावरण है उसके प्रति उनका जो प्यार है वो नजर आता है। एक्ट्रेस की पोस्ट को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं, वहां कई यूजर्स इस पोस्ट पर कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है भारत की सबसे बड़ी एक्ट्रेस और किसी ने लिखा है बहुत अच्छी पोस्ट है, दिल करता है कि देखता ही रहो। साथ ही एक और यूजर ने लिखा है कि आपकी कैप वाली तस्वीर काफी अच्छी है और एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट पर कैप्शन लिखा था SFO। यहाँ पर कई यूजर्स ने उन्हें सलाह दी कि इसको आप सिर्फ SF कर लीजिए क्योंकि इसकी वजह यह है SFO एयरपोर्ट का नाम है जबकि SF का मतलब होता है सैन फ्रांसिस्को। सो यहाँ पर जो उनके फैंस है वो बस उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तृप्ति डिमरी के काम की बात करें तो जल्द ही वो प्रभास के साथ फिल्म स्पिरिट में नजर आने वाली है और ये रोल पहले एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को मिला था। बताया जाता है कि एक्ट्रेस ने 8 घंटे शिफ्ट में काम करने की मांग की थी। इस पर जो डायरेक्टर है संदीप रेंडी वांगा उनके साथ उनकी अनबन हो गई थी और उसके बाद वो फिल्म से हट गई थी। साथ ही आपको बता दें फिल्म स्पिरिट में तृप्ति और प्रभास के अलावा विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में एक सख्त लेकिन ईमानदार पुलिस वाले की कहानी दिखाई जाएगी जो अपराधियों को पकड़ने के मिशन पर निकलेगा। सो ये तो बात हुई स्पिरिट की जिसमें हम देख पाएंगे तृप्ति डिमरी को बहुत ही जल्द और अभी के लिए उनके सभी फैंस जो हमारा साथ दे रहे हैं दिस वन गोज आउट फॉर यू ऑल।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Mustache.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well friends, आज 25th of September, Friday के दिन रिलीज हुई है फिल्म द वन. और जब कोई फिल्म माइथोलॉजी, लोक कथा, सुपर हीरो एंगल, VFX और छठ पूजा के सांस्कृतिक ताने बाने को एक साथ समेटने की कोशिश करे तो उसे संभालना आसान नहीं होता. द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट के पास भी कहने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है. अफसोस फिल्म अंत तक ये तय नहीं कर पाती कि वो आखिरकार क्या बनाना चाहते हैं. शुरुआत में लगता है कि एक दिलचस्प लोक कथा धीरे धीरे परत दर परत खुलेगी. आधे घंटे बाद लगता है कि अब कहानी पटरी पर आएगी. इंटरवल तक कई बार पटरी बदल चुकी होती है और अफसोस एंड तक सही ट्रैक नहीं मिल पाता. सो यही रिव्यू आ रहा है इस फिल्म को लेकर. वैसे कहानी काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी, ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया था, लेकिन अभी के लिए जो फर्स्ट रिव्यू सामने आ रहा है इस फिल्म को लेकर वो यही है कि स्क्रिप्ट जो है वो काफी ढीली है और एंड तक ये समझ में नहीं आया कि ये फिल्म आखिर कहना क्या चाहती है. सो इस फिल्म में तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टार्स हैं और काफी ट्रेलर को पसंद किया गया और साथ ही साथ फिल्म में छठ पूजा का एंगल भी दिखाया गया जो लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा. और फिल्म काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी लेकिन जितनी उम्मीद थी शायद उन उम्मीदों पर यह फिल्म खरी नहीं उतर

कर पा रही है। ये फर्स्ट रिव्यूज है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच के आज ही फिल्म रिलीज हुई है, आगे चलकर क्या होने वाला है इस फिल्म का फेट, इसके लिए हमें करना है थोड़ा सा इंतजार। तो चलिए दोस्तों, द वन की बात हुई है, फॉरेस्ट पर आधारित ये फिल्म, यानी कि फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि एक माइथोलॉजी है, लोक कथा है, सुपर हीरो एंगल भी है और VFX एंड छठ पूजा जैसे सांस्कृतिक ताने बाने के अंदर बनी ये फिल्म, जहां पर उम्मीदें काफी थी इस फिल्म के साथ, लेकिन अभी के लिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं नजर आ रहा। करेंगे थोड़ा सा इंतजार अभी के लिए उसी फिल्म का। ये गाना आकाशा एंड देव नेगी की आवाजें, ठुमक ठुमक फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। मैं हूं परी एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज।

0: Techies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान जिन्होंने 56 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस बात की जानकारी सबसे पहले कॉमेडियन सुनील पाल ने दी। उनके मुताबिक मुश्ताक लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उन्होंने 24 सितंबर को मुंबई के नानावती अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली और ये बात सुनकर बॉलीवुड और टीवी जगत की कई हस्तियां मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि देने पहुंची। बता दें दैट मुश्ताक खान ने साल 2007 में आई हिट कॉमेडी फिल्म वेलकम में फैंस के पसंदीदा बल्लू का किरदार भी निभाया था और इसी फिल्म से उनका डायलॉग मेरी एक टांग नकली है ये काफी फेमस हुआ था और अब फिल्म मेकर ने इसके पीछे की जो कहानी है उसे शेयर किया है। सो चलिए आपको बता दें दैट फिल्म मेकर अनीस बाजमी ने दिवंगत एक्टर मुश्ताक खान को याद करते हुए फिल्म वेलकम से जुड़ी कुछ यादगार कहानी साझा की है और एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनके पास मुश्ताक खान के लिए कोई भी बड़ा रोल नहीं था। साथ ही उन्होंने बताया था कि ज्यादातर उन्हें बस बॉडीगार्ड के पीछे खड़ा रहना होगा लेकिन मुश्ताक खान को अनीस बाजमी पर इतना भरोसा था कि वो उनकी बात मान गए और सेट पर आ गए। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद बाजमी को एहसास हुआ कि मुश्ताक खान के किरदार को कुछ डायलॉग्स भी मिलने चाहिए बिकॉज वो बहुत अच्छे एक्टर है। शूटिंग के 8वें या 9वें दिन यहां पर बाजमी ने कहा कि वो कोई डायलॉग उनके लिए तैयार करना चाहते थे और उसके लिए वो पूरी रात बैठे और इस कैरेक्टर को कैसे एनहांस किया जाए इसके बारे में उन्होंने सोचा। आगे बाजमी ने बताया कि उन्होंने नाना पाटेकर और अनिल कपूर से कहा कि एक ऐसा हम सीन बनाएंगे जहां पर आप बात नहीं करेंगे बल्कि आपके पीछे खड़ा हुआ आदमी बात करेगा और वही था मुश्ताक खान का कैरेक्टर। और उसके बाद जो कलाकार थे यानी कि नाना पाटेकर और अनिल कपूर वो अनीस बाजमी के बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और तुरंत इस सीन के लिए उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद वो सीन बना और जिसमें मुश्ताक खान का

0: मशहूर डायलॉग मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, और ये तो हम जानते हैं दैट ये डायलॉग जो है कितना फेमस हुआ। आज भी इस पर इतने सारे मीम्स बनते हैं, लेकिन इट्स द सैड पार्ट जहां पर ये जो एक्टर है अब हमारे बीच नहीं रहे, तो बिल्कुल उनके सभी फैंस की ओर से हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। एंड जैसे हमने कहा कि किरदार जो है वो हमेशा यादगार बन जाते हैं, सो वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके कॉमिक किरदारों को हम हमेशा याद करते रहेंगे।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Masti.
1: Radio

0: Soaring to
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: एंड वेल इसी ट्रैक के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. साथ दे रहे हैं आप ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ. दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज. साथ दे रहे हैं आप भी तो दिस वन स्पेशली फॉर यू.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check exactly 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
5: नमस्कार आदाब. साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया गया था और उसकी हिरासत में गमीज पाए गए थे जिनका मुतालिया करने के लिए इन्हें फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया और अब शक सही निकला है. गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे. ऐसे ही दूसरे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास बिस्कुट थे जिनमें गांजा था और लॉलीपॉप्स भी जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स होने का शक था. इससे बढ़ते खतरे के मद्देनज़र फोरेंसिक अधिकारियों ने सावधान रहने की अपील की है. मॉरिशस में एक खिलौने को खुलेआम बेचा जा रहा है. कई देशों में इस खिलौने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है. इसे स्क्वीजी डंपलिंग कहा जाता है. दरअसल ये पाया गया कि ये खिलौना बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है. इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के लिए एक रोड मैप तैयार करने में सरकार रफ्तार को और तेज़ करना चाहती हैं. कृषि उद्योग मंत्री की सरपरस्ती में कल एक गोलमेज बैठक लगाई गई ताकि बायोमास की क्षमताओं को बेहतर तरीके से विकस,

0: विकसित किया जा सके। मुर्शिदकेन इंडस्ट्री अथॉरिटी की पहल पर ये राउंड टेबल लगाया गया, जिसमें सभी पक्षों ने एक ही मकसद से शिरकत की, 2035 तक 60% रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन करना। छोटे टापू देशों की मजबूती को और बढ़ाने के लिए मौसमी खतरों का संचालन करना, इसी मकसद से आज रिसाइलेंस परियोजना को शुरू किया गया। ये अफ्रीका के छोटे टापू देशों के आयोग की पहल है और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला चौथा देश मॉरिशस है। विदेश में आज से पोप लियो 14 फ्रांस के दौरे पर हैं। पेरिस में एक बड़ी महासभा लगाई जाएगी जहां आधे मिलियन से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। प्लास डे ला कोंकॉर्ड, आर्क दे ट्रायंफ और शांज़िलीज़े के इलाकों में हिफाजती वजहों से पुलिस की घेराबंदी है। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ओली हवाई अड्डे पर पोप लियो का स्वागत किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।
1: On NBC Play and NBC.mu. More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

देते हैं। चलिए दोस्तों, 3:06 हो गए हैं फ्राइडे आफ्टरनून एंड आई डू होप आज का फ्राइडे सबके लिए एकदम स्पेशल सा बना हुआ है। आई डोंट नो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ये तो जिंदगी का हिस्सा है दोस्तों, लेकिन जिंदगी को खुलकर जीना ये भी तो जिंदगी का एक अहम पार्ट है। लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि ये जो मोमेंट्स आए हैं वो दोबारा कभी आने नहीं वाले, सो एवरी मोमेंट को खास एंड स्पेशल बनाए, बिकॉज आज का जो फ्राइडे है 25th of September 3:06, ये अब लाइफ में कभी नहीं आने वाला, सो मेक इट स्पेशल, एवरी मोमेंट एवरी मिनट इज खास। और जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, लेकिन बस हमारे पास जो रह जाता है वो होती है स्वीट मेमोरीज एंड यादें। सो बी इट विथ योर कलीग्स, बी इट विथ योर फ्रेंड्स, आज शायद आप घर से काम कर रहे हैं, सो घर पर अगर आपके फैमिली है तो उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करें। एंड हम तो है ही जो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, हमारे लिसनर्स जो हमारे लिए बहुत खास एंड स्पेशल है, सो थैंक यू सो मच हमारे सभी डियर लिसनर्स जो हमेशा साथ देते हैं और रेडियो मस्ती हमेशा चुनते हैं रेडियो मस्ती को। सो मैं हूं परी आपके साथ लेकर आई हूं आपका अपना बॉम्बे टॉकीज, मूड को सेट करते हैं विद दिस नेक्स्ट ट्रैक।

एंड आफ्टर दिस वन आपके मूड को चेंज करते हैं. फ्राइडे है तो क्या हुआ, रोमांटिक अंदाज तो हमेशा दिल को छू जाता है. सो दैट्स अ स्पेशल वन फॉर ऑल द फैंस ऑफ अरिजीत सिंह. ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, वैसे फिल्म थी भेड़िया, लेकिन नाम जितना खतरनाक है गाना उतना ही ब्यूटीफुल. सो वेल फॉर ऑल द लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, ये गाना आप सभी के नाम. क्योंकि गाने में जो कहते हैं ना कि कभी कभार जो शब्द नहीं कह पाते वो गाने कह जाते हैं. सो बस यही कुछ फीलिंग्स है जो आपसे शेयर करनी है. हमारे डियर लिसनर्स साथ देने के लिए शुक्रिया. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़. मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक.

RM2 listeners, इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए फॉर एन एक्साइटिंग रेडियो शॉपिंग सेशन ऑन RM2। ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस रेडियो शॉपिंग। एक घंटे में ढेरों शॉपिंग आइडियाज। Friday, 25th of September, from 5 p.m. to 6 p.m. Discover Elegancia Tribeca, your destination for beautiful furniture to bring style to your home. Make sure you tune in. Music all day long.

तो चलिए दोस्तों, 3:40 हो गए हैं और आप हमारा साथ दे रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स हमारे जो लिसनर्स हैं जो हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, इट मींस अ लॉट आपका साथ, आपका प्यार. सो अभी के लिए आफ्टरनून टाइम और अ बिग हेलो, बिग शाउट आउट टू डीजे डविसन. लाल माटी से आए हैं अपनी गुड विशेस लेकर. सो गाना होगा आपके नाम एंड सेंडिंग गुड गुड विशेस. एंजॉय योर फ्राइडे एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. साथ ही यहां पर रोशनी, आपका दिल हम तक पहुंच गया है. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हार्ट डियर. और ये जो स्वीट सा आपका दिल हमारे पास आया है, तो हम समझ गए हैं कि यहाँ पर गानों को आप पसंद कर रही हैं. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. गाना होगा आपके नाम एंड सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू. वेल, यहाँ पर कहते हैं कि रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी खुशी की परवाह मत करना. वेल, हैप्पी फ्राइडे विशेस, दैट्स कमिंग फ्रॉम सायरा बानू. ये तो सही बात है, अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उसके बाद हम ऑलमाइटी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशी हो. लेकिन अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, तो फिर हमारी खुशी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सबको सब कुछ देने ही वाला है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. थैंक यू सो मच, इतना प्यार आपने हम तक पहुंचाया और ये ब्यूटीफुल मैसेज आपने हम तक पहुंचाया. सो बहुत सारी गुड विशेस. चलिए यहाँ पर कहते हैं, यस्टरडे वॉज अ ग्रेट डे फॉर माई सन सैम, इट वॉज हिज बर्थडे एंड उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया ऑन हिज बर्थडे, दैट्स सो स्वीट. और चलिए यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विशेस और साथ ही साथ वंडरफुल लाइफ अहेड विद दिया, सैम एंड दिया, आपके नाम होगा स्वीट सा मैसेज. ये है फ्रॉम पापा सुदेश. एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपकी स्पेशल विशेज आपके लिए, दैट्स कमिंग फ्रॉम योर फैमिली. और कहते हैं दैट दिल से दुआ देते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा खुश रहे. सो सैम एंड दिया, वेल इट्स योर स्पेशल डे, इसे बनाएंगे खास. कल था आपका जन्मदिन और आपने प्रपोज किया आपकी गर्लफ्रेंड को फॉर शादी. सो नाउ शी इज गोइंग टू बी योर बेटर हाफ वेरी वेरी सून.

साथ ही यहाँ पर कैलाश जी हमारा साथ दे रहे हैं आप, सो आपका भी हम वेलकम कर रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती। ऐसे ही कुछ प्यारे गाने हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ, स्पेशली फॉर सैम एंड दिया। आपका जो स्पेशल मोमेंट था इसे हम थोड़ा सा और स्पेशल बना रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। पापा सुदेश और सभी परिवार सेंडिंग यू लोज ऑफ गुड विशेज एंड ऑफ कोर्स RM2 रेडियो मस्ती टीम, हमारी ओर से भी गुड गुड विशेज फॉर यू एंड फॉर योर दिया। गुड विशेज के साथ वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना अरिजीत सिंह की आवाज, एंजॉय दिस वन गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
5: Time check, 4 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार आदाब. साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुर्शन महिला को गिरफ्तार किया गया था. उसकी हिरासत में गमीज थे जिनका मुतालिया करने के लिए इन्हें फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया और अब शक सही निकला. गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे. ऐसे ही दूसरे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास बिस्कुट थे जिनमें गांजा था और लॉलीपॉप्स भी जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स पाए गए. इस बढ़ते खतरे के मद्देनज़र फोरेंसिक अधिकारियों ने सावधान रहने की अपील की है. मुर्शस में खिलौने को खुलेआम बेचा जा रहा है. कई देशों में इस खिलौने पर पाबंदी लगाई गई है. इसे स्क्वीजी डंपलिंग कहा जाता है. दरअसल ये पाया गया कि ये खिलौना बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह है. मेड इन मोहिस लेबल के लिए एक प्रोग्राम लागू है. 87 सेक्टरों में 31 उद्योग इस प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं. मुर्शस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की पहल पर मुर्शस कमर्शियल बैंक सहायता दे रहा है और कल मोका में प्रमाण पत्र दिए गए. मौके पर स्थानीय उत्पादकों ने वर्तमान चुनौतियों पर बात की. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका के सबसे बड़े रईसजादा नाइजीरिया के करोड़पति आदि को दांगोते ने ऐलान किया है कि वो इथियोपिया और जिबूती के बीच ईंधन के नए पाइपलाइन के निर्माण के लिए 660 मिलियन

0: डॉलर की वित्तीय सहायता देंगे। ये परियोजना 120 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के लिए है जो 400 मिलियन लीटर ईंधन को स्टॉक करने की क्षमता रखेगा। 18 महीनों में काम शुरू किए जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: एंड वेल फ्रेंड्स, लाइफ में कभी ना कभी प्यार में ये सिचुएशन हर किसी ने फेस की होती है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए प्यार ही प्यार बेशुमार RM2 रेडियो मस्ती, टाइम फॉर योर रफ्तार वाइब्स। 4:06 फ्राइडे आफ्टरनून हमारा साथ दे रहे हैं आप। समय हूँ परी आपके साथ, साथ निभाऊंगी आपका साथ में कुछ स्पेशल सेगमेंट्स और कुछ खास होने वाला है, सो स्टे वेल कनेक्टेड।
1: शुक्रवार को तैयार हो जाइए फॉर एन एक्साइटिंग रेडियो शॉपिंग सेशन ऑन RM2। ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर

एंड वेल बिल्कुल ऐसे ही तो हमने आपको हमारे दिल से लगाए रखा है फॉर ऑल द लिसनर्स जो इस वक्त साथ दे रहे हैं। शाम के 4:16 हो गए हैं, इट्स फ्राइडे आफ्टरनून। व्हाट्स द प्लान दोस्तों? आई एम श्योर दैट आज काफी सारे प्लान्स बने होंगे, लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि प्लान्स आपके चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा गुड म्यूजिक से आपको एंटरटेन करने का प्लान तो बिल्कुल बना हुआ है। सो अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं हूँ परी आपके साथ, कनेक्टेड हैं आप, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स।

So well, this one goes out for all the fans of Mohit Chauhan. A beautiful, beautiful track from the film Barfi. वैसे तो कहते हैं ना, जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जिंदगी में थोड़ी सी मिठास हम जरूर घोल सकते हैं with some beautiful songs. और afternoon time, जहां पर काम खत्म करके आप भी घर की ओर बढ़ रही हैं, कुछ हमारे दोस्त अभी भी काम में फंसे हुए हैं, लेकिन जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, गुड म्यूजिक आपके लिए चलता रहेगा, बिकॉज ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. परी का साथ है, एंजॉय दिस वन.

0: So, well, ladies and gentlemen, stay connected. थोड़ी ही देर में स्पोर्ट्स वर्ल्ड की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए RM2 रेडियो मस्ती।
1: Hey, RM2 listeners, इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए for an exciting radio shopping session on RM2. ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट सोफा, एक स्टाइलिश डाइनिंग सेट, एलिगेंट बेडरूम फर्नीचर, और सिंपली वांट टू गिव योर होम अ फ्रेश न्यू लुक? सो मार्क योर कैलेंडर एंड डोंट मिस रेडियो शॉपिंग। एक घंटे में ढेरों शॉपिंग आइडियाज। Friday, 25th of September, from 5 p.m. to 6 p.m. Discover Elegancia Tribeca, your destination for beautiful furniture to bring style to your home. Make sure you tune in.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: So well friends, time for your latest sports updates. Studio में आ गए हैं हमारे sports guru Arvind, sports जगत की latest updates के साथ. Hello and good afternoon.
4: Good afternoon आपको परी. Good afternoon Radio Musti listeners. परी, दिनों Asian Games चल रहे हैं.
3: आप बता रहे थे मुझे. क्या कुछ अच्छा, कुछ good news है उसमें?
4: नहीं, इंडिया की टीम वैसे Asian Games में चाइना दो बहुत गोल्ड मेडल जीत चुकी है.
3: अरे वाह.
4: लेकिन इंडिया के लिए वुमेन क्रिकेट में गोल्ड मेडल,
3: वाह गोल्ड मेडल, वाह.
4: और एक गोल्ड मेडल है, इस पर अभी चर्चा करेंगे. फिलहाल बता दें कि आज फुटबॉल में ग्रुप A1 में इटली

0: वर्सेस बेल्जियम, फिर तुर्की वर्सेस फ्रांस, ग्रुप बी टू में जॉर्जिया और नॉर्दर्न आयरलैंड, हंगेरी यूक्रेन, ग्रुप बी फोर में पोलैंड वर्सेस बोस्निया और स्वीडन वर्सेस रोमानिया, और ग्रुप सी टू में मोंटेनेग्रो साइप्रस। ये कुछ मैच हैं और आज अभी अभी कुछ मैच पूरे हुए। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बीच इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच, मैच गया 1-1। कैन यू इमेजिन, ऑस्ट्रेलिया की टीम 1-0 से आगे थी और ब्राज़ील की टीम ने इक्वलाइज किया इन द 95th मिनट रयान का गोल राफीना के पास पर। और इसके अलावा आज इंडिया का मुकाबला पनामा से होगा फुटबॉल में भी।
1: क्या बात है,
0: इंडिया की टीम फुटबॉल भी खेलने लगी है।
1: बस अब एक दिन उनको हम देख सके बड़े बड़े मैचेस खेलते हुए।
0: Why not? वर्ल्ड कप में इंडिया को जरूर देखेंगे और ब्राज़ील की टीम अभी अभी जो ब्राज़ील लेजेंड्स हैं इंडिया ऑल स्टार्स के खिलाफ खेलने गए थे, दे वन 3-2 ब्राज़ील की टीम। लेकिन ऐसा करने लगते हैं तो लगता है कि अब ये जो यंग जनरेशन है इंडिया में, हम लोग तो क्रिकेट पसंद करते हैं लेकिन जो जनरेशन है आई कैन से बिलो 25, ये लोग क्रिकेट को कम फुटबॉल को।
1: वेरी गुड, हम भी जानते हैं बिकॉज आई हैव अ ग्रुप ऑफ कजिन्स, ये लोग हमेशा फुटबॉल की ही चर्चा करते रहते हैं, उन्हीं का डिस्कशन चलता है।
0: और आज अगर देखें अमंग दी बॉलीवुड स्टार्स में टाइगर श्रॉफ को ले लो, अभिषेक बच्चन को ले लो, they've got their own football team.
1: Yes.
0: तो उनको देखकर फुटबॉल का एक अलग कुछ बन रहा है इंडिया में, लेट्स होप। और लेकिन ये है कि अगर मॉरिशस की टीम के खिलाफ खेलेंगे तो डेफिनेटली मॉरिशस को संभल के रहना होगा। सो ये सब है। वैसे आज इटली और बेल्जियम वाले मैच की चर्चा करें तो टर्की और फ्रांस वाले मैच की, तो इसमें जिनेदिन जिदान ना पहली बार फिर से वो कोच बन गया है फ्रांस का। सो एक नया चैप्टर फ्रांस की टीम के लिए, कल एक नया चैप्टर खुला यर्गन क्लॉप के लिए, जर्मनी का नया बॉस। और यर्गन क्लॉप अपनी टीम के इस ड्रॉ से काफ़ी खुश हैं। नेदरलैंड्स एक बहुत ही अच्छी टीम है, उसका नया कोच ज़ावी भी बहुत अच्छा मैनेजर है, इससे में होलैंड में जाकर ड्रॉ करना बुरा भी रिजल्ट नहीं है, ऐसा क्लॉप ने कहा। वी ओनली स्क्रैच्ड द सरफेस, वी हैव टू गो डीपर। पर इस मैच में दो कैजुअलिटीज रहे, एक काई हावर्ट्ज़ और दूसरा ब्रेंट ब्रॉबरी, जिसने हाल ही में सन्डरलैंड के लिए एक हैट्रिक स्कोर किया था। कैन यू इमेजिन 13 साल की एक लड़की 3 गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में।
1: वाओ, जस्ट एट द एज ऑफ 13।
0: सो एशियन गेम्स में एक और युवा सेंसेशन, इस बार जापान का शिन ओहाशी जो केवल 17 साल का है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाया वो। ओहाशी से पहले चीन की ये लड़की यूश जीडी स्कूल जाती है।
1: क्या बात है, लेकिन सुपर टैलेंटेड 13 साल की उम्र में 3 गोल्ड मेडल।
0: और इधर कबड्डी के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम कबड्डी करते हुए, सो थाईलैंड को सेमीफाइनल में हराकर भारतीय लड़के फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए। फाइनल ईरान या चीन ताइपे के खिलाफ होगा। कबड्डी खेली आपने?
1: कबड्डी हाँ, स्कूल में खेलती थी।
0: अच्छा,
1: उसमें सांस पे कंट्रोल रखना जरूरी होता है।
0: वेरी इंटरेस्टिंग,
1: वेरी इंटरेस्टिंग, यस।
0: और टीम इंडिया के लिए एक दूसरा गोल्ड मेडल भी बता रहे थे, 10 मीटर पिस्तौल मिक्स्ड टीम इवेंट में सुरुचि और कमलजीत चैंपियन बने। वीकेंड है, भी वीकेंड में बहुत कुछ होने वाला है रिगार्डिंग रीजनल स्पोर्ट्स। तो बता दें कि रीजनल स्पोर्ट्स में इस संडे को गनर्स टीम आर्सेनल, ये आर्सेनल इंग्लैंड वाला आर्सेनल नहीं बल्कि मॉरिशस वाला आर्सेनल है, और ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पॉम्पलेमूस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सहयोग से एक टूर्नामेंट, सरसुसागर राम गुलाम मेमोरियल कप ये आयोजित कर रहे हैं। और इसमें दो मैच होंगे, एक मैच होगा आर्सेनल एससी और आर्सेनल विदेहों के बीच, पॉम्पलेमूस एससी और होशबुआ बोल्टन सिटी के बीच। दोनों मैच आर्सेनल फुटबॉल ग्राउंड में 2 बजे से, हम लोग आएंगे वहां पर हाइलाइट्स लेने, आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। होशनुआ स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए इस वीकेंड 2 मैच खेले जाएंगे। सैटरडे को होशनुआ यूनाइटेड वर्सेस रेड स्टार बुनाकय, और संडे को स्पोर्टिंग बॉयज रिवेज रॉम्पा का मुकाबला ओलंपिक कप मालेरू से। और इक्वाया लेगेसी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल होगा और ये तेहूज रेंजर्स और वेल एफ सी के बीच खेला जाएगा, ये इक्वाया फुटबॉल मैदान में। और अभी अभी ये खबर है बीच सोका जो अफ्रीकन चैंपियनशिप है, मॉरिशस की हार हुई आज अंगोला के खिलाफ 4-0 से, तो मॉरिशस की टीम पहला मैच हार गई। अब दूसरा मैच यहीं पर ब्लू बे आरेना में होने वाला है, तो जुलियाओ अल्फ्रेडो डबल पूरा कर पाया और पाउलो पेरेरा

0: मिगुएल डोमिंगेज एक एक गोल स्कोर कर पाए। मॉरिशस को अब पासा पलटना होगा अगले मैच में। अगला मैच जो होने वाला है यहीं पर मॉरिशस में ही। और फुटबॉल की ही बात करें तो कान 2027 के लिए अंडर 23 मॉरिशस की टीम हरारे जा रही है। आज वहां पर मैच होने वाला है और 20 खिलाड़ियों को चुना गया है। मुकाबला है जिम्बाब्वे के खिलाफ। सो एज वी सेड प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द रीजनल लेवल। इस वीकेंड प्रीमियरशिप नहीं है, प्रीमियर लीग नहीं है, घोड़दौड़ भी नहीं है, लेकिन सभी लोग इंग्लैंड की टीम का इंतजार कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम जो कल वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के खिलाफ मैच खेलेगी फॉर द यूरोपियन नेशंस कप। आज के मैच में भी काफी इंटरेस्टिंग मैच है, इन सब पर कल सुबह आपको डिटेल्स देंगे। हमारा साथ देते रहिए। राइट, सो एशियन गेम्स, लेट्स होप वी गेट मोर गोल्ड मेडल्स।
1: बिल्कुल जी, तथास्तु। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अपडेट्स।
2: This magazine was brought to you by Quality Déco, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
4: RM2, Radio Musty.

चुप चुप के क्यों, हम तो आपसे खुलेआम मिलने आते हैं ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती। इट्स 4:55 विद दिस ट्रैक बनने वाले हैं टुवर्ड्स योर इंग्लिश फ्लैश न्यूज, और उसके बाद लेकर चलेंगे आपको रेडियो शॉपिंग, यहीं स्टूडियो से करवाएंगे आपको शॉपिंग। अगर आप घर का फर्नीचर चेंज करना चाहते हैं, अगर कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए, तो वैसे हमारे साथ जुड़े रहें ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती। परी का साथ है शाम के 7 बजे तक। एंड फॉर नाउ के पलक मुचल की आवाज़ें, ये ब्यूटीफुल ट्रैक हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

और चलिए दोस्तों, यहाँ पर 5:11 हो गए हैं और आप जानते हैं हम काफ़ी टाइम से आपको बता रहे थे कि 5 से लेकर 6 बजे तक समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन और आपके लिए हम कुछ खास लेकर आए हैं। इट्स योर रेडियो शॉपिंग, बिल्कुल आपको यहीं स्टूडियो से हम करवाएंगे कुछ ब्यूटीफुल फर्नीचर की शॉपिंग। और ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि फेस्टिव सीजन है और हर किसी को अपने घर को एक नया लुक देना होता है। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एलिगेंस या एक मॉडर्न वाइब्रेंट और अपस्केल फर्नीचर शॉप है, पाया जाता है एट ट्रिबेका मॉल। जी हाँ, 2 सालों से ये वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं एंड यस एट ट्रिबेका मॉल, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आप जा सकते हैं जहाँ पर ये शोरूम है। इट्स एलिगेंसिया और ट्रिबेका का वन ऑफ द बिगेस्ट फर्नीचर शोरूम है, फर्स्ट फ्लोर पर लोकेटेड है और इसके जो ओनर्स हैं फैमिली की सेकेंड जनरेशन है और फर्नीचर बिजनेस में इनके पास 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। दुनिया भर से फर्नीचर सोर्सिंग का एक्सटेंसिव नॉलेज भी रखते हैं और यहाँ आपको मिलता है लार्ज मॉडर्न स्टाइलिश सोफा सेट्स, रूम फर्नीचर, किचन फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स और बहुत कुछ। बेसिकली अगर आप घर को फर्निश करना चाहते हैं या फिर अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर आपको घर में कुछ वैरायटी चाहिए तो आप जा सकते हैं एट एलिगेंसिया मॉल एट ट्रिबेका। जैसे हमने आपको बताया फर्स्ट फ्लोर पर ये पाया जाता है और जहां पर आपको डिफरेंट वैरायटीज मिलती हैं, चाहे आप सोफा सेट ढूंढ रहे हैं, चाहे आप किचन सेट्स ढूंढ रहे हैं या फिर डाइनिंग टेबल्स ढूंढ रहे हैं। सो यहां पर हम बात करने वाले हैं, सून वी विल बी हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एलिगेंसिया जो यहां पर हमें कुछ और डिटेल्स देने वाली है। सो अभी हमारा साथ देते रहिए, अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक आपके लिए कुछ स्पेशल शॉपिंग एक्सपीरियंस हम लेकर आए हैं राइट हियर ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ। रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन।

इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सो यू कैन कॉल ऑन 5911226 5911226 ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और जैसे हमने कहा थोड़ी ही देर में विल बी हैविंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिगेंसिया जो हमसे बात करने वाली हैं और हमें कुछ और डिटेल्स देने वाली हैं अभी के लिए हम आपको बता दें कि वहाँ पर सब कुछ अभी आपको मिल रहा है ऑन प्रोमो प्राइजेज एंड जैसे हमने कहा कि इट्स अ फेस्टिव सीजन जहाँ पर दिवाली आने वाली है न्यू ईयर आने वाला है और अगर आप अपने घर को नया लुक देना चाहते हैं सो ट्रिबेका फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर आप जा सकते हैं एट एलिगेंसिया इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी ही देर में स्टे वेल कनेक्टेड

So well friends, it's 5:23 और जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर रेडियो शॉपिंग एलेगेंसिया एट ट्रिबेका फर्स्ट फ्लोर आप वहाँ पर जा सकते हैं एंड अभी इस वक्त जो प्रोमो प्राइजेस आपको मिल रहे हैं उसे आप एंजॉय कर सकते हैं फेस्टिव सीजन

0: है, घर के लिए नया फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, बी इट डाइनिंग टेबल सेट्स या फिर आप सोफा सेट्स खरीदना चाहते हैं या फिर बहुत सारी और चीजें, बेडरूम सेट्स है, किचन सेट्स है, जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको मिल रहा है ऑन प्रोमो प्राइस एट एलिगेंसिया ट्रिबेका। सो अभी के लिए वी हैव यशिनी हमारा साथ दे रही है। हेलो जी, हेलो यशिनी, हेलो हेलो हेलो हेलो, चलिए लगता है अभी के लिए यशिनी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बिल्कुल इनसे हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे और जानेंगे कि उनके पास क्या है प्रोमो में। और अभी के लिए हम आपको थोड़ी डिटेल्स ज़रूर दे सकते हैं। सो लेट मी टेल यू दैट जो नॉर्मल प्राइजेस था टेबल सिक्स चेयर्स वो था प्राइस 39,900, लेकिन अभी के लिए यू आर गेटिंग इट ऑन प्रोमो प्राइस जहाँ पर टेबल और सिक्स चेयर्स आपको मिल रहे हैं एट 29,900, जी हाँ 29,900, और साथ में आपको एक कारपेट मिल रहा है एज गिफ्ट। साथ ही ये जो कारपेट है इट्स फ्रॉम टर्की और ये जो टेबल है वो बना है फ्रॉम मलेशिया रबर वुड। सो यहाँ पर ये भी हम डिटेल्स जानेंगे यशिनी के साथ, जो हमें यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स अपडेट्स देने वाली है। और जैसे हमने कहा दैट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जाकर खरीद सकते हैं एट एलिगेंसिया, अगर आप अपने घर को एक नया लुक देना चाहते हैं, अगर आप एक फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, बी इट आपके लिविंग रूम के लिए, बी इट आपके बेडरूम के लिए, किचन सेट्स, या फिर आपको अपने घर को एक डिफरेंट लुक देना है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है प्रोडक्ट्स, क्या है प्रोमो प्राइजेस, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ दीजिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
1: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग।

So, चलिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एलिगेंसिया जिसे आप जहाँ पर आप जाकर शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं. जैसे हमने कहा कि घर का फर्नीचर अगर आपको खरीदना है सो दैट्स द बेस्ट प्लेस. एंड यस जैसे हमने कहा कि अभी प्रोमो प्राइजेस है और यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम आपको देंगे. इट्स 5911226 5911226 आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर खरीदना चाहते हैं और स्टाइलिश सोफा सेट्स रूम फर्नीचर किचन फर्नीचर डाइनिंग टेबल्स बहुत कुछ आपको वहां पर मिल रहा है. बेसिकली अगर आप अपने घर को फर्निश या अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको यहां घर के लिए काफी वैरायटीज मिल सकती है. कस्टमाइज्ड फर्नीचर भी अवेलेबल है अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हो. गारंटी की बात करें सो 12 मंथ से लेकर 36 मंथ्स तक गारंटी अवेलेबल है और मॉडल्स भी आपको अकॉर्डिंगली वहां पर मिलते हैं. डिलीवरी की बात करें सो होम डिलीवरी अवेलेबल है. मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर जो भी सामान आपने सिलेक्ट किया है वो आपके घर तक पहुंच जाता है. आफ्टर सेल सर्विस भी अवेलेबल है और जैसे हमने कहा कि फॉर मोर डिटेल्स आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 5911226 5911226. तो चलिए दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं एलिगेंसिया की जहां पर एक ऐसा स्टाइलिश फर्नीचर शॉप है जहां पर वन स्टॉप में आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है. सो इसके बारे में हम कुछ और बात करेंगे. जैसे हमने कहा द रिप्रेजेंटेटिव विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली सो स्टे कनेक्टेड आरएम2 रेडियो मस्ती के साथ.

शॉपिंग कर सकते हैं. एंड द रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ है. हेलो हेलो हेलो जी. हेलो यशिनी, कैन यू हियर मी? चलिए सो यहाँ पर एक बार फिर उनसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं. सो यहाँ पर ये अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं. सो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको प्रोमो प्राइजेस पर मिल रहे हैं. साइड टेबल्स की अगर हम बात करें, सो यस साइड टेबल्स आपको मिल रहे हैं एट 6900. लेकिन यहाँ पर 6900 में आपको रबर वुड का टेबल, एल शेप का मिनी टेबल साथ में आपको मिल रहा है, और साथ में एक टिश्यू बॉक्स होल्डर भी आपको मिल रहा है. सो यहाँ पर जो इनकी सेपरेट प्राइजेस है, एक है 6900, दूसरा है 21900 और दूसरा 800. लेकिन ये सब कुछ आपको एक साथ मिलाकर मिल रहा है एट 23900 ओनली. सो जैसे हमने कहा कि साइड टेबल की प्राइस 6900, जो मिनी भी है उसकी प्राइस है 21900 और एक टिश्यू बॉक्स जिसकी प्राइस है 800. सो ये सब मिलाकर यस फुल पैकेज आपको मिल रहा है एट 23900 और ये सब हो रहा है ओनली एट एलिगेंसिया ट्रिबेका. सो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं ऑन 5911226, 5911226. इतनी सारी चीज़ें आपके लिए हम लेकर आए हैं, और जैसे हमने कहा अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं बहुत सारी अपडेट्स. सो वेल यहाँ पर जैसे हमने कहा कि ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो इसे आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अगर आपका कोई चॉइस है. अगर आपको सोफा सेट चाहिए लेकिन इन अ टिपिकल कलर, अगर आपको उस टाइप का फर्नीचर पसंद है, अगर आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, अगर आपको आपका बेडरूम सेट चाहिए लेकिन आप इसे कस्टमाइज करवाना चाहते हैं अपने स्टाइल के हिसाब से, सो आप इसे बिल्कुल करवा सकते हैं एट एलिगेंसिया ट्रिबेका. फर्स्ट फ्लोर पर यह पाया जाता है और वहां पर अभी प्रोमो प्राइजेस आपको मिल रहे हैं. एवरीथिंग यू आर गेटिंग एट प्रोमो प्राइजेस. सो आप वहां पर जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और ये जो सारे प्रोमो प्राइजेस हैं इनका फायदा उठा सकते हैं. बिकॉज जैसे हमने कहा इट्स फेस्टिव टाइम. फेस्टिव टाइम में घर को हर कोई खूबसूरत बनाना चाहता है, और क्या पता आपका जो सोफा है शायद अब आपको वो उतना पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज अब आपको प्रोमो प्राइज में मिल रहा है एक सुपर स्टाइलिश सोफा. और जो भी आपकी पसंद है, जो भी आपकी पसंद है, अगर आपको कंटेम्प्रेरी स्टाइल पसंद है, अगर आपका लिविंग रूम छोटा है और आपको कॉम्पैक्ट सोफा पसंद है, सो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एट एलिगेंसिया. आप वहां पर जा सकते हैं, जैसे हमने कहा ट्रिबेका में ये पाया जाता है. कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे. स्टे वेल कनेक्ट.

0: So, चलिए दोस्तों यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलिगेंसिया. हेलो.
1: हेलो
0: हैं जी, कैसी हैं आप?
1: I'm good and you? How about
0: yes,
1: you?
0: Yes, finally we got to speak to you. So, well, Yashini, यहाँ पर we are promoting Elegancia, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं that we are getting promotional prizes and we are also having some discounts. So, क्या आप कुछ details देना चाहेंगी हमारे listeners को?
1: Yes, we are having a promotion on for the weekend, on Saturday and Sunday at Tribeca Mall. The exact location is near the food court at Piazza.
0: Okay.
1: And for this, you have the opportunity to play and win a shoe rack.
0: Okay. So, unko kya karna hoga? Unko aapke wahan aana hai at Elegancia.
1: Yes.
0: For the weekend. Aur phir jab wo wahan par aate hain, then they are going to participate in a game.
1: Yes, to participate in a game, you have to scan.
0: Mm-hmm.
1: And then you have the opportunity to win a shoe rack.
0: Okay, so उन्हें बस scan करना है वहाँ पर आकर और उन्हें एक shoe rack मिल सकता है. Can I know the price of the shoe rack?
1: The price of the shoe rack is 6,000 rupees.
0: Wow, यानी कि 6,000 rupees का shoe rack उन्हें मिल सकता है, बस उनको scan करना है. और आपके वहाँ पर जब वो आते हैं Elegancia, so हम उनको contact भी बता रहे थे, that it's 5911226, 5911226. So हमारे जो listeners इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आपको कुछ और details चाहिए, you can contact इसी number पर. And अभी के लिए यशिनी हमारा साथ दे रही हैं. Also यशिनी, आप हमारे listeners को can you just explain के जो location है exactly वो कहाँ पर है?
1: Yes, we are situated at the Tribeca Mall.
0: Mm-hmm.
1: Our shop is on the first floor, opposite Manju.
0: Okay, opposite Manju, first floor पर. And that's the only place, Elegancia, वो एक ही जगह पर पाया जाता है?
1: Yes, only one in Mauritius.
0: Okay, so ये है at Tribeca, first floor, opposite Manju. आप जब जाएंगे,

0: तो आपको एलिगेंसिया मॉल देखने को मिलेगा, जो फर्नीचर शॉप है वो आपको देखने को मिलेगी. इट हैज बीन टू ईयर्स जब से वो वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यशिनी के क्या हमारे जो लिसनर्स हैं वो आपको सोशल मीडिया पर देख सकते हैं? आर यू ऑन सोशल मीडिया अगर वो कुछ फर्नीचर देखना चाहे ऑन सोशल मीडिया?
1: Yes, yes. Our Facebook page is Elegancia Home. Mm-hmm. You can find us there. Our TikTok page is Elegancia Home Mauritius.
0: Okay. So Elegancia Home, be it Facebook या फिर TikTok, इसी नाम से वो search कर सकते हैं on Facebook and TikTok. साथ ही हम जानना चाहेंगे कि when अगर is it possible जो ये number है 5911226, can they reserve a furniture इसी number पर?
1: No, you have to send us a message, then we will give you an account number for mm-hmm. the bank, mm-hmm. then you can proceed.
0: Okay.
1: We do all the reservations by bank.
0: Okay, constantly. So they can do online payment?
1: Yes,
0: okay, indeed. Okay, so online payment ho sakta hai aur uske baad aap apna man chaha furniture khareed sakte hain. So well friends, aap dekh rahe hain ki itne sare options aapko diye ja rahe hain. Facebook par aap Elegancia Home search kar sakte hain, jahan par you can check out unke kya furnitures hain, kaun si wo cheeze hain jo aap khareedna chahte hain ya fir jo aapko pasand aa rahi hai. Aur saath hi saath TikTok page bhi hai Elegancia Home, jahan par aap jaakar details le sakte hain. Also humne aapko phone number diya hai, it's 5911226 5911226. So थोड़ी ही देर में यशिनी will be getting back to you, थोड़ी सी और बातें आपसे करेंगे. And thank you so much for all the updates.
2: Raftaar vibes, filmy rides,
3: RM2
4: Radio Masti, your number one Bollywood station.
3: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments.
0: So, चलिए यहाँ पर फर्नीचर शॉप के बाद इट्स टाइम कि हम थोड़ी सी फैशन टिप्स की बात आपसे करें. जैसे हमने कहा दोस्तों कि अभी तो फेस्टिव सीजन चल रहा है और एलिगेंट दिखना हर कोई चाहता है. सो जैसे मैं हमने कहा कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं. कभी कभार अगर आप साड़ीज को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करते हैं या फिर इसे आप एक डिफरेंट ब्लाउज के साथ पेयर करते हैं, आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं आपके लुक को. काफ़ी अलग भी लगता है और काफ़ी स्टाइलिश भी. साथ ही जैसे हमने कहा कि ज्वेलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और टेंपल ज्वेलरीज आजकल काफ़ी फैशन में है, काफ़ी इन है. सो अगर आपकी एक सिंपल सी साड़ी है सो उसके साथ एक स्टेटमेंट टेंपल ज्वेलरी आप पे कर सकती हैं एंड यू विल सी कि आपकी सिंपल सी साड़ी भी कितनी स्टाइलिश लगती है. कभी कभार सिंपलिसिटी में भी आप स्टाइल ढूंढ सकते हैं. और जैसे हमने कहा कि सब डिपेंड करता है हाउ यू कैरी योरसेल्फ. सो यहाँ पर स्टाइल के बारे में बात हो गई, फैशन के बारे में बात हो गई और थोड़ी ही देर में एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे कुछ और शॉपिंग के लिए. सो स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.
3: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
5: You're listening to RM2, a Radio Masti. You're listening to

0: और बिल्कुल यहाँ पर गजर ने यही इशारा किया है दैट आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आप जा सकते हैं एलिगेंसिया ट्रिबेका, फर्स्ट फ्लोर पर ये पाया जाता है। एंड वी हैव यशिनी हमारे साथ कुछ और डिटेल्स के साथ। हेलो जी। हेलो यशिनी, यू कैन हियर मी?
1: Yes.
0: हाँ जी, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे फर्नीचर्स की। सो ये होता है यशिनी दैट इफ समबडी वांट्स अ कस्टमाइज्ड सोफा, यानी कि किसी का घर छोटा सा है, अगर आपका सोफा उन्हें पसंद आया है लेकिन साइज में उन्हें थोड़ा सा छोटा करना है, इज इट पॉसिबल? या फिर वो कलर चेंज करना चाहते हैं, सो कस्टमाइजेशन, इज इट पॉसिबल?
1: Yes, it is possible to customize your sofa as per your dimensions and color also. Mm-hmm. And also the fabric, you can choose your type of fabric if you want.
0: ओके, साथ ही हम स्टॉक की बात करेंगे दैट ऑन सोशल मीडिया, अगर वो फेसबुक पर एक डाइनिंग टेबल देखते हैं लेकिन वहां पर आकर अगर किसी और को वो पसंद आ गया, वो सोल्ड आउट हो गया, सो आपके पास इनफ स्टॉक होता है लाइक एक ही फर्नीचर दो तीन और पीसेस अगर आपके पास हैं और वो खरीद सकते हैं, इज इट पॉसिबल?
1: Yes, all the furniture that we post online, we have the stock with for that.
0: Mm-hmm. Or also about the delivery, how many days लगते हैं अगर कोई इंसान डिलीवरी लेना चाहता है, अगर उन्हें कुछ पसंद आ गया है, so कितने दिन लगते हैं to deliver?
1: Within 3-4 days, we do free deliveries around the island.
0: Okay, free deliveries हैं and also यहाँ पर आप promo की बात कर रही थी, तो can I know क्या promos हैं आपके वहाँ अभी? On what products exactly?
1: We have promotion on sofa. If you buy a set of sofa, you get a coffee table and mm-hmm. a tissue box for free.
0: Okay.
1: And also we have, you buy an office table, you get an office chair gift.
0: अरे वाह, very nice. और कोई जो आपके furnitures हैं, वो कौन से material से बने हैं? मतलब इसके ऊपर guarantee की अगर हम बात करें, so do you have a specific months of guarantee आप उस पे offer करते हैं?
1: Yes, we have 3 years of warranty for the wood for your sofa and mm-hmm. 1 year of warranty for the office table.
0: Okay, and after sale service, agar kabhi kabhar kisi ko kuch problem aati hai furniture mein, so after sale services, is it possible?
1: Yes, we have our after sale service. We will take care of for every need within 1 week.
0: Okay, within 1 week. Also, hum Yashini janna chahenge, the game you were talking about, unko scan karna hai. Can you give some more details about this?
1: We will have the barcode on our table. Mm-hmm. The person just need to come and scan the QR code mm-hmm. and then he will have the chance to win a Shurak.
0: वेरी नाइस, सो बस उनको स्कैन करना है और उनको ये प्राइज मिल सकता है, दैट्स अ शुराक जिसका वर्थ है अराउंड 6,000 rupees. सो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर यशिनी हमारा साथ दे रही हैं एंड लेट मी टेल यू, अगर आप इन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, सो द नंबर इज 5911226, 5911226, ट्रिबेका फर्स्ट फ्लोर एंड दैट्स एलिगेंसिया। इसके बारे में हम कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे, स्टे वेल कनेक्टेड।
2: Radio Musti.
3: Vous êtes grande nouveauté chez McDonald's. Découvrez le Spicy Chicken Fillet préparé avec du blanc de poulet 100% local, du goût, du croustillant, une bonne dose de spicy et surtout trois façons d'en profiter en burger, en wrap ou en morceaux. À toi de choisir. Un nouveau goût bien de chez nous. Notre poulet, notre fierté. Local, never tasted this good.
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: Le nouveau Spicy Chicken Fillet à découvrir dès maintenant chez McDonald's.
2: RM2 Radio Musti.

0: तो चलिए दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं एलिगेंसिया फर्नीचर शॉप की जो पाया जाता है ट्रिबेका वन ऑफ द बिगेस्ट फर्नीचर शॉप्स हैं इन ट्रिबेका और आप इसे जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑफ ट्रिबेका जस्ट ऑपोजिट मांजू ये है एंड यहां पर वी हैव यशिनी कुछ और अपडेट्स हमारे लिए लेकर आई है सो हेलो वंस अगेन यशिनी अभी हमें पता चला है कि फॉर द वीकेंड आप रहने वाले हैं एट ट्रिबेका फूड कोर्ट एज वेल वहां पर भी लोग आप आकर आपको मिल सकते हैं
1: यस इट विल बी नियर द फूड कोर्ट द एग्जैक्ट लोकेशन इज एट द प्लाजा
0: ओके सो यू कैन गो वहां पर जो हमारे लिसनर्स हैं हम उनको बता दें एंड व्हेन दे आर कमिंग देयर वहां पर भी उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो स्कैन करके गिफ्ट्स पा सकते हैं
1: Exactly, yes. You will have the opportunity there also.
0: Okay. So tell me that Elegancia, why only Elegancia? आप ऐसा क्या special offer कर रहे हैं जो हमारे listeners को आपकी तरफ attract करता है? So आप कुछ कहेंगी दो शब्दों में Elegancia के बारे में?
1: We offer elegant. We choose the name Elegancia Home because the furnitures are very elegant. Here we have furnitures from Turkey,
0: yes.
1: Which is very cozy, the mm-hmm. sofa sets.
0: ओके और साथ ही साथ आप कस्टमाइजेशन भी देती हैं आप फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं और जैसे अभी आप बता रही थी कि अभी के लिए उनके पास ऑफर है एवरीथिंग आपको प्रोमो पर मिल रहा है सो जो भी प्रोडक्ट्स हैं एवरीथिंग इज ऑन प्रोमो वहां पर हाँ जी एवरीथिंग इज ऑन प्रोमो वहां पर
1: लाइक हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स
0: ऑन प्रोमो ओके सो दे नीड टू विजिट और जैसे हमने कहा कि जो नंबर है इसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इट्स 5911226 वेरी इजी टू रिमेम्बर 5911226 एलिगेंसिया ट्रिबेका जहां पर आप जा सकते हैं ऑन फर्स्ट फ्लोर यशिनी है शी विल बी असिस्टिंग यू वहां पर और दो दिन के लिए आप जा सकते हैं एट फूड कोर्ट ट्रिबेका एज वेल जहां पर आपको एलिगेंसिया का स्टॉप मिलने वाला है एंड वहां पर जाकर भी आप डिटेल्स ले सकते हैं और जैसे यशिनी ने बताया दैट वहां पर इंटरेस्टिंग चांस है आपके पास कि

0: आप बस स्कैन करके कुछ खास इनाम जीत सकते हैं एंड स्पेशली द शू रैक जो कॉस्ट करता है अराउंड 6000 रुपीज. सो थैंक यू सो मच यशिनी फॉर ऑल द अपडेट्स एंड चलिए हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको आकर मिले एट द फूड कोर्ट या फिर फर्स्ट फ्लोर ट्रिबेका और आकर कुछ शॉपिंग एंजॉय करें. एंड थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू, होप टू सी यू सून.
0: ओके, टेक केयर, बाय बाय. तो चलिए, ये थी यशिनी और यहाँ पर उन्होंने हमें इतनी सारी अपडेट्स दी. और जैसे हमने कहा दोस्तों कि शॉपिंग हर किसी को करना पसंद होता है, स्पेशली इट्स फेस्टिव सीजन और बहुत ही जल्द हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं, साथ ही हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं. सो हम जानते हैं दैट हर किसी को अपने घर को एक डिफरेंट लुक देना होता है. सो एलिगेंसिया, यहाँ पर आपके पास चांस है कि आप जाकर अपने घर को और भी ब्यूटिफुल बना सके. फर्स्ट फ्लोर ट्रिबेका और आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 5911226 पर.
2: RM2 रेडियो मस्ती. The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
4: Radio Musti.
2: North, South,
4: 103.5.
2: East, West,
4: 96.4.
2: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
6: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check 6 p.m.

0: सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सितंबर के आखिर में कई होटल पूरी तरह भरे हैं, पर्यटन क्षेत्र को एक नई गति मिली है। पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल के मुताबिक इस साल 1.5 मिलियन पर्यटकों की तादाद तक पहुंचने के लिए सभी कदम उठाए जा चुके हैं। मिजिन ग्रुप ने वित्तीय साल 2025-2026 के दौरान 1.9 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा दर्ज करने का ऐलान किया। ग्रुप ने आने वाले 5 सालों के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुर्शन महिला को गिरफ्तार, उसकी हिरासत में कमीज थे, जिनका मुताला करने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। शक सही निकला, कमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे। और इथियोपिया और जिबूती के बीच ईंधन वाले पाइपलाइन परियोजना में अफ्रीका के सबसे बड़े रईस जादे द्वारा $600 मिलियन से ज्यादा निवेश। नमस्कार राधा। मुर्शिद में पर्यटन क्षेत्र को एक नई गति मिली है। सयाहों यानी पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी हुई है। सितंबर के आखिर में कई होटल पूरी तरह भरे हैं। पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल के मुताबिक इस साल 1.5 मिलियन पर्यटकों की तादाद तक पहुंचने के लिए सभी कदम उठाए जा चुके हैं। कई संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
1: मॉरीशस अभी भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सितंबर महीने के अंत में फ्लिकॉफ्लाक में ऐसे बहुत से लोग जो यहाँ की धूप, समुद्र और गंतव्यों की सुंदरता से लाभ उठाना चाहते हैं। कुछ लोग पहली बार के लिए टापू का दौरा कर रही है और अन्य लोग यहाँ की सुंदरता और स्वागत भाव से मोहित होकर प्रभावित होकर आते हैं।
2: Super expérience, ça fait 3 fois qu'on revient et c'est de mieux en mieux, donc je recommande à tout le monde. Franchement, les gens sont super accueillants, super souriants et ils partagent le peu qu'ils peuvent avoir, ils partagent avec tout le monde et ça c'est formidable.
3: Je crois que c'est la plus belle destination que j'ai fait de ma vie. On est tombé amoureux de cette destination et je crois qu'on va finir par venir ici tout le temps parce que c'est vraiment génial quoi.
4: It's amazing here. I love the sun, I love the weather. It's very nice because you can feel a little relax. I'm from Germany and everything is stress. Everywhere is stress and now I can finally relax a little bit.
1: आंकड़े भी यही दर्शाते हैं। 2026 के पहले 8 महीनों के दौरान 2025 में इसी अवधि की तुलना में करीब 3% की वृद्धि। पिछले साल के मुकाबले इस साल के अगस्त महीने में आगमन में अहम बढ़ोतरी दर्ज। सितंबर महीने के आखिरी वीकेंड में बहुत से होटल में बुकिंग दर काफी अच्छी रही। होटल विला कागोलिन के CEO अलें पिनापागानी ने कहा,
5: Nous sommes à 100% de taux de remplissage. Nous avons une clientèle très fidèle. Comme vous pouvez le voir, c'est rempli partout. Et je pense que pour nous, ça paraît très prometteur devant.
1: पर्यटन मंत्रालय के स्तर पर प्राप्त हालिया आंकड़े पर्यटन आय में बदलाव दर्शाती हैं। पर्यटन मंत्री किशोर जुवाल ने कहा,

0: C'est l'année record qui nous gagnait en 2025 et que nous gagnons une recette record et nous gagnons une arrivée touristique record et nous expectons qu'ils nous bouffent encore mieux que l'année dernière. Nous gagnons ça ben dernier temps là la guerre. La guerre du Moyen-Orient. Moi, besoin de dire qu'il nous fait preuve de résilience, d'une assez proactif. Nous mettons ben vol supplémentaire des Mauritius et nous aussi mise sur ben short haul, c'est-à-dire ben petit trajet, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Réunion et aussi l'Inde qui nous devrait faire. Mais comparativement, si nous guettons avec ben compétiteurs, c'est-à-dire les Seychelles et les Maldives, nous faisons mieux qu'ils ben.
1: इस सेक्टर को अतिरिक्त रूप से गतिशील बनाने के लिए अधिकारियों की ओर से अलग-अलग सेवाओं को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है. पर्यटन मंत्री ने आगे बताया,
0: nous peguetter qui manière nous capable faire une réforme en profondeur. Donc là, moi, je pense à la Tourism Authority, la MTPA, l'école hôtelière sur Gaëtan Duval, qui n'ont eu fait une académie d'excellence, et aussi nous avons le blueprint qui est déjà prêt, et aussi nous avons le rebranding of Mauritius, qui n'a pas fait pendant fort longtemps, et qui nous parle de l'avant.
1: Antim Timahi ke nazdik aane par, rashtriya uddeshya yahi, is gatishilta ko barkarar rakhna. और 2026 में 1.5 मिलियन पर्यटक आगमन के और करीब जाना या फिर इसे पार भी कर जाना.
2: साल की शुरुआत में हवाई अड्डे पर एक मुस्लिम महिला को गिरफ्तार किया गया था. उसकी हिरासत में गमीज पाए गए थे जिनका मुताला करने के लिए इन्हें फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा गया. शक सही निकला, गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स थे. ऐसे ही दूसरे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास बिस्कुट थे जिनमें गांजा था और लॉलीपॉप्स भी जिनमें सिंथेटिक ड्रग्स होने का शक था. इस बढ़ते खतरे के मद्देनजर फोरेंसिक अधिकारियों ने सावधान रहने की अपील की है. क्रिस्टेल लेब्रास, गीता सुनारान.
3: ऊपर से देखने पर ये साधारण जेली कैंडी जैसी लगती हैं, लेकिन इनके जरिए एक नए तरह के ड्रग तस्करी के मामले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है. आजसू के अधिकारियों की सतर्कता से तस्करों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है. पुलिस प्रेस ऑफिसर DASP सुहेल लिडियाराम कहते हैं, पिछले साल आजसू ने फ्रांस से आने वाले एक व्यक्ति को विमान से उतरने पर गिरफ्तार किया था. कई सामान जैसे खाद्य पदार्थ, गमीज, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उनके पास से जब्त किए गए थे. आजसू की जांच के बाद पदार्थों को फोरेंसिक लैबोरेटरी FSL भेजा गया और नतीजों से पुष्टि हुई कि इन सिगरेट्स और गमीज में सिंथेटिक ड्रग्स पाए गए हैं और गांजा भी. स्थानीय तौर पर क्यूपिप के आजसू ने एक व्यक्ति को कुकीज के साथ गिरफ्तार किया था जिनमें ये पदार्थ थे. स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता भी कम नहीं है. कैंडी के रूप में ड्रग्स का सेवन गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा कर सकता है, खासकर कम उम्र के बच्चों और युवाओं के लिए. हार्म रिडक्शन यूनिट के डॉक्टर यश मधु कहते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है, दिल से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं. अगर किसी बच्चे ने इसका सेवन किया है और वो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए.
4: DASP
3: सुहेल लिडियाराम कहते हैं, ऐसे मामले कम हैं लेकिन जनता का ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है. जांच अभी जारी है लेकिन परिवारों के लिए संदेश साफ है, अधिकतम सतर्कता बरतना जरूरी है. कैंडी और दूसरी मिठाइयों की सही जगह और स्रोत की अच्छी तरह जांच करना और बच्चों को इस खतरे के प्रति जागरूक करना ही फिलहाल इस अदृश्य खतरे से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है.
2: प्रधानमंत्री ने बालाक्लावा में अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण में हिस्सा लिया. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सेहत के क्षेत्र के कर्मचारियों को ट्रेन करने की अहमियत पर जोर दिया, खासतौर पर आधुनिकीकरण की दिशा में. सरकारी नेता ने कहा कि अस्पतालों में दर्ज संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, इसलिए अब महारत बांटना और जरूरी हो गया. इस मौके पर दुनियावी सतह पर मशहूर यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर महेंद्र बंदारी को सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा कि मुर्शस्को मृतक ओगांडोन के बारे में भी विचार करना चाहिए. काविन तापिसो, गीता सुनारान.
3: प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब से जुड़े संक्रमण की बीमारियां और किडनी में पथरी जैसी कई यूरोलॉजिकल बीमारियों से सैकड़ों मॉरिशस वासियों को जूझना

0: का है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचों की जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान और विशेषज्ञता का आदान प्रदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोलॉजी कॉन्क्लेव इसी तरह ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इसमें शामिल विशेषज्ञों में प्रोफेसर महेंद्र भंडारी भी हैं, जिन्हें यूरोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों में गिना जाता है। वे अमेरिका के डिट्रॉइट में यूरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं। प्रोफेसर भंडारी की विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्रों में किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल हैं। उनके अनुसार मॉरिशस को मृत दाताओं से अंग दान की व्यवस्था शुरू करने पर विचार करना चाहिए।
1: विद एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन पब्लिक अवेयरनेस,
0: उचित कानून जनता को जागरूक करने, पारदर्शी वितरण और उच्च नैतिक सुरक्षा उपायों से मॉरिशस एक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम विकसित कर सकता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का आकलन केवल तकनीक और बुनियादी ढांचों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि चिकित्सा कर्मियों की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
2: The renal transplant unit at the Nehru Hospital is an important step forward.
0: नेहरू अस्पताल में रिनल ट्रांसप्लांट यूनिट उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में रिनल इलाज को ये मजबूत करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय यूरोलॉजी कॉन्क्लेव खास महत्व रखता है। इस तरह की वैज्ञानिक बैठक में न सिर्फ नए विकास के बारे में पता चलता है, बल्कि उनका अध्ययन करने, अनुभवों को बांटने और जनता के लिए बेहतरीन तरीके से इन्हें अपनाने का भी मौका मिलता है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रोफेसर महेंद्र भंडारी को सम्मानित भी किया गया।
1: डॉक्टर राम गुलाम रिप्रेजेंट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिटिकल माइंड ऑफ ए फिजिशियन, द रीजनिंग ऑफ ए लॉयर एंड विजन ऑफ अ स्टेट्समैन। दिस मेक्स a very formidable combination for Mauritius.
0: यूरोलॉजी कॉन्क्लेव के इस तीसरे संस्करण में मॉरिशस और विदेशों से यूरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं।
3: आज ग्रेट ब्रिटेन की अदालत के पुराने अध्यक्ष लॉर्ड डेविड न्यूबर्गर ने पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। बरतानिया कानून के क्षेत्र में इनकी गहरी छाप रही हैं। लॉर्ड न्यूबर्गर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में मॉरिशस के आकर्षण को मजबूत होते देखना चाहते हैं। उन्होंने भविष्य में एक मॉरिशन आर्बिट्रेशन सेंटर के जरिए मुख्तलिफ व्यापारों के संदर्भ में अफ्रीकी उद्योगों से मॉरिशस का चयन करने की हिम्मत दी है। सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे, मेजिन ग्रुप ने वित्तीय साल 2025-2026 के दौरान 1.9 बिलियन रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज करने का ऐलान किया। रियल एस्टेट परियोजनाएं पूरी करने के साथ साथ कृषि, शिक्षा और मनोरंजन गतिविधियों की बदौलत ये मुमकिन हुआ। ग्रुप के निर्देशन ने आज ये ब्यौरा पेश करते हुए आने वाले 5 सालों के लिए एक रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी। मिगन पुनपनायकन, गीता सुनारान।
0: मेजिन ग्रुप कई क्षेत्रों में कारोबार करता है, जिनमें कृषि, रियल एस्टेट, शॉपिंग सेंटर और शिक्षा शामिल हैं। जून में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए ग्रुप ने 7.5 बिलियन मॉरिशन रुपए के कारोबार की घोषणा की है। ये 2025 में दर्ज 3.4 बिलियन रुपए की तुलना में काफी बढ़ोतरी है। शुद्ध मुनाफा करीब 1.9 बिलियन रुपए रहा, जबकि एक साल पहले ये 139 मिलियन रुपए था। मेजिन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेबा कब्डेविला जंगिया खान कहती हैं, रियल एस्टेट और जमीन से जुड़े कारोबार का टर्नओवर 4.6 बिलियन रुपए रहा। इसमें पीएफओ में 1400 प्लॉट की डिलीवरी का अहम योगदान रहा। रियल एस्टेट एसेट्स के प्रबंधन में भी 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी अच्छा रहा, जहाँ कारोबार 1.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गया, यानी 28% की वृद्धि। ग्रुप के अध्यक्ष इवो लेखरी कहते हैं,
4: réaliser qui nous racine dans l'agriculture et nous et a une grosse responsabilité envers le pays pour continuer à produire l'exportation pour l'exportation du sucre parce que ça ramène des devises étrangères qui sont short supply à Maurice et la sécurité alimentaire avec la production d'oignons

0: production de pommes de terre, où Médine est le plus grand producteur. Mais le moteur qui amène le plus de revenus profitables pour nous, c'est le développement de nos activités opérationnelles.
1: ग्रुप अपनी 2027 से 2031 की रणनीति के तहत राजनीतिक साझेदारियां भी करने की योजना बना रहा है।
0: Tu peux assainir la compagnie, diminuer sa dette, et c'était ça le focus. À ce qui nous donne une bonne position, nous peut cause dans qui nous peut investir, dans qui nous peut développer, et comment nous peut créer la valeur durable pour tous les stakeholders de Médine. Et c'est ça la feuille de route 2031.
1: जहां तक मनोरंजन क्षेत्र की बात है, काजिला में 270,000 पर्यटक पहुंचे, इससे 586 मिलियन रुपए की आय हुई। पार्क इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के जरिए अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना पर भी काम कर रहा है।
2: मेड इन मोहिस से लेबर के लिए एक प्रोग्राम लागू है। 87 सेक्टरों में 31 उद्योग इस प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं। मुर्शन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की पहल पर मुर्शस कमर्शियल बैंक सहायता दे रहा है। कल मौका में प्रमाण पत्र दिए गए। मौके पर स्थानीय उत्पादकों ने स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थन की मांग की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के संदर्भ में विदेश मंत्री रितेश रामफल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। इस पहल से नवीनीकरण, निवेश और टेक्नोलॉजिकल तरक्की के मैदानों में नए सहयोग होंगे। न्यूयॉर्क में ही मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री रितेश रामफल ने बरतानी विदेश मंत्रालय में स्टेट सेक्रेटरी एड मिलीबैंड से मुलाकात की। शागुस पर खास तौर पर बात हुई है। मंत्री रामफल ने कहा कि एड मिलीबैंड ने एक हल ढूंढने के लिए बरतानी सरकार का इरादा दोहराया, एक ऐसा समाधान जिससे अमेरिका समेत सभी पक्ष सहमत हो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्रद्धालु अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हमारी टीम आज पुस्तुफला के शिवसागर मंदिर गई थी, जहां की महिलाएं इस पूजा में भाग लेने के लिए एकत्र हुई थी। यचना मिश्रा की रिपोर्ट।
3: लाल साड़ी ओढ़े ये सभी महिलाएं अनंत भगवान की पूजा करने के लिए आज एकत्र हुई। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। हर उम्र के लोग ये व्रत रख सकते हैं, जिसकी पूजा विधि समुद्र या नदी किनारे की जाती है।
4: ढेर दिन से है व्रत रखेला, सोचबा तो हमार कुछ नहीं रहल। कैसे बाबा जी बोलत कि है व्रत करबा तो तोहर सब धन सब कुछ हो जाए।
5: छोटा से अपन घरे वो शादी वो नहीं रहल तब भी अपन कारम रहली पागे लौके ना कोनो सोमो बा तनि बरकत होला घर में, पति के काम में, सब परिवार के सुख शांति के लिए है व्रत रखेला।
6: स्नान करला के बाद सूर्यार्पण करला सा अब घर में तब मिठाई पकैला था तब दिया वो जला के और पूजा पाठ करला सा माला जापू करला सा और जो मिठाइयाँ पकैला सा चढ़ाईला सा फिर वहाँ से करके तब मंदिर आयला सा।
7: मामा दी भी तो इतना शिपे गत सा कारमला गिट गिट ली और सामिक ली मुझसे मुखमास गया दी भी था शिप छे।
3: पूजा में अनंत सूत्र का विशेष महत्व है। इस सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। इन गांठों और इस व्रत की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं।
8: कथा भगवान विष्णु जो नवा कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोलेला, जब पांडव लोग 14 वर्ष खातिर वनवास रहा, विष्णु जी बोलन कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कि हम तो लोग के एक गो व्रत बतावत हैं। तब बोला तन कि हमर भाई देजा घरे हवन नहीं, जंगल में फल फूल खा करके निमन से भोजन करत नहीं हवन, तब पर भी प्रभु बोलत हुआ कि उके व्रत रखे के। तब बोला तो नहीं, दिन भर व्रत नहीं बा, ये व्रत आधा दिन खातिन है, चतुर्दशी। अविवाहित लोग जितना लोग जवान हवन शादी नहीं करवन तो श्वेत उज्जर धागा बांधाला, और जितना कोई जुनबा शादीशुदा है वो पीला रंग के धागा 14 गांठ के बांध करके अपन हाथ में बांधेलन से अनंत भगवान के पूजा होला, और एकर में विशेष करके प्रसाद के रूप में पुआ चढ़ेला।
3: पूजा के बाद श्रद्धालु अनंत सूत्र को अपनी कलाई पर धारण करते हैं। ये सूत्र भगवान विष्णु की कृपा, रक्षा और अनंत शक्ति का प्रतीक है।

0: अनंत भगवान की कथा सुनाई जाती है, जिसके बाद हवन किया जाता है।
1: ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम गंगाय नमः स्वाहा, अनंत देवाय नमः स्वाहा।
0: ये आधे दिन का व्रत होता है, लेकिन इससे प्राप्त

0: डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। पूजा सुकालू की रिपोर्ट पेश है।
1: मॉरिशस में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में पहले से ही अच्छी विशेषज्ञता मौजूद है, लेकिन चिकित्सा के कुछ अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता और स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करना अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। चेन्नई स्थित अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर के साथ ये सहयोग न केवल मॉरिशस में उपचार की सुविधाओं को विकसित करने पर केंद्रित है, बल्कि ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगा।
2: आप सभी जानते हैं हमारे मॉरिशस के जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार लोग हैं, हम भारत भेजते हैं तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन प्रश्न कभी ये उठता है कि अगर ये सब सुविधाएं मॉरिशस में हमें प्रदान की जाएगी तो हमारे लोगों के लिए, मरीजों के लिए अच्छा होगा। दो साल से जब से हम लोग यहाँ पर हैं, काफ़ी डॉक्टर आए हैं भारत से, लेकिन दो तीन ऐसे डिसिप्लिन हैं जहाँ पर कम लोग आते रहे हैं। जैसे स्पाइन की बात करते हैं, कैंसर के बारे में आप सभी जानते हैं क्या समस्या है देश में, तो इन ये सब क्षेत्र में ये अपोलो के जो बड़े डॉक्टर हैं वो लोग हमको सहायता करेंगे और आने वाले समय में यहीं पर ये सब सर्जरी हम लोग करेंगे।
1: प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और विशेषज्ञों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से विशेष रूप से युवा मॉरिशस के डॉक्टरों को आधुनिक चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में नई दक्षताएं हासिल करने का अवसर मिल सकता है।
3: We need to develop a situation where patients in Mauritius have a trust in the local doctors. And for that, it may take time, it may take 4 to 5 years. But if Apollo can provide the senior faculty to come here periodically to train and to hold the hands of the local surgeons, upgrade the equipment, then I think it's realistic to believe that in 5 years, Mauritius can self-support their own medical care in neurosurgery.
4: We look forward to a cooperation between Mauritius and our Apollo hospitals, and we propose the partnership can bring specialist outreach, second medical opinions, telemedicine, teaching, training, clinical knowledge exchange and structured access to advanced care.
1: मॉरिशस में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को विकसित करना, स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञता को मजबूत करना और मरीजों को बिना विदेश जाए अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराना, यही इस सहयोग के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। और आने वाले समय में चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में मॉरिशस और चेन्नई स्थित अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर के बीच नए समझौतों का रास्ता भी खुल सकता है।
0: अफ्रीका का सबसे बड़े रईसजादे नाइजीरिया के करोड़पति अलिको दंगोते ने ऐलान किया कि वे इथियोपिया और जिबूती के बीच ईंधन के नए पाइपलाइन के निर्माण के लिए $660 मिलियन की वित्तीय सहायता देंगे। ये परियोजना 120 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के लिए है जो 400 मिलियन लीटर ईंधन को स्टॉक करने की क्षमता रखेगा। 18 महीनों में काम शुरू किए जाएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान में अपनी सेना के सैन्य अभियानों की प्रतिरक्षा की। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से मुखातिब होने से पहले ही अनेक डेलीगेटों ने वॉकआउट किया। नेतन्याहू ने दावा किया कि जीत उनके ही देश की होगी और वो जंग को नहीं रोकेंगे। गजा में जेनोसाइड के इल्ज़ाम को उन्होंने झुठलाया। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वीडियो के जरिए सभा को संबोधित किया क्योंकि अमेरिका ने उन्हें एंट्री वीज़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी अवाम खून खराबे, बर्बादी और भुखमरी का शिकार बना हुआ है, इसलिए उनका पैगाम अमन और शांति के पक्ष का मरकज़ है। आज से पोपलेओ 14 फ्रांस के दौरे पर हैं। पेरिस में एक बड़ी मास सभा लगाई जाएगी जहां 500,000 से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। प्लास डे ला कोंकोर्ड, आर्क दे ट्रायंफ और शांज़ेलिज़े के इलाकों में हिफाजती वजहों से पुलिस की घेराबंदी होगी। आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा ओली हवाई अड्डे पर पोपलेओ का स्वागत किया गया। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में दक्षिण से आ रहे कुछ बादलों का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात आमतौर पर घने बादल होंगे और कल सुबह भी और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। कल दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे। दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी।

तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17 अधिकतम 22 से 24 साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21 अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होगा और कल सुबह 5:56 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिवनाग्या की मदद मिली है आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे नमस्कार और आदाब

नंबर एक इंकरमैन स्ट्रीट वाली पिटो में 74 साल की 74 years old श्रीमती बिदवंती ओमिया, श्रीमती बिदवंती ओमिया पैदाइशी नाम दाउताल, जो सती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे मुराफिनोरल पिछित कबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंकबाओ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टमोरो एट 11 AM। पाउडर मिल रोड डंकन लेन पॉम्पलमूस में 46 साल के 46 years old श्री विशाल ओरादन, श्री विशाल ओरादन जो विशाल माइनो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी सुनीता ओरादन के घर पाउडर मिल रोड डंकन लेन पॉम्पलमूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिन्यूस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टमोरो एट 11 AM। कौमाया लेन कौंडीमास्क पावे में 60 साल की 60 years old श्रीमती कुमारी प्रतिमा कौमाया पैराशी नाम जीवता जो गीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके पति सामी कौमाया के घर कौमाया लेन कौंडीमास्क पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडीमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है। Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: You're listening to RM2 or Radio Masti. You're listening to RM2 or Radio Masti.
1: सो वेल दैट्स योर रेडियो मस्ती और शाम के 6:32 मैं हूँ परी आपके साथ. वेल अभी के लिए तो रफ्तार वाइब्स कंटिन्यू हो रहे हैं. फ्राइडे की इवनिंग जहाँ पर आपके बहुत सारे प्लान्स होंगे, काम खत्म और टाइम टू रिलैक्स, टाइम टू चिलैक्स. टू डेज आपको मिले हैं सो मेक इट स्पेशल दोस्तों. और आज की ये शाम यानी कि फ्राइडे की शाम, इसे तो खास बनाना बनता है. सभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ. शाम के 7 तक निभाएंगे आपका साथ ऑन रेडियो मस्ती और कुछ प्यारे गाने लेकर आए हैं टू कीप योर मूड सेट, योर फ्राइडे इवनिंग मूड सेट. श्रेया घोषाल की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम फ्रॉम द फिल्म इशकजादे. एंजॉय दिस वन.

0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: वेला भी के लिए आपके मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा कि आज का मूड तो है एकदम पार्टी वाला बिकॉज आज है फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को खास और स्पेशल बनाने के लिए हमारे जो डियर लिसनर्स हैं आपका साथ भी तो ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच जितने हमारे लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपके लिए भी हम कुछ प्यारे गानों के साथ आपके म्यूजिकल हमसफर बने हुए हैं। ऑल यू हैव टू डू इज आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294। सो अभी के लिए देखते हैं कौन है हमारे साथ जुड़े हुए हमारे लिसनर। सो यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं दीपा जी और आप है दीपा मंगा, एंड थैंक यू सो मच दीपा जी, आपका ये स्वीट मैसेज हम तक पहुंच गया है। सभी सुंदर परिवार के नाम डेडिकेट करना चाहती हैं गाना, नोएल फ्रांस से हमारा साथ दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, जानकर अच्छा लगा। सो बस ऐसे ही स्वीट गाने आपके नाम। और यहाँ पर प्रकाशवती जी सात समंदर पार से आप भी हमारा साथ दे रही हैं, सो आपका हम वार्म वेलकम कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। सिलाई कर रही हैं एंड शो को पसंद कर रही हैं, सो थैंक यू आपका साथ, इट्स स्पेशल। सात समुंदर पार से हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। साथ ही यहाँ पर एक सुपर रोमांटिक गाना, क्या बात है, हमारे रोमांटिक गाने को सुनकर लगता है आपका मन भी काफी रोमांटिक हो रहा है। डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर अर्शद और कहती हैं यू आर ऑन माई माइंड फॉर एवर एंड यू आर इन माई हार्ट, यू आर माई एवरीथिंग, लव यू टू मच, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम उनकी वाइफ रिबेका। सो ये हुई ना बात, कहते हैं ना कि रोमांस को हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, प्यार को हमेशा फ्रेश रखना चाहिए, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए, लेकिन प्यार का एहसास उसे दिलाते रहना जरूरी होता है। इस वक्त जाना जी साथ दे रही हैं आप भी फ्लाक से और काम करते हुए गानों को सुन रहे हैं, इस टाइम पे आप काम कर रही हैं, सो लोड्स ऑफ कारेज टू यू, और आपके लिए ये स्वीट सा गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं। साथ ही आपका पूरा परिवार इस वक्त हमारा साथ दे रहा है, डेडिकेटिंग गाना फॉर रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, युवी, कृषि, शिवसरन परिवार फ्लाक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड हमारी प्यारी सी विजया जी, आई एम सो सॉरी आई एम रीडिंग योर मैसेज आज थोड़ा देर से, और वेल यहाँ पर आपने इतना स्वीट मैसेज लिख दिया है और आप तो हमारी प्रिटी वुमन है जो हमेशा हमारा साथ देती है, मॉर्निंग हो या नाइट विजया जी का साथ हमेशा होता है। सो थैंक यू फॉर योर स्वीट मैसेज, ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए और कहते हैं इट्स फ्राइडे यार, लेट्स रॉक, एंड काम तो खत्म हो गया है और अब एंजॉय कर रही हैं रोमांटिक गाने। ललिता जी हमारा साथ दे रही हैं, सभी परिवार, सरोज, कुमारी, वीना, गीता, ज्ञानती, संजय, विजय और सभी दिव्यचंद परिवार के नाम डेडिकेटिंग गाना, सो गाना होगा आपके लिए। सभी जीतन परिवार के नाम भी एंड एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर कुमार आपके नाम भी डेडिकेट कर रहे हैं गाना। सो ऑल द लिसनर्स वी हैव दिस सुपर रोमांटिक गाना, मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं फ्रॉम द फिल्म बागी, एंजॉय दिस वन।

और चलिए दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आपने इतना साथ दिया ऑन रेडियो मस्ती, तो साथ निभाइए क्योंकि आ रही है दिव्या कुछ और प्यारे गानों के साथ. शी इज गोइंग टू एंटरटेन यू और आपके इस फ्राइडे नाइट को बनाएंगे धमाकेदार ऑन रेडियो मस्ती. सो परी साइनिंग ऑफ, मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 8 बजे इन योर टाइम लेस तड़का. कुछ और टाइम लेस मेलेडीज आप तक पहुंचाएंगे. तब तक के लिए हमारे रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहें. एंजॉय योर फ्राइडे इवनिंग, एंजॉय योर वीकेंड, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ.

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है, इशारे तेरे कंगने दी, इसीलिए शायद कहते हैं कि समझदारों को इशारा काफी है। और चलिए, यहाँ पर काफी कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्सट्रीम होने वाला है और एक्स्ट्रा होने वाला है। क्या होने वाला है? इट्स गोइंग टू बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेशल, क्योंकि आज है फ्राइडे इवनिंग और ऐसे में मूड और मोड थोड़ा अलग है। और मूड को सेट करने के लिए वी हैव द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, ऑफकोर्स धमाकेदार गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एंड जस्ट की वाइबिंग विद ईच एंड एवरी गाना, और आई एम वेरी श्योर कि हर एक गाने को सुनने के बाद आपको डेफिनेटली ऐसा तो लगेगा ही कि इट्स पार्टी टाइम, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है। एंड हमेशा की तरह हम कहते हैं ना कि आप लोग सुबह सवेरे उठे हैं तो राहत की सांस लेकर ही उठे हैं, नोइंग दैट बस कल सैटरडे है। आए हाय, कितना सुकून मिलता है और कितनी खुशी मिलती है ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया में द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। और बस आप भी इस वाइब को फील करिए और

0: और साथ में हमारे मैसेजेस, यस आपके मैसेजेस हम जरूर वेट कर रहे हैं ऑन 5499-1294। तो जरूर हम तक अपना पैगाम पहुंचाइए। हमेशा की तरह ये तो आज भी कहेंगे थैंक यू सो मच दिल से, आप लोग इतने प्यार से साथ दे रहे हैं। एंड आई नो फ्राइडे इवनिंग को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें मैसेजेस भेजने के लिए, बिकॉज कुछ लोगों के मूवी प्लान्स बनते हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लान्स भी बन जाते हैं, कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। लेकिन जो भी प्लान है आप जरूर हमेशा RM2 रेडियो मस्ती को साथ लेकर ही चलेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294।
1: फिल्मी जान RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती
2: बोले तो बिल्कुल रुकने का नहीं है, क्योंकि ये म्यूजिकल जर्नी ऐसे ही नॉनस्टॉप चलता रहेगा आप लोगों के लिए चिल 9 PM. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. 7:14 हो चुके हैं. टोल दोज हैविंग द मील एंड डिनर राइट नाउ. आपको बना पची शुभाहार. बट सिंस इट्स अ फ्राइडे इवनिंग, आई नो बहुत सारे लोग शायद लेट डिनर करते हैं आज स्पेशली, क्योंकि मे बी आप किसी के यहाँ इन्वाइटेड हैं या फिर आपने आपके यहाँ किसी को इन्वाइट किया हुआ है. पीछे से बैकग्राउंड में हमारे गाने चल रहे हैं, हमारी आवाज़ गूंज रही है. दिल से आपको शुक्रिया, क्योंकि आपने सोचा कि क्यों ना रेडियो मस्ती को अपनी खुशी में भी शामिल की जाए. एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस. थैंक यू सो मच. एंड चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. एंड यहाँ पर अगला गाना गोज आउट स्पेशली फॉर अ लिटिल बेबी बॉय शिवांश एंड हस्बैंड है तश्वीन. वी आर गोइंग ऑन अ ड्राइव राइट नाउ फ्रॉम दीक्षा. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. वैसे आपका मैसेज थोड़ा जल्दी आया था हमारे शो के शुरू होने से पहले, बट हमने सोचा ये मैसेज ऐसे ही ना छोड़ने से बेटर है कि आपका मैसेज हम पढ़ ही ले. चलिए साथ में यहाँ पर अगला गाना गुजार. टू ईच एंड एवरीवन कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच कि आप लोग इस वक्त बहुत ही प्यार से हमें सुन रहे हैं. आज बस प्यार से ही नहीं बल्कि जज्बे के साथ भी हमें सुनना है, क्योंकि इट्स फ्राइडे इवनिंग और फ्राइडे इवनिंग को स्पेंड करने के लिए हद से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बस ऑल यू नीड टू डू इज़ स्टे हैप्पी. एंड हैप्पी वाला वाइब जब होता है ना, व्हेन इट प्रिवेल्स, तो ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे लोग हैं आप खुद इतने खुश होते हैं और माहौल एकदम पॉजिटिव हो जाता है. तो चलिए आई जस्ट होप कि आप भी अपने माहौल को एकदम पॉजिटिव बनाएंगे और फुल ऑफ एनर्जी बनाएंगे.
0: फिल्मी जैम
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: जैम
1: OMG रेडियो मस्ती
0: वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गाना आ जा अभी जा और हम तो बस आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं और आपको भी कहेंगे आ जा अभी जा क्योंकि बस ये ब्यूटीफुल सा माहौल आप लोगों के लिए ही हमने सजा के रखा है एंड आई जस्ट होप कि आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे चलिए यहाँ पर बहुत ही प्यार से आपने एक बर्थडे मैसेज भेजा है यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू माय वन एंड ओनली वाइफ ब्यूटीफुल वाइफ सरिता लीला आज उनका बर्थडे है तो ब्लेसिंग्स टू यू सरिता जी एंड विद लोट्स ऑफ लव फ्रॉम डॉटर और दामाद हैं विक्रम सभी मती लीला फैमिली की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार यहाँ पर आपका मैसेज थोड़ा सा इनकम्प्लीट आया है अगर आप हमें फिर से मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें याद कर सकते हैं नंबर वही है 5499-1294 एंड यहाँ पर किसी ने हमें कहा है हाय रेडियो मस्ती टीम प्लीज प्ले अ सॉन्ग सोना कितना सोना है फ्रॉम द फिल्म क्रू एंड नूतन जी आप हैं त्रियुले से वाह क्या नाम है नूतन सो चलिए हम ट्राई करते हैं अगर पॉसिबल हुआ एंड चलिए किसने कहा कि 90s गीतों के साथ वाइब नहीं किया जा सकता वो भी ऑन अ फ्राइडे इवनिंग गाने तो आप सुन ही रहे हैं और दैट वाज अ ब्यूटीफुल गाना कुमार सानू एंड अलीशा चिनोई की आवाज़ों में चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप भी बस हर एक गीत को एंजॉय करते रहिए एंड कीप वाइबिंग टुगेदर
2: फिल्मी जान
1: ओएमजी रेडियो मस्ती

0: Feel me, Jam.
1: RM2 Radio Musti.
0: Well, we have this beautiful Gana taken up from the movie Bandit Like Beckham and. गाना तो फीलिंग हॉट हॉट है लेकिन रात के आते आते इतनी ठंड हो जाती है कि क्या कही. बट शायद आपने नोटिस किया होगा कि दिन के दौरान थोड़ी सी गर्मी होने शुरू हो गई है. तो अगर आप स्पेशली नॉर्थ रीजन में रहते हैं तो बोकवाश आपको. एंड आई जस्ट होप कि ये विंटर सीजन थोड़ा और ठहर जाए. और इसके लिए तो गाने का मन हो रहा है तो थोड़ी देर और ठहर जा. लेकिन क्या करे क्या करे, हर एक सीज़न को आना पड़ता है जाना पड़ता है और ऐसे ही दुनिया चलती जाती है. Well, it's already 7:45. We have this beautiful Gana to all of you jo is waqt connected hai hamare saath. Don't forget, Divya ka saath hai in your Filmi Jam till 9 p.m.

0: के बाई
1: फिल्मी जाम
2: ओएमजी रेडियो मस्ती
3: बाबाई तो बिल्कुल नहीं कहने का क्योंकि हमारा रब का साथ रहने वाला है टिल 9 पीएम। देखिए पिंकी आकर चली भी गई, शीला मुन्नी जितने भी सारे लोग आएंगे ना वो भी बस आपको गाने सुना के निकल ही जाएंगे, लेकिन जो एंड तक रहने वाली है वो है आपकी दिव्या। सो थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। रात्रि के 8:05 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग 25 सितंबर 2026। ओ माई गॉड कैन यू बिलीव इट, ये महीना भी आकर धीरे धीरे निकल ही रहा है। एंड मैं तो हमेशा इसी सोच में रहती हूँ कि ये साल कैसे निकल गया, और कुछ कुछ लोगों के रेजोल्यूशन अभी बाकी हैं और कुछ लोगों ने यही कहा होगा कि बाद में अभी कितनी बाद में, क्योंकि अभी तो 2027 भी देखते ही देखते इट विल बी ऑल सेट टू नॉक एट द डोर और हम उनका वेलकम करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। आई गेस अक्टूबर और नवम्बर महीना जैसे ही आ जाएगा ना तो सब लोग दे विल ऑलवेज बी इन द फेस्टिव मूड ऑलरेडी। ओ माई गॉड ये महीना तो क्या ये साल भी धीरे धीरे करके निकल रहा है ना। आई जस्ट होप कि आपके साथ हर महीने हमेशा बहुत बहुत सारी खुशी लेकर आए आप लोगों के लिए, एंड यू ऑलवेज गेट टू एक्सपीरियंस द बंडल ऑफ जॉय इन योर लाइफ, एंड आपकी ज़िंदगी में से ये खुशी कभी फेड ना हो। और ये स्माइल तो बिल्कुल भी हम फेड नहीं होने देंगे, स्पेशली आज जोश जज्बा थोड़ा और हाई है तो उसको ज़रूर एक लेवल और बढ़ाएंगे ऑफकोर्स हमारे गीतों के जरिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारा साथ के लिए। वेटिंग फॉर योर मैसेजेस वंस अगेन ऑन 5499 1294। इट्स योर फिल्मी जाम जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 पीएम।
1: फिल्मी जाम
2: ओएमजी रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
2: क्या बात है। डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू आपके जितने भी सारे लेजी लम्हे हैं उनको हम बस ट्राई टू कर रहे हैं इसको चेंज करने के लिए इनटू क्रेजी लम्हे। एंड ये क्रेजी लम्हे जब भी आते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि हाय बस काश ये वक्त थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा थम जाए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट गुजरते हुए पलों को हम यादगार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स इट्स ऑलरेडी 8:16। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर फ्रेंड्स शनील, नेहा, अर्जुन, सुजाता, राणा, योविन, अनुष्का, प्रणव, कुणाल एंड सुहासिनी के लिए सेलिब्रेटिंग टुनाइट। वजह तो नहीं पूछेंगे, या तो बर्थडे सेलिब्रेशन है या फिर आप लोग इसीलिए सेलिब्रेट कर रही हैं क्योंकि वीकेंड आने वाला है और आज है फ्राइडे इवनिंग। तो टू ऑल दोज जो पार्टी ऑलरेडी करने शुरू कर चुके हैं आप लोग, हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम ऑफ कोर्स। लेकिन हमेशा की तरह हम आज भी आपसे रिपीट करना चाहते हैं, इफ़ यू नो यू आर गोइंग टू पार्टी एंड अगर आप थोड़ा सा ड्रिंक भी करने वाले हैं ना, सो प्लीज़ डोंट टेक द रिस्क ऑफ बींग द ड्राइवर एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो चलिए दिव्या का साथ है इन योर फिल्मी जाम टिल 9 PM कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ। Let's vibe and let's groove together.
0: Filmy Jam.
1: RM2 Radio Mustache.

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
0: Well, that was a beautiful gana and the beautiful voices of Mika Singh and Neeti Mohan. चलिए कुछ और आपके messages की और हम बढ़ेंगे। Hi, namaste. ये आप शेखर हैं। You would like to dedicate the next beautiful gana to your beautiful wife Sandhya और आपकी बेटी Riya के लिए। Thank you so much, शेखर। And हमारी प्यारी सी गायत्री जी connected हैं हमारे साथ और आप कहती हैं कि our love for others and their love for us supplants Hope in the tomorrow and joy in our hearts. ये आपने बिल्कुल सही कहा है गायत्री जी। आप है पोर्ट लुइस से एंड थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। आपको भी टेक केयर एंड साथ में जितने भी सारे लोग इस वक्त शायद ड्राइव करते हुए हमारा साथ दे रहे हैं आपको हम कहेंगे हैव अ सेफ एंड म्यूजिकल राइड विद RM2 रेडियो मस्ती एंड बस गाड़ी आराम से चलाइएगा।
1: फिल्मी जान RM2 रेडियो मस्ती।

Well, we have this beautiful sagana, Nakash Aziz, Neha Kakkar ki awazon mein. Aap bhi mast hokar dhating nach. Hum to yehi chahte hai ki aap nacho, gao aur khushiyan manao. Kyunki aaj Friday evening hai, kal Saturday hai. Haan, ye alag baat hai ki bahut sare log Saturday ke din mein kaam karne wale hain. But it's okay. Aur aap mehnat se kaam kar rahi hai. To hard work is the key and hard work is also a choice. Agar aap ye kar rahi hai, to aap upar wale ka shukr manaiye ki आपको मौका मिल रहा है काम करने के लिए एंड आगे चलकर मेहनत का फल आपको तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा. फिलहाल के लिए टोल दोज जो अभी हमारे गीतों को सुनकर दे आर हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम. थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन.

0: Well, friends, it's already 8:56 and चलिए इसी गीत के बाद हम एक और गीत चलाएंगे आप लोगों के लिए, स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल दोज जिन्होंने बहुत ही प्यार से हमारा साथ दिया. एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम द मूवी हाउसफुल एंड नीरज श्रीधर की आवाज़ में. एंड चलिए अभी के लिए तो दिव्या के जाने का टाइम आ चुका है, हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग. एंड फिलहाल के लिए बहुत ही प्यार से आपको हम कहेंगे बाय बाय.
1: Filmy Jam.
2: RM2 Radio Musti.

कैसे हैं माय डियर लिसनर्स, विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग। फ्राइडे नाइट है, सो चलिए मस्ती के मूड में एकदम आ गए हैं जबरदस्त गानों के साथ। व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल ट्यून्ड, हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें।

जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, तो चलिए इस सफर में आप ही हमारे हम सफर बने हुए हैं। टिल मिडनाइट, कभी खुशियों का गीत, कभी उदासी की धुन, नो आज बिल्कुल नहीं होंगी, कभी तेज रफ्तार बीट्स और कभी एकदम सॉफ्ट मेलोडी, लेकिन हर पल को महसूस करना ही तो जिंदगी का असली मजा है। तो आज की रात फिक्रों को थोड़ा साइड में रखिए, दिल को खोलिए और म्यूजिक के साथ ग्रूव कीजिए, क्योंकि जब जिंदगी में सुर मिल जाते हैं तो हर पल एक खूबसूरत गीत बनता है। सो वेलकम टू अ म्यूजिकल नाइट फुल ऑफ वाइब्स, मेमोरीज एंड फुल ऑन मस्ती।

कभी-कभी हम जिंदगी को जीने के बजाय उसकी प्लानिंग में लगे रहते हैं, है ना? कल क्या होगा, कल क्या करना है, कल क्या मिलेगा। भाई असली जिंदगी तो आज है, ये पल फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। That's why, आज की रात बस एंजॉय कीजिए, म्यूजिक को फील कीजिए, फेवरेट गाने के साथ गाइए और बीट पर थोड़ा सा ग्रूव कीजिए। जिंदगी परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, म्यूजिक प्ले कीजिए और इस मोमेंट को परफेक्ट बना दीजिए।

जिंदगी में प्रॉब्लम्स सबके पास होती हैं, लेकिन हर किसी के पास उन प्रॉब्लम्स के बीच मुस्कुराने की वजह भी होती है। कभी एक अच्छा दोस्त, कभी फैमिली की एक प्यारी सी बात, कभी किसी पुराने गाने की याद, और कभी बस म्यूजिक। तो आज रात अपने दिल को थोड़ा हल्का कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, वरीज को दूर भगाइए और म्यूजिक के साथ दिल खोल कर ग्रूव कीजिए, क्योंकि जिंदगी छोटी सी है, इसे सिर्फ गुजारिएगा मत, इसे दिल से जिएगा।

सोचिए अगर जिंदगी एक म्यूजिकल कंपोजिशन होती और इसमें सिर्फ एक ही सुर होता। बिल्कुल नहीं, कभी हैप्पीनेस का हाई नोट, कभी इमोशंस का लो नोट, कभी एक्साइटमेंट की फास्ट बीट और कभी सुकून की स्लोली मेलोडी। इसी कॉम्बिनेशन का नाम जिंदगी है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ के हर सुर को एक्सेप्ट कीजिए और हर बीट के साथ आगे बढ़िए। आज के म्यूजिकल नाइट में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ के हर रंग को। सो कीप लिसनिंग एंड कीप ग्रोविंग।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा निशलावती।

Oh my God, what a lovely गाना. कभी कभी गाने जो होते हैं ना सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो एक मेमोरी हो जाता है. एक ट्यून हमें किसी पुराने दोस्त के पास ले जाती है, कोई मेलोडी किसी खास इंसान की याद दिलाती है, और कोई बीट हमें हमारे केयरफ्री डेज में वापस ले जाती है. आज की रात म्यूजिक के साथ ऐसे ही यादों का सफर होगा. तो कंफर्टेबल हो जाइए, दिल को म्यूजिक के हवाले कीजिए और हर गाने के साथ एक नई याद बनाइए.

पूरा दिन काम, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैफिक डेडलाइंस एंड लेस वरीज, उफ कभी कभी दिमाग को भी हॉलीडे चाहिए, व्हाट से। तो दोस्तों, आज की रात अपने माइंड को एक म्यूजिकल ब्रेक दीजिए। जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसे कुछ देर के लिए भूल जाइए। जो प्रॉब्लम है, उसे कल देखेंगे। आज बस म्यूजिक होगा, रिदम होंगे, पॉजिटिव वाइब्स होंगे, सो स्माइल प्लीज, वॉल्यूम अप और चलिए म्यूजिक के साथ थोड़ा ग्रूव करते रहे।

इंसान की जिंदगी की अपनी कहानी होती है ना। किसी का सफर इजी होता है, किसी को ज्यादा स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं कि दूसरे लोग किस स्पीड से चल रहे हैं। जरूरी तो ये है कि आप अपनी धुन पर चल रहे हैं या नहीं। अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपनी लाइफ को अपने अंदाज में जिए। टुनाइट लेट द म्यूजिक रिमाइंड यू योर लाइफ योर रिदम योर बीट।

सो म्यूजिक बज रहा है और पैर अपने आप मूव करने लगे, ओहो तो उन्हें रोकना मत, स्पेशली आज की रात। डांस के लिए परफेक्ट स्टेप्स की जरूरत नहीं है, बस एक फ्री हार्ट और गुड वाइब्स चाहिए। चाहे आप घर में हो, कार में हो या अपने रूम में हेडफोन्स लगाए बैठे हैं, जस्ट फील द बीट, क्योंकि कभी कभी लाइफ को सीरियस लेना जरूरी है, लेकिन कभी कभी लाइफ के साथ बस ग्रूव करना भी उससे ज्यादा जरूरी है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

आज की रात, नो नो नो, बिल्कुल नीतू ये पूरा गाना नहीं गाएंगी। बस यही कहना है कि आज की रात उन सब लोगों के नाम जो पूरे दिन दूसरों के लिए भागते रहे, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, काम के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, अब थोड़ा वक्त खुद के लिए भी रखिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, रिलैक्स हो जाइए और अपने दिल को वो हैप्पीनेस दीजिए जो वो डिजर्व करता है। Let the music night be your little escape from the ordinary. Sit back, smile and enjoy.

What a lovely gana, what a lovely music. Hanji, music ke bina zindagi kitni khamosh hoti. Music kabhi hamari feelings ko words deta hai, kabhi aansuon ko smile mein badal deta hai, aur kabhi thake hue dil ko energy deta hai. इसीलिए लाइफ में म्यूजिक जरूर रखिए, सुबह मोटिवेशन के लिए, शाम रिलैक्सेशन के लिए और रात स्पेशली फ्राइडे नाइट को मेमोरीज के लिए. आज की रात भी म्यूजिक को अपना कंपेनियन बनाइए और चलिए एक खूबसूरत मेलोडी के साथ अपनी म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

देखते ही देखते वक्त कितना जल्दी बीत गया पता भी नहीं चला। बाय द वे यू आर वर्किंग ऑन नाइट ड्यूटी, सबको बॉन कुराज। जाने से पहले बस इतना याद रखिए, जिंदगी का कोई रिवाइंड बटन नहीं होता है, जो पल अभी है वही सबसे प्रीशियस है। दैट्स व्हाई लोगों से प्यार कीजिए, दिल से हंसिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। लाइफ परफेक्ट नहीं है दोस्त, लेकिन हम उसमें खूबसूरत मोमेंट्स जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो म्यूजिक को थोड़ा और लाउड कीजिए, स्माइल कीजिए और कहिए लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, म्यूजिक इज मैजिकल एंड टुनाइट वी आर ऑल ग्रूविंग। टेक केयर, बाय बाय।

music all day long.

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: क्यों मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: कभी हमने नहीं

अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Bun?
1: Hum.
2: RM2.
3: Radio Musty.
2: Feel the musty.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।